0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चली होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश

ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। इस पूरी श्रृंखला में जिस तरह से हम बातचीत करते हैं रोज की ये मुलाकात

0: जाते हैं या उन्हें पार करते करते हम बहुत थक जाते हैं। तो क्या कोई आसान तरीका है, क्या मेरे सोच में, मेरे थॉट प्रोसेस में कुछ ऐसा बदलाव आ सकता है कि वो सिचुएशंस मुझ पर हावी ना हो? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जिस तरह से अब लोग जुड़ते गए हैं अवेकनिंग के साथ और आप भी बहुत से लोगों के साथ मिलते गए हो, हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस लोगों का?
1: एक्सपीरियंस हैज बीन वंडरफुल, बिकॉज जहाँ जहाँ भी आप जितने भी लोगों से मिलते तो वो नए नए अब अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज और कहीं ब्रह्मा कुमारीज परिवार का अब हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि परिवार वो ही होता है जहाँ हमारी सोच एक दूसरे के साथ मैच करती है। और इतने सारे भाई बहनें, लाखों की संख्या में कहें, जो रोज़ हमसे मिलते रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम द्वारा, वो सोच में परिवर्तन, क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन जोड़, जो आज तक परिवर्तन की बात सिर्फ सोच में थी, वो प्रैक्टिकल में आने लगे, क्योंकि परमात्मा की शक्ति भी मिलती गई। ज्ञान तो है, सभी के पास है, चाहते भी हैं परिवर्तन करना, लेकिन सिर्फ जो हिच आ रहा था वो कहाँ, कि मुझे मालूम है लेकिन होता नहीं है। लेकिन जहाँ परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा तो वो वाला भी जो स्टेप था वो क्रॉस हो गया, एंड देन लाइफ बिकम्स वेरी ब्यूटिफुल, बिकॉज यू आर एबल टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू इन टर्म्स ऑफ फीलिंग। यू नो, बाहर तो जो करना चाहते हैं वो हो जाता है, लेकिन अंदर जो फील करना चाहते हैं वो कई बार कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। लेकिन क्योंकि जिन भी भाई बहनों ने अपने ऊपर वो मेहनत की है, सिर्फ प्रोग्राम देखने से ये नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रोग्राम को एक स्टडी के रूप से लिया है, एंड आई हैव मेट मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो प्रोग्राम के साथ जैसे एक नोटबुक लेकर बैठते हैं और उसको नोट्स बनाते हैं, फिर उसको स्टडी करते हैं और फिर तुरंत उसको नेक्स्ट डे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपके अपने पर्सनल कॉम्प्लेक्सेस हैं, आप उसको अप्लाई करते हो। एंड ज्ञान इतना ब्यूटीफुल है, क्योंकि जो परमात्मा ने डायरेक्ट नॉलेज दी तो नॉलेज तो बहुत सिंप्लीफाई हो गई, लेकिन जब तक हम उसको यूज नहीं करते तो हमें उसका बेनिफिट नहीं पता चलता। तो जिन्होंने उसको यूज करना शुरू किया तो उनको वो बेनिफिट मल्टीफोल्ड मिला है। एक है कि आप देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, नेचुरल है, परमात्मा की दी हुई बातें हैं, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, समझ भी आ जाती हैं, लेकिन वंडर तब क्रिएट होता जब उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं। सो अगेन आई वुड से टेक इट बैक टू योर लाइफ टुमारो, यू नो, नॉट दैट आप आधा घंटा टीवी देखते हैं, आप देखते देखते कहते हैं या इट्स वेरी गुड, इट सीम्स गुड, कई बातें लगती हैं नो बट इट्स नॉट पॉसिबल, कई बातें लगती हैं येस इट्स पॉसिबल, बट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, जिसको वन ट्राई इट आउट टुमारो, एंड ट्राई करने के बाद डिसाइड करें कि पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। सिर्फ सुनने से नहीं डिसाइड करें, क्योंकि जहाँ इतने लोग वो पॉसिबल कर पाए हैं लाखों की संख्या में, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? इट्स जस्ट दैट मेरा वो एक स्टेप बचा है, एंड दैट इज गोइंग टुमारो एंड ट्राइंग दिस आउट। जब हम कहते हैं नॉट पॉसिबल या वेरी डिफिकल्ट, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने मन को कह दिया लेट इट बी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये इनके लिए ठीक है, ये लोग जो बात कर रहे हैं, लेकिन इनको क्या पता मेरे ऑफिस में क्या होता है, या इनको क्या पता मेरे घर में कैसे लोग हैं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उससे फिर हम अपने ही प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगा देते हैं। सो व्हाटएवर वी शेयर इट्स फॉर एवरीवन, टेक इट बैक विद यू टुमारो, अपने ऑफिस में इसको लेकर जाएं, अपने घर पर लेकर जाएं, देन द मैजिक स्टार्ट्स। सो देन आई हैव बीन मीटिंग सो मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जिनके लिए फिर ये मैजिक हुआ है, वो फील करते हैं, ये उनका अनुभव है कि उनकी पूरी सोच में परिवर्तन आया, क्योंकि परिवर्तन यही हुआ कि औरों को देखने की बजाय अपने को देख, बस वो एक ही तो स्टेप चाहिए था सिर्फ, लेकिन वो अंडरस्टैंड जब हो गया तो अपने को देखना शुरू किया, अपने को देखना शुरू किया तो अपने पर काम करना शुरू किया, और वो रियलाइज हुआ ये तो इजी है।
0: और सबसे बड़ी बात वो आहा मोमेंट ये थी कि ओ अच्छा मैं अपने आप को देख सकता हूँ, यू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आपने आज जिस बात से हमने शुरू किया है कि बहुत से लोग हैं जब प्रोग्राम देख रहे होते हैं अच्छा जरूर लगता है, लेकिन यही बात है कि मेरे लिए नहीं है। तो ये इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंस आपको हम यही कहना चाहेंगे, जो नए लोग जुड़े हैं, जो बहुत वक्त से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें भी कि ये जो आने वाली जो श्रृंखला हमारी रहेगी जिस पर हम बातचीत करेंगे, आप ही की समस्याओं को लेने वाले हैं, आप ही की वो सिचुएशंस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते हुए, या अगर ज्ञान नहीं भी जान पा रहे हैं, आप नहीं जानते थे, तो इस

0: पूरे बातचीत के दौरान आप तक वो बात जरूर पहुंचेगी। बात हम यही करते हैं शिवानी, यहीं से शुरू करते हैं कि चले
1: सिचुएशंस
0: समझ में आ गई थी, जिंदगी
1: राइट
0: समझ में आई, बहुत सी बातें कि मैं जिम्मेदार हूँ अपने ऊपर, लेकिन अभी भी जब हम सिचुएशंस को देख रहे होते हैं, और चैलेंजेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, आने वाला दौर चाहे हम ग्लोबली भी देखें और चाहे पर्सनल लेवल पर भी देखें, तो बहुत तेजी से बदल रहा है, हम तैयार ही नहीं होते हैं। और मतलब हमने अपने आपको बड़े मुश्किल से एक सिचुएशन के लिए तैयार किया होता है, वो तीसरी सिचुएशन इतनी बड़ी खड़ी हो चुकी होती है कि
1: ट्रू
0: हम फिर घबराने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो प्रिपरेशन है, क्या मेरी प्रिपरेशन उतनी है या कैसे तैयारी करनी है?
1: वी कैन नॉट डिनाई कि चैलेंजेस आर गेटिंग बिगर डे बाय डे. कहीं ना कहीं हमने बहुत मेहनत करके अपने अंदर शक्ति लाई होती है वो जो प्रेजेंट परिस्थिति है उसको क्रॉस करने के लिए, और अभी वो शक्ति उतनी भरी नहीं होती कि मेरे सामने एक उससे कई गुना
0: बड़ी
1: बड़ी
0: सिचुएशन आ
1: परिस्थिति
0: जाती
1: खड़ी हो जाती है. लेट्स टेक अ लिटिल थिंक के व्हाट आर द सिचुएशंस वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि फोकस बहुत ज्यादा हमारा सिचुएशन पर होता है और सारा दिन माइंड में वो सिचुएशन की लिस्ट जैसे कि चलती ही जाती है. सिचुएशन जो हो चुकी हैं, परिस्थितियां जो वर्तमान समय मेरे जीवन में हैं, और कुछ परिस्थितियां जो मैं ऐसे ही क्रिएट करती हूँ जो मुझे लगता है हो जाएंगे,
0: हाँ होने
1: यू नो
0: वाली है
1: ये
0: आलू
1: शायद मेरे साथ हो ना जाए, या जैसे जॉब इनसिक्योरिटी है, तो अभी जॉब है तो जॉब इज वेरी नाइसली देयर एवरी डे, बट द थॉट, सो आई एम ऑलरेडी क्रिएटिंग द सिचुएशन इवन दो द सिचुएशन इज नॉट देयर. तो नोइंग हाउ टू फेस द सिचुएशन, लेकिन व्हाट आर द सिचुएशंस वी आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज हमारे जीवन के दो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं. एक है मेरी पर्सनल और फैमिली लाइफ, और दूसरी है मेरी वर्क लाइफ,
0: प्रोफेशनल
1: चाहे वो प्रोफेशन है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे एक बच्चे के लिए उसकी वो स्टूडेंट लाइफ है, इट्स दैट लाइफ. तो अगर हम अपनी वर्क लाइफ को देखें, नाउ यू आंसर, आई विल क्वेश्चन यू, अगर
0: ओके
1: हम अपनी वर्क लाइफ, कर्म उस क्षेत्र को देखें जहां हम रोज कार्य करने जाते हैं, व्हाट आर द सिचुएशंस फॉर यू?
0: द टॉप चैलेंजेस और द
1: या
0: सिचुएशंस
1: सिचुएशंस चैलेंज, उसको चैलेंज बोले, प्रॉब्लम बोले, सिचुएशन बोले, वट एवर, बिकॉज सिचुएशन तो वही है. अब आप उसको किस रूप से देखने वाले हो वो डिपेंड करता है.
0: सी अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं, मतलब लाइक यू आर आस्किंग मी,
1: नो, इन जनरल
0: हाँ
1: फॉर
0: मतलब
1: एनीबडी
0: जनरली,
1: वर्क लाइफ,
0: हाँ
1: या
0: जो अगर एक मीडिया पर्सन के रूप में भी, तो ये कि आई एम ए फ्रीलांसर, सो रिसेशन का ये दौर जहाँ ऑलरेडी जिनकी फिक्स जॉब है
1: ट्रू
0: उनको प्रॉब्लम आने वाली है, तो आई हैव दिस कंटिन्यूअस थिंग दैट इट्स ओके राइट नाउ, आई हैव वर्क, बट वॉट विल हैपन नेक्स्ट, बिकॉज हाउ रिसेशन इज गोइंग टू हिट, रिसेशन कैसे हिट करेगा मीडिया को हम नहीं जानते
1: हमें
0: हैं
1: नहीं पता,
0: अपने
1: एंड इट्स
0: ऊपर।
1: नॉट नेसेसरी मीडिया, इट्स फॉर एवरीबडी.
0: हाँ
1: लाइक इफ यू लुक एट इट इवन ग्लोबली, शायद ही कोई ऐसा देश है अभी जो इससे हिट नहीं हुआ है, शायद ही कोई ऐसा लेवल है सोसाइटी में जो इससे हिट नहीं हुआ है. चाहे आप, यू आर टॉकिंग अबाउट द टॉप लेवल ऑफ सोसाइटी, और यू आर टॉकिंग एब्सोल्युटली द सिंपल लेबर, इवन अ लेबर गोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क टुडे इज स्टक, यू नो. तो आप एक पूरे स्पेक्ट्रम को कवर कर रहे हैं जिसमें जॉब, रिसेशन, फॉर आर्थिक परिस्थिति.
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात बहुत से लोगों के साथ ये है कि मैंने अपना कंफर्ट जोन उसके साथ कर
1: दैट
0: लिया
1: इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो गई, जॉब इनसिक्योरिटी
0: अच्छा,
1: हो
0: और
1: गई,
0: फिर मेरा जॉब जहाँ है वो बहुत कुछ मेरे बॉस पर डिपेंड कर रहा
1: तो माई बॉस, माई कोलिग्स, दीज आर ऑल द चैलेंजेस. देन ट्रांसफरेबल जॉब,
0: है।
1: चेंज ऑफ योर होल फील्ड, कई बार आपको एक जगह से उठाकर एकदम दूसरे क्षेत्र में डाल देते हैं. सो दीज आर चैलेंजेस एट वर्क, चैलेंजेस एट होम.
0: ओह यू आस्किंग मी
1: नो एवरीवन,
0: पर्सनल, बेसिकली बहुत ज्यादा सिचुएशंस, अगर घर पे देखें तो बच्चों को क्या हम सही परवरिश दे
1: दैट्स अ
0: पा रहे
1: वेरी
0: हैं,
1: बिग
0: कि
1: थिंग
0: मेजर
1: इन मेनी प्रोग्राम्स. वेर एवर आईव आस्ट पीपल व्हाट्स योर टॉप कंसर्न, कहते हैं पेरेंटिंग. ऐसे पेरेंटिंग जो कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हुआ करता था, आज सबसे बड़ी चिंता का विषय
0: क्वेश्चन
1: बन
0: मार्क
1: चुका
0: लगा लिया
1: है.
0: हमने ऊपर,
1: यस
0: क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, इतनी सारी बातें हो रही होती हैं, पीयर प्रेशर बच्चे के ऊपर भी है, हमारे ऊपर भी है, बच्चे के करियर को लेकर फाइनेंशियल जो चीजें आएंगी वो एक बहुत प्रेशर लेके रखते हैं पेरेंट्स का, आजकल का जनरल जो ये है, मेरे लिए भी अगर मुझसे पूछो तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे सामने। देन रिलेशनशिप्स, इफ यू आर सिंगल
1: रिलेशनशिप्स
0: पेरेंट, इफ यू आर यू नो इवन इफ बोथ द पेरेंट्स आर देयर, कोई पेरेंट बाहर गया हुआ है, विदेश में, मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, और वो सिंगल पेरेंटिंग में
1: डिवोर्स
0: जो,
1: केस भी बहुत बढ़ गए,
0: हाँ, मैक्सिमम ये चीजें जो होती जा रही हैं,
1: डिवोर्स है, सेपरेशन है, डेथ है,
0: और उसका पेन,
1: तो वो तो फिर मेरा रिस्पॉन्स है, लेकिन सिचुएशन जब मेरे सामने आके खड़ी होती है, एन अनटाइमली डेथ, अ डेथ ऑफ अ चाइल्ड, किसी पेरेंट के लिए या डेथ ऑफ एनी फैमिली मेंबर, एक डेथ तो एक डेथ है ही, विच कम्स एज अ वेरी बिग सेटबैक, जिसमें हमें लगता है कि ये परिस्थिति, मतलब मेजोरिटी पीपल आज कहते हैं, स्पेशली इफ इट इज डेथ ऑफ अ चाइल्ड और अ स्पाउस, अब मेरे जीवन जीने का तो कोई पर्पस ही नहीं रह गया, यू नो, सो दैट सिचुएशन इज नॉट अ सिचुएशन बट इट्स फॉर मेनी पीपल एंड ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि हम समझते कि वहां तो एंड हुआ ही हुआ उनके लिए, लेकिन ये मेरे लिए भी दी एंड है, इसके बाद मेरे जीवन जीने का कोई पर्पस नहीं है, मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है, यू नो द वे पीपल से टू देमसेल्व्स, हाउ कैन आई बी हैप्पी, यू नो आई एम और आई एम नॉट बी हैप्पी, तो इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज मैं खुश हो ही कैसे सकता हूँ, मुझे खुश रहने, सो सिचुएशन, सो डेथ, डिवोर्स, रिलेशनशिप क्राइसिस, पेरेंटिंग, कई बार चेंज ऑफ सिटी, आपको आप बहुत समय से यू नो एक जगह पर सेट हैं, एक कंट्री में सेट हैं, या आप एक सिटी में सेट हैं, एंड सडनली
0: यू हैव टू गो,
1: पीपल आर नॉट एबल टू
0: और
1: टेक
0: वो
1: इट,
0: एकदम से क्या होता है, सिचुएशन आती है तब तो आप हेड ऑन फेस करते हैं, लेकिन जो उसके बाद का डिप्रेशन
1: आफ्टर
0: सीप इन
1: इफेक्ट,
0: करता है, ये मेजर प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है,
1: तो सिचुएशन उस टाइम नहीं है ना सिर्फ, वो एक सिचुएशन अब
0: लंबा,
1: लंबा
0: हाँ
1: प्रोसेस है, तो अब अगर हम इन सारी परिस्थितियों को देखें, वर्क पे हमने देखा फाइनेंशियल, जॉब, बॉस, रिलेशनशिप्स, घर पर हमने देखा अगेन रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग, डेथ, डिवोर्स, शिफ्टिंग, व्हाटएवर, इन सभी परिस्थितियों में, अब आप ध्यान से आंसर करना, आपके आंसर पर सब कुछ डिपेंडेंट है, इन सभी परिस्थितियों में कौन सी एक चीज कॉमन है,
0: मैं
1: नहीं मैं तो कॉमन है ही, क्या हो रहा है इस हर परिस्थिति में, जो कॉमन है हर परिस्थिति में है वो
0: चेंज
1: चेंज, सी दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, परिवर्तन, परिवर्तन, एंड लाइक यू सेड वी आर नॉट रेडी फॉर चेंज, क्योंकि हमारा एक
0: इतना फिक्स्ड है,
1: कंफर्ट
0: हाँ
1: जोन,
0: जोन है
1: तो
0: कंफर्ट का,
1: हर परिस्थिति एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम नहीं लेकिन एक चेंज है, यू नो ना, द मिनट आई जस्ट लुक एट इट लाइक दैट, चेंज, चाहे चेंज इन रिलेशनशिप, चेंज चाहे, फॉर मी इट कुड बी कि यू हैव चेंज एज अ पर्सन, मैं आपको जो जानती थी इतने इतने साल, यू नो मेनी पीपल विल से अब तो आप वैसे रहे
0: बदल
1: ही
0: गए,
1: नहीं,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: चेंज चेंज, या आप मेरे साथ इतने साल थे, आज सडनली आप मेरे साथ नहीं हैं, चेंज, मेरा एक जीवन जीने की एक शैली थी, एक लाइफस्टाइल था, सडनली मुझे वो क्रैश हो गया, चेंज, सडनली मुझे एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा, चेंज, सो एवरी स्टेप जो चीज मुझे हिट कर रही है वो है चेंज, एंड समवेयर मोस्ट ऑफ अस आर नॉट रेडी फॉर चेंज बिकॉज वी आर समहाउ, क्योंकि हमने अपने आप को उस दायरे के अंदर, चाहे वो मुश्किल वाला भी दायरा था, चाहे वो दर्द वाला भी दायरा
0: तभी
1: था,
0: हम एडजस्टेड
1: लेकिन
0: थे,
1: हम एडजस्ट
0: हाँ
1: कर चुके थे, यू नो हम एडजस्ट कर चुके थे, और हमें उसके साथ जीने की एक
0: आदत हो
1: आदत
0: गई,
1: पड़ गई थी, इट वॉज माई हैबिट, इट वॉज हैबिचुअल, वेदर इट वॉज प्लेजेंट और नो वी डोंट नो, बट इट वॉज हैबिचुअल, लेकिन जहां वो चेंज आया तो इट हैज हिट मी, अब जैसे ही चेंज आएगा, लेट्स लुक एट योर सेल्फ, यू आर स्टैंडिंग दैट साइड,
0: लेकिन
1: हाँ
0: चेंज के लिए एक और चीज, जो अगर आप चेंज की बात करते हैं तो बहुत लोग ये कहेंगे कि चेंज फॉर गुड और चेंज फॉर बैड, यू नो लाइक बहुत
1: चेंज
0: चेंज, इज दिस चेंज फॉर गुड और इज दिस चेंज फॉर बैड,
1: चेंज इज चेंज ना, हाउ गुड और बैड आई विल मेक इट नो,
0: या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
1: जो यहां से चेंज आया, सी चेंज तो सिचुएशन से आ रहा है ना, चेंज बाहर है, या तो किसी व्यक्ति के अंदर या आपकी पोजिशन, चेंज बाहर से आ रहा है, गुड और बैड किस पे डिपेंड करता है,
0: मुझ पे
1: एट एवरी स्टेप जहां आपके सामने कुछ हिट करता है, इफ यू कैन जस्ट टेक आउट 1 मिनट एंड जस्ट स्टॉप एंड सी, इस समय क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है, हमेशा कुछ एक बातें होती हैं जो मेरे कंट्रोल में हैं, कुछ एक चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं
0: नहीं,
1: है, डेथ, डिवोर्स, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, एनीथिंग, माई कंट्रोल, नो, वॉट इज इन माई कंट्रोल, चेक, फाइनेंशियल क्राइसिस, माई कंट्रोल, जॉब चला गया आज, माई कंट्रोल, नो, तो मेजोरिटी 95% से ज्यादा परिस्थितियां जो आपको मिलने वाली हैं, जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं तो वो तो आप कंफर्टेबल ही हो जाते हैं ना, उसको आप कंट्रोल कर लेते हैं,
0: उसको हमें पता भी नहीं चलता कि वो चेंज हुआ है।
1: एक ट्रैफिक जैम में भी अटकना एक परिस्थिति आज है ना, आप कहते हैं इतनी मुश्किल, इतने हाईवेज बने बने, जब तक बने तब तक वी आर स्टिल अगेन स्टक, सो अगेन यू आर स्टक इन दैट, बट इन योर कंट्रोल, नॉट इन योर कंट्रोल, वॉट इज इन माई कंट्रोल इन एवरी केस, क्या कंट्रोल में है और क्या कंट्रोल में नहीं है।
0: Even my thought process, see, I would have said, लेकिन वो भी तो कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि वो जब हमें टेक ओवर कर जाता है, जैसे स्पेशली अगर किसी का जॉब छूटा, आई नो समबडी जिनको सडनली शी वॉज टोल्ड कि आपको 6 महीने पहले उन्हें टॉप का लीडर बनाया गया, मतलब कंट्री हेड, और विद इन 6 मंथ्स उन्हें बोला गया कि नहीं, यू नॉट डूइंग योर वर्क, आपको छोड़ना पड़ेगा। उसका सब कुछ उनका उस पर डिपेंड कर रहा था, वो डिप्रेशन सीप इन ऐसे करता है
1: बहन, तो एग्जैक्टली वही हुआ ना, ये सब कुछ आपका क्रैश कर गया। सपोज मेरे आसपास सब कुछ क्रैश कर गया, लेट मी लुक एट द वर्स्ट सिचुएशन दैट कैन हिट मी, एंड वो ये है कि एक पल में मेरा सब कुछ जो मैं समझती हूँ मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार भी, लेट से 1 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। अगेन नॉट इन माई कंट्रोल, बट वॉट इज इन माई कंट्रोल इवन नाउ,
0: कि मैं उसको कैसे लेती हूँ सिचुएशन,
1: बिकॉज फाइनली, लेकिन हम क्यों नहीं उस तरफ देख पाते कि व्हाट इज इन माय कंट्रोल, क्योंकि हमारा सारा अटेंशन उन बातों के ऊपर है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, सब लोग लेकिन आपस में बैठ के क्या डिस्कस कर रहे हैं, सारा जो एनर्जी लग रही है वो किस पर है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, प्रॉब्लम ही ऐसे, सिचुएशन ही ऐसे, टॉक अबाउट सोल्यूशन। अच्छा ठीक है, फाइनेंशियल लॉस हो गया, लेकिन हम डिप्रेशन में चले गए, कौन सा लॉस ज्यादा बड़ा,
0: हमारा,
1: ये किसने क्रिएट किया था,
0: हमने खुद,
1: ठीक है, दुनिया में जिन लोगों ने जो किया सो किया, जिसकी वजह से मेरा सारा धन चला गया, लेट्स से वर्स्ट केस कंडीशन, लेकिन ये जो लॉस किया ये किसने क्रिएट किया, तो एक लॉस तो हुआ, ठीक है, लेकिन उसके कंपेरिजन में जो ये लॉस हुआ कि आई गो इन टू डिप्रेशन, कल को इफ आई गो इन टू डिप्रेशन, सपोज इट गेट्स वर्स एंड मुझे हाइपरटेंशन या यू नो हार्ट की प्रॉब्लम या कुछ, अब ये लॉस किसने किया, मैंने किया। अगर मैं अपने दर्द से बाहर नहीं निकल के आ पाती और मैं घर के लोगों के साथ उस बात को लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन या झगड़े और वो सब करते रहूं और हम आपस में दूर हो जाएं, ये लॉस किसने क्रिएट किया। अब ये सब लॉस के सामने वो आपका फाइनेंशियल लॉस कितना बड़ा बैठता है,
0: और इनफैक्ट नो, यू नो व्हाट हैपेंस कि जब मेरे साथ कुछ ऐसा लॉस होता है तो मैं ही चाहती हूँ कि एवरीवन शुड अंडरस्टैंड कि मेरा गुस्सा, मेरी फ्रस्ट्रेशन जस्टिफाइड है, मेरे को जो हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड टू मी,
1: फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड मायसेल्फ, इफ आई कांट अंडरस्टैंड मायसेल्फ, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग मी, एंड मे बी यू आर इन योर ओन पेन, you see, so for me to expect कि आप मुझे समझो, मैं खुद को ही नहीं समझ पा रही हूँ। तो इसलिए हर एक परिस्थिति में फिर भी yes, the situation is very big. Question is कि अभी भी मेरे control में क्या है, मैं सारी अपनी attention उस पर focus कर दूँ। It's like मेरी एक चीज तो चली गई, लेकिन 3 चीजें तो बची है ना। लेकिन क्योंकि मैं वो 3 चीजों का ध्यान न रख कर,
0: कि वो तो है ही,
1: हाँ, फॉर ग्रांटेड उनको लगती हूँ, आज मेरा पैसा चला गया लेकिन मेरी मन की स्थिति अभी भी ठीक है, मेरा तन अभी भी ठीक है, मेरा परिवार अभी भी ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया तो ये तो गया, साथ में कितना और नुकसान हुआ, क्यों नुकसान हुआ, सिर्फ क्योंकि आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन देयर, सिर्फ बिकॉज आई वॉज मोर, क्यों हुआ, नॉट इवन लुकिंग एट द सोल्यूशन, ओनली लुकिंग एंड चर्निंग ओवर द प्रॉब्लम। सोल्यूशन हर परिस्थिति में है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली आपके सामने, कोई चैलेंज ही नहीं आने वाला जिसमें सोल्यूशन नहीं है। यस, इट जस्ट डिपेंड्स मुझे कितना टाइम लग जाता है उस सोल्यूशन तक पहुंचने में, और सोल्यूशन भी कब दिखाई देगा, सोल्यूशन भी कब दिखाई देगा, जब माइंड थोड़ा सा
0: नहीं तो
1: मैं अपने दर्द में कौन सा सोल्यूशन दिखाई देगा, दर्द में तो सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखाई देगी, और जितना दर्द बढ़ता जाएगा प्रॉब्लम इतनी भी होगी ना, तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी, और प्रॉब्लम जितनी बड़ी होती जाएगी उतना हम सोल्यूशन से
0: दूर होते
1: जाएंगे। परमात्मा का जो ज्ञान हमें मिलता है राजयोग के द्वारा, उसका पूरा पर्पज ही ये है कि जैसे ही आप अटेंशन आपके कंट्रोल में जो है, एंड दैट्स ओनली वन थिंग, My state of being, उस पर जैसे ही जाता है तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को छोटा देखना शुरू करते हैं, क्योंकि आप प्रॉब्लम से बड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं कमजोर हो जाऊं तो मेरे सामने, आफ्टर ऑल इट्स अ फाइट बिटवीन टू ना, प्रॉब्लम एंड मी, हम दोनों का आपस का संघर्ष है, ज्यादा शक्तिशाली कौन. लेकिन क्योंकि मैं इतनी कमजोर हो जाती हूँ, इतनी दर्द में चली जाती हूँ, तो वो प्रॉब्लम मेरे लिए इतनी बड़ी हो जाती है कि मैं तो उसको देख के ही बैठ जाती हूँ.
0: इनफैक्ट यहाँ तो मुझे भी लग गया कि हमें प्रॉब्लम कहना ही नहीं चाहिए. द वे यू सेड इट्स ओनली अ चेंज,
1: इट्स द ओनली अ चेंज, इट्स अ सिचुएशन, इट्स अ चैलेंज. उसको चैलेंज आप बोलो, बहुत बड़ी बात आ गई आपके सामने, आप उसको चैलेंज करके बोलो. प्रॉब्लम करके बोलते ही तो वो प्रॉब्लम ही एक लगने लगती है.
0: एक मुसीबत हो ना, हजारों मुसीबत.
1: यू नो, हमारी वोकैबुलरी, हमारी वोकैबुलरी भी ऐसे आ गई है. तो चेंज आएगा ही. There is only one thing, I had read this somewhere, very beautiful. There's only one thing that is constant, and that is change.
0: Change, yes.
1: So it's so beautiful. जब मुझे ये बात समझ में आ गई है कि एक चीज है जो कभी रुकने वाली नहीं है, और वो है परिवर्तन. अब उसको मैं संघर्ष करूं उसके साथ, इट्स नो यूज. जस्ट बिकॉज आई थॉट जैसे चल रहा था वैसे बहुत अच्छा था, ऐसे ही क्यों नहीं चलता रहता ये, वाई डज दिस हैव टू चेंज. तो वो मेरे बोलने से या मेरे सोचने से रुकने वाला नहीं है. बट जैसे ही चेंज सामने आएगा, नाउ व्हाट डज इट डिमांड फ्रॉम यू, क्या चाहिए आपको?
0: मेरा भी तो चेंज होनी चाहिए.
1: रिस्पॉन्स, एवरी चेंज, दिस चेंज कम्स फ्रॉम यू, रिएक्शन, राइट?
0: अच्छा, एक चीज मैंने और भी पढ़ी थी, जैसे आपने कहा कि दिस वन थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इन लाइफ दैट इज चेंज, एंड उसके आगे ही था चेंज इज ऑलवेज फॉर गुड. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है लोगों के लिए. सो इस पर हम एक्चुअली पूरी बातचीत करना चाहेंगे.
1: चेंज, व्हेन विल इट बी फॉर गुड? जब उसको आप प्रॉब्लम ना देखकर आप उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हो. कि इस, क्योंकि वही तो परमात्मा हमें रोज बताते हैं कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत बहुत अच्छा. अब इम्पोर्टेंट मेरे लिए सिर्फ ये है कि मुझे इस सेंटेंस को, क्योंकि परमात्मा के महावाक्य है, किसी मनुष्य आत्मा के नहीं, तो परमात्मा अगर ये स्टेटमेंट हमें दे रहे हैं, दैट मीन्स इट्स द ट्रूथ, दैट इज द फेथ. नाउ इफ आई रिजेक्ट द स्टेटमेंट, आई से ऐसे कैसे हो सकता है कि जो भी हो रहा है मेरे साथ वो अच्छा, देन इट्स ओवर फॉर मी. मैं उसको उस दृष्टिकोण से लूंगी ही नहीं. लेकिन जहां ये फेथ है कि परमात्मा ने ये कहा है, और ये सेंटेंस ऐसा है जो मुझे लगता है हर एक को पता है, यू गो एनीवेयर इट्स रिटन एवरीवेयर कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग फॉर द गुड. लेकिन इसको बिलीव कौन कर रहा?
0: कोई नहीं कर पा रहा है.
1: इसमें फेथ कितना है कि हाँ जो हो रहा है वो अच्छा. तो लेकिन परमात्मा के महावाक्य है, अगर मैं उस समय, जिस समय मेरे सामने वो चैलेंज आता, मैं अगर वो महावाक्य को अपनी स्मृति में ले आऊं और उसके बेसिस पे अब रिस्पॉन्स क्रिएट करूं, तो वो सिचुएशन मुझे प्रॉब्लम ना लगकर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी कि अब इसमें मुझे क्या करना है. वी अग्री, एब्सोल्युटली अग्री कि जो भी सिचुएशन आज आ रही है ये छोटी नहीं है, ये बड़ी है, कल को और बड़ी भी आ सकती है. लेकिन डज दैट मीन कि आई विल कंटिन्यू टू लिव माय लाइफ इन पेन, और इज देयर अनदर चॉइस?
0: दैट इज व्हाट इज फियर आल्सो. कंटिन्यूस डर, कंटिन्यूस डर. शिवानी, आज की जो बातचीत हमने की है, सिचुएशंस हमारे सामने वो हैं जो हर व्यक्ति के जीवन की हैं, और कहीं ना कहीं एक ये परिवर्तन कि ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम, ये मुसीबत, ये सरदर्द ना होकर एक चेंज, एक परिवर्तन है. आगे हम जरूर अपने आने वाली श्रृंखला में जरूर देखेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी कैसे है, कैसे इस चैलेंज में हमें देखना है कि ये शुभ के लिए कैसे है, क्योंकि परमात्मा का महावाक्य है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल खरा और सच्चा है. सिस्टर शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: बिल्कुल, आज जहाँ शुरुआत हमने की थी, सचिवानी ने यही हमसे रिक्वेस्ट की थी, आग्रह किया था कि हम इस जो पूरी बात हो रही है ये सिर्फ बात के लिए नहीं है, हमारे आपके जीवन का एक हिस्सा है, उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास ज़रूर करें. आज ही से, कल का भी क्यों इंतज़ार करें, आज ही से जो सिचुएशन अभी मुझे तंग कर रही है या जो सिचुएशन कल मेरे सामने आ सकती है, मेरी कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, मेरा कोई ऐसा इंटरव्यू हो सकता है मेरे बॉस के साथ जहां ये तय होना हो कि मैं किस तरफ जाऊंगा, या पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी बात हो सकती है जो डिसीजन लेना हो, अगर हम उसे एक चेंज के रूप में, एक परिवर्तन के रूप में एक्सेप्ट कर ले. गुड और बैड हम बाद में देखेंगे, आने वाले एपिसोड्स जो हैं उसमें हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे कि उसमें गुडनेस क्या है. चाहे वो कोई भी सिचुएशन रही हो, और उसको हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, उसके लिए हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये बातें भी जानेंगे। लेकिन आज के लिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इसे अपने जीवन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करके जो आप अनुभव करते हैं वो हमारे साथ शेयर करें। उसके अलावा अगर आप के पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है, आप देश विदेश में फैले ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पर जा सकते हैं और अपने सवालों के जवाब तलाश सकते हैं। अगर आप नज़दीक के सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन पर संपर्क करें या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई है कि जीवन में कोई भी परेशानी है या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी मुसीबत जिसे हम अभी तक मानते आ रहे हैं, वो एक चैलेंज है, एक परिवर्तन है। इस थॉट को अपने साथ रखें, आने वाली कड़ियों में और बहुत सी बातें करेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिड़के बोलना है, कुछ भी हुआ चिड़के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पाप और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, व्हेरेवर, एंड फॉर हाउएवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माय चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: कैसी उलझन, कैसी पहेली,

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, ओम शांति। इन दिनों हम बात कर रहे हैं तनाव की, स्ट्रेस की, और ये एस्पेक्ट पूरी तरह से समझ में आ गया है कि स्ट्रेस पूरी तरह से दूर किया जा सकता है, हम एक तनाव मुक्त जिंदगी को जी सकते हैं। कुछ थोड़ी थोड़ी बातें याद रखने की ज़रूरी हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हमने अपने साथ जोड़ी थी पिछली कड़ी में, आपको याद होगा कि किस तरह से साइलेंस कैन बी अ रियल हेल्प, यानी कि अगर हम साइलेंट नहीं भी हो पाते तो फिर धीरे बोलें और कम बोलें और मधुर बोलें। तो कहीं ना कहीं ये जो धीरे बोलना है, कम बोलना, मधुर बोलना, हमारे अंदर वो परिवर्तन लाना शुरू कर देगा। और उसके आगे हमने बात की थी लेट गो, अटैचमेंट को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। हम लेट गो कह तो देते हैं लेकिन करना कैसे है वो हमने पिछली कड़ी में जाना था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जो इससे जुड़े हुए होंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति,
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, साइलेंस, साइलेंस इज पावर। वी ऑल बीन थिंक लिसनिंग अबाउट इट, हियरिंग इट, और जहाँ तक एक्सपेरिमेंट करने की बात है कि थोड़ी देर या थोड़े दिन ऐसे करके देखें कि कम बोलें, धीरे बोलें, मधुर बोलें, और इसके साथ लेट गो, इस पे भी हम दोबारा एक बार बाद में आएंगे। लेकिन फिलहाल हम आगे चलते हैं थोड़ा और ये जानते हैं कि व्हाट नेक्स्ट।
1: जो तीसरा टिप हमें जो सारा दिन अपने अंदर याद रखना है, दैट इज लेट बी,
0: जो है जैसा है
1: लेट इट बी। अगर आप सारा दिन एक इंटरनल चेकिंग एक दिन करके देखें, हम सारा दिन औरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। इनफैक्ट अपनी लाइफ में उतना इंटरफेयर नहीं करते हैं लेकिन औरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं। हर समय जो एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन होती है वो औरों के बारे में होती है।
0: वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं,
1: वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ऐसे क्यों चल रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं,
0: द बिगर वंस, पता है वो ऐसे करते हैं, पता है वो ऐसे करते हैं, डेफिनेटली यस।
1: सो वी आर ऑलवेज ट्राइंग कि हम औरों की लाइफ को फिक्स करते रहें, क्योंकि हमने अपने ऊपर जिम्मेवारी ली है औरों के जीवन को फिक्स करने के लिए, एंड इन द प्रोसेस मेरे पास अपनी अपने आप को देखने के लिए टाइम नहीं है। तो इट इज़ फ्यूटाइल जो हम कर रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, एनर्जी ड्रेनेज हो रही है वो अलग। तो जिसको हम कहते हैं कि हम सारा दिन दूसरे की स्क्रिप्ट को लिखने की कोशिश करते रहते हैं, आई एम राइटिंग योर स्क्रिप्ट, एंड बिकॉज आई एम राइटिंग योर स्क्रिप्ट एंड आई एम राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ सो मेनी अदर पीपल, आई जस्ट डोंट फाइंड टाइम टू राइट माई ओन स्क्रिप्ट, यू नो, बिकॉज मेरा फोकस है औरों की स्क्रिप्ट, इनके जीवन कैसी चलनी चाहिए, इनको क्या करना चाहिए फॉर अ गुड लाइफ, वी आर वेरी गुड एट ऑल दैट। तो हम अपनी स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं तो हम औरों के जीवन में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। और उसका रीज़न क्या है, दो बिलीफ सिस्टम, एक कि हम औरों को कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरा कि दूसरे लोग मेरी खुशी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या होता है कि आपको चेंज करने से मुझे खुशी बढ़ जाएगी, तो मैं एक्चुअली आपको आपके लिए नहीं चेंज कर रही होती हूँ,
0: अपने लिए कर रही
1: हूँ। आई एम चेंजिंग यू बिकॉज व्हेन यू बिकम लाइक व्हाट आई वांट यू टू बी, आई विल बी हैप्पी। तो ये जो दो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल्स बिलीव्स हमने पकड़ लिए, एक कि मैं आपको कंट्रोल कर सकती हूँ और दूसरा कि मेरी मनोस्थिति आप पर डिपेंडेंट है, ये मुझे सारा दिन औरों का स्क्रिप्ट लिखने पर मजबूर करता है।
0: दैट्स रियली वंडरफुल। यहाँ पे एक जो हम बहुत दावे के साथ बात कहते आए हैं कि माँ बाप तो है वो तो चेंज करेंगे ही, बच्चों की भलाई के लिए करते हैं, यहाँ वो बिल्कुल आई थिंक इट फॉल्स डाउन, क्योंकि हम बच्चे को जैसा हम चाहते हैं बनाना इसलिए चाहते हैं, हमें लगता है कि वो सही है, वो सही तरीका है। ओह गॉड, दिस इज सच अ बिलीफ व्हिच वी हैड।
1: बिकॉज़ सबसे ज्यादा जो स्क्रिप्ट इंटरफेरेंस होता है वो एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में, जबकि इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। तो जहाँ हमें समझ में आ गया कि आई कैन नॉट कंट्रोल इवन अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, हम बाकी सब रिलेशनशिप्स में फिर भी कुछ हद तक इस बात को समझ लेते हैं, लेकिन एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में एक पेरेंट हमेशा ये फील करता है कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, और वो भी एक फील करते हैं कि ये तो छोटे हैं, तो ये तो कुछ भी राइट नहीं डिसाइड कर पाएंगे अपने लिए, तो इनके लिए सारा कुछ
0: मुझे ही करना है। एंड राइट नाउ, यस डेफिनेटली, डीप विद इन, अगर पेरेंट, हर पेरेंट जाके देखे, और जब वो बच्चे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, बदलने की कोशिश कर रहा है, समवेयर अपनी ही खुशी के लिए कर रहा है, आई एक्चुअली एक्सेप्ट इट नाउ, यू नो,
1: वो अपने, क्योंकि मैं आपको कुछ बनाना चाहती हूँ, तो क्या बनाना चाहती हूँ आपको, जो मुझे अच्छा लगता है, तो
0: एक जो मेरी नज़र में सही है।
1: तो एक पेरेंट को भी ये समझना होगा कि हमें बच्चे को कंट्रोल नहीं करना है, एक आत्मा है, सी आत्मा का आत्मा के साथ एक कार्मिक कनेक्शन है। तो एक पेरेंट और बच्चे का जो कार्मिक कनेक्शन बनता है कि एक आत्मा है जिसकी जिम्मेवारी मुझे मिली है टू प्रोटेक्ट इट एंड ब्रिंग इट अप इन दिस वर्ल्ड, दैट्स ऑल। उसको अपना प्यार स्नेह देकर उसको बड़ा करना है मुझे। मेरी जिम्मेवारी कितनी है, उसकी फिजिकल नीड्स को पूरा करना, दुनिया की सारी बातों से उसको वाकिफ कर देना, लेकिन उसके बाद उसकी यात्रा उसकी अपनी होनी चाहिए। आई गाइड हिम, आई कोच हिम, आई मेंटर हिम, बट आई डोंट कंट्रोल हिम। गाइडेंस आपको जब चाहिए, आई एम देयर फॉर यू। आपको सही और गलत नहीं कहीं क्लियर हो रहा, आई एम देयर फॉर यू। लेकिन आपकी यात्रा वो आपकी अपनी जर्नी होनी चाहिए। सो वी हैव टू लेट देम फाइंड देयर वे। यू नो, हम क्या समझते हैं कि जो गलतियां मैंने की थी
0: वो मैं नहीं होने दूंगा, वो मैं अपने बच्चे के साथ नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी।
1: तो उससे क्या होता है, हम रास्ते में जाकर खड़े हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, हम रिजिड हो जाते हैं।
1: अब वो रिजिडिटी उस बच्चे के लिए, इट्स लाइक मैं इस रोड पर जा रही हूँ, भले आपको पता है ये रोड रॉन्ग है, लेकिन आप मेरी रोड पर, मेरे रास्ते के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं कि नहीं, मुड़ो यहाँ से वापस, इस रास्ते पर जाओ। बट आई एम लाइक वांटिंग टू गो ऑन दिस रोड। तो तब एक जो रिलेशनशिप में एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आता है कि ये नहीं समझ पाते मेरे को, मैं नहीं समझ पाता इनको, और हमने कह दिया उसको जेनरेशन गैप। एक्चुअली वो एक बहुत सटल कंट्रोलिंग चल रहा है कि मैं इनका सही जानता हूँ। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, गिव देम एवरीथिंग फिजिकली, यू हैव टू गिव एवरीथिंग टू देम टिल दे ग्रो अप, एंड उसके बाद लेट देम बी ऑन देयर ओन। उनकी जर्नी उनकी अपनी है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेट देम बी वॉट दे वॉन्ट टू बी एज अ पर्सन। Let them be what they want to be. Don't try and make them what you want them to be.
0: Because you think it's right.
1: Mera ye bachcha hai bahut kam bolta hai. I don't like it. So, nahi, tumhe jyada bolna chahiye. Tum itne shy kyun ho? Baaki bachchon ko dekho. So, I am not letting them be what they want to be.
0: And what they are by nature, maybe, you know, they have this...
1: So, personality ke against bahut zyada conflict ho jata hai. क्योंकि हम उनकी बार बार उनकी पर्सनालिटी के अंदर यू नो ये चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ज़्यादा बोलना चाहिए, हमें लगता है, और फिर हमें लगता है कि हम उसके लिए बोल रहे हैं, वो उसके फ्यूचर के लिए, लेकिन कोई चीज़ जो है वैसी है, आप उसको बहुत ज़्यादा इस तरह से फोर्सफुली नहीं चेंज कर सकते हो। सो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा ये कंट्रोलिंग की प्रॉब्लम आती है। और हमें ये, जैसे हमने पहले भी बात की, आत्मा और आत्मा के इंटरेक्शन में, चाहे वो रोल कोई भी हो, कंट्रोल अगर करेंगे तो हम दूर चले जाएंगे। अगर हम सचमुच में अपना कोई प्रभाव हम चाहते हैं कि उस आत्मा पर पड़े, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ओनली फर्स्ट आई हैव टू बी दैट, बस आई हैव टू बी दैट एंड नॉट कंट्रोल। जैसे कंट्रोल किया तो एक बैरियर बीच में खड़ा हो जाएगा, और अगर कंट्रोल नहीं किया तो वो बैरियर हट जाएगा। जैसे ही वो बैरियर हटा, तो मैं जो हूँ और मैं जो एनर्जी आपको ट्रांसमिट करना चाहती हूँ, दैट्स फ्लोइंग। अब उसका जो इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ता है और आप उसको फिर जैसे लेते, दैट्स योर जर्नी आफ्टर दैट, बट माय जर्नी बिगिंस। लेकिन अगर आपने बीच में एक दीवार लगा दी, आई कांट डू एनीथिंग, यू विल मूव अवे फ्रॉम मी। तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और प्योर इंटेंशन, इंटेंशन नहीं होनी चाहिए इन्फ्लुएंस करने के। क्योंकि अगर इंटेंशन है कि अच्छा ठीक है मैं इन्फ्लुएंस कर दूं, कंट्रोल नहीं करूं,
0: मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे,
1: इट्स लाइक कंट्रोल होने की, अच्छा ठीक है, इन्फ्लुएंस किया नहीं जा सकता, इन्फ्लुएंस हो जाएगा,
0: हो जाते हैं।
1: आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, दूसरे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो वो प्रभाव उन पर ऑटोमेटिकली।
0: लेकिन यहाँ जो अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आते हैं सिस्टर शिवानी, बिकॉज एवरी टाइम यू नो हमारे जितने दर्शक हैं वो यही कहते हैं कि बहुत अच्छी लगती हैं ये बातें, बहुत समझ में आती हैं, क्लैरिटी से आ जाती है, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिकल सिचुएशंस आती हैं समझ में नहीं आता कि हम कैसे करें। अब एक अगर हम डॉटर, मदर डॉटर का लेते हैं कि वो टीनेजर है, वो रात की पार्टी में जाना चाहती है, वो शॉर्ट स्कर्ट पहनना चाहती है, वो कुछ ऐसी चीज़ करना चाहती है, वो करना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू बी लाइक दिस और शी वॉन्ट्स टू डू इट, वी कांट अलाउ इट।
1: एब्सोल्युटली। तो वी ऑलरेडी सॉ बिफोर कि हमें बैठकर बात करनी पड़ेगी उस बारे में, और हमें डूज एंड डोंट्स अपने जो हैं वो मिलकर बनाने पड़ेंगे। अगर हम कहते हैं नहीं आपको ये नहीं पहनना, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए आपको लेट नाइट नहीं जाना, देन इट्स अ कंट्रोल। और मैं, आई एज अ चाइल्ड वुड फील, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, I want to lead my life the way I want to. एज अ पेरेंट विल थिंक ये तो अभी बहुत छोटी है, ये ऐसे नहीं कर सकती है. तो हम एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. एंड इवन दो हम अच्छे के लिए कह रहे हैं लेकिन दूसरे को वो बात अच्छी नहीं लग रही होती. तो सबसे पहले तो मुझे एक है एनर्जी. तो मेरे अंदर एनर्जी आती है जो थॉट क्रिएट होती है ये गलत कर रही है, दैट इज रेजिस्टेंस, और वो दूर चली जाएगी. अगर मैं ये एक्सेप्ट कर लूँ कि इसकी एज के हिसाब से ये राइट बोल रही है, इसकी एज में शायद जब मैं थी तो मैंने भी बहुत सारी ऐसी बातें बोली, चाहे उस समय के हिसाब से बोली,
0: लेकिन वो रास्ता गलत है ये तो मुझे मालूम है.
1: जैसे ही मैंने बोल दिया कि आप गलत हो,
0: नहीं आप गलत नहीं हो, आप तो चले ठीक है,
1: मतलब वो जो आप कपड़े पहन रहे हो वो गलत है, जिस आप पार्टी में जाना चाहते हो वो गलत है, मैंने आपको बोला ना, जैसे सोचा भी कि आप गलत हो. एक्सेप्टेंस यही तो आती है कि आई अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली फाइन दैट यू लव टू वेयर दैट स्कर्ट. आई अंडरस्टैंड कि आपको वो पार्टी में जाना भी बहुत अच्छा लग रहा है. एंड आई कैन शेयर विद हर कि एज अ डॉटर आई हैड द सेम कॉन्फ्लिक्ट विद माई मदर, कि उनको भी मेरी बात नहीं समझ में आ रही थी. आई अंडरस्टैंड एंड एब्सोल्युटली अग्री कि यू आर राइट. You know, and I have to feel that. Mostly हम ऊपर से बोलते हैं.
0: Yes, somewhere we don't want to accept.
1: Mostly हम ऊपर से बोल देते हैं. मुझे अंदर से समझना होगा कि उस बच्चे के लिए वो बात कितनी right है उस time. कितनी right है, क्योंकि आप देखो जब हम बच्चे थे तब भी हम यही समझते थे कि हमारे पेरेंट्स को क्यों नहीं पता चलता कि उस पार्टी में जाने में कुछ रॉन्ग नहीं है. तो वी ऑलवेज फेल्ट कि वो हमेशा क्यों हमें गलत समझते आए. तो आज जब हमें चांस मिला है चेंज होने का, तो आई विल हैव टू अंडरस्टैंड कि उसके शो में जब मैं थी तो मुझे वो बात राइट लगती थी, जैसे ही मेरी सीट इस तरफ हो गई तो मुझे वो बात रॉन्ग लगने लगी,
0: क्योंकि मुझे दिखने लग गया पूरा कि ओवरऑल सिनेरियो क्या है.
1: सबसे पहले जैसे ही वो राइट आपने कहा और एक्सेप्टेंस कहा, एनर्जी फ्लो करेगी. अब अगर आप शेयर करेंगे उसके साथ जो आपकी एप्रिहेंशंस है उस चीज को लेकर, शी विल बी मोर रिसेप्टिव. Not necessary कि वो initially पहली बार में आपको बोल देगी हाँ जी तो ठीक है आई विल नॉट गो टू द पार्टी, ठीक है आई विल नॉट, वो नहीं होगा. लेकिन हमें उसको एक्सेप्ट करते हुए अपनी apprehension को अगर शेयर करते जाएंगे, भले इफ शी wants टू एक्सपेरिमेंट इट वंस, लेट हर डू इट अंडर सम गाइडेंस, स्लोली द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड.
0: एंड मे बी यू नो इफ इवन इफ शी रिजेक्ट्स योर प्रपोजल यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ऑल्सो. यू नो वट हैपन्स इज दैट अगर हम बहुत अच्छे बन के उसकी पूरी तरह से बातें समझ के एम्पथाइज करके उसको तब समझाने की कोशिश करते हैं और उसके बावजूद बच्चा रिजेक्ट कर देता है, वी कांट टेक इट.
1: हाँ, क्योंकि हमने सोचा कि मैंने एक्सेप्ट करके किया था तो इनको पहली बार में मान लेना चाहिए था. इट विल नॉट हैपन लाइक दैट. एक्सेप्ट करना मतलब एक रिलेशनशिप के अंदर एनर्जी को फ्लो करते रहना. अगर रेजिस्टेंस आ गया वो छुप कर सकते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. मतलब आज बहुत सारी एवेन्यूज ओपन है विद द वे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है, और देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चे आज कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता है, एंड दैट्स अनहेल्दी. इससे ज़्यादा ये अच्छा है कि मैं आपको बता कर करूँ, इवन इफ यू आर नॉट रेडी फॉर इट. लेकिन जहाँ मुझे बार बार आपसे रेजिस्टेंस मिलेगा, आप नहीं बताएंगे, तो हाउ डिफिकल्ट फॉर मी इज इट टुडे टू लीव द हाउस वेयरिंग अ सलवार कमीज and just change somewhere else. आपको क्या पता चलेगा? Nothing. And majority children are doing that. How difficult is it कि बोलो कि मैं स्कूल जा रही हूँ और चले कोई मूवी जा. Children are doing that.
0: I think it's happening every day.
1: कितनी बार आप मूवी में चले जाओ, आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ, बच्चे हैं वहाँ पे. क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे?
0: स्कूल यूनिफॉर्म्स में है तो साफ दिखता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं. Definitely.
1: तो जहाँ रेजिस्टेंस मिला हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया. अब जब हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया तब तो बहुत कुछ और हो सकता है जो पेरेंट को पता भी नहीं चलेगा. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस, एनर्जी ब्लॉकेज थी. अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया होता तो वो उनको ये पता होता कि हम जो भी कर रहे हैं वी कैन टेल आवर पेरेंट्स. हर पेरेंट आजकल ये पूछता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे हमारे को हर बात बता दें. दे वॉन्ट दैट. लेकिन उसके लिए फिर हर बात सुनना की पोटेंशियल तो होनी चाहिए ना. जैसे ही वो अपनी बात शेयर करेगा बोलोगे यू रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो बच्चा बोलेगा ठीक है देन आई एम नॉट टेलिंग यू. सो अगर मुझे ये पता होगा कि आप मेरी, मैं आई कैन कम एंड टेल यू सबसे अजीब चीज एंड यू विल स्टिल एक्सेप्ट, तो मैं आपके साथ हर बात आकर शेयर करूंगी. लेकिन अगर मुझे पता है कि हर छोटी छोटी बात पर आप बोलोगे ये गलत है, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कैसी है दुनिया आउटसाइड, तो मुझे पता है दुनिया कैसी है आउटसाइड. आई विल फाइंड माय वे एंड आई विल डू इट माय वे. तो ये जो बैरियर होता है ये बहुत ज्यादा हमने ही क्रिएट किया होता है, क्योंकि बचपन से एक्चुअली एक बच्चे को आदत होती है अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करने की, तो हमने बचपन में उनकी बातें सुनते गए अगर वो संस्कार इतना स्ट्रांग होता है कि वो बड़े होकर भी शेयर करेंगे, लेकिन वो शेयर करना कब बंद करते हैं, आई हैव टू आस्क माई सेल्फ.
0: यस, वेरी ट्रू.
1: क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं अब बच्चे मेरे से बात नहीं करते हैं, वो हर वाली जो पहले वाली करते हैं, अब बच्चे छुपाते हैं कुछ बातें. आई हैव टू आस्क माई सेल्फ. बहुत ईजी है बोलना कि दे आर रॉन्ग, अब वो छुपाते हैं बातें. क्यों क्यों जरूरत पड़ी छुपाने की? क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला. बहुत सारे परिवारों में है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि उसका फाउंडेशन यही था, एक्सेप्टेंस. फिर जब वो शेयर करते हैं तो फिर वो एक बात एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन शेयर करना ही बंद हो जाएगा तो फिर तो बहुत ज्यादा दूरी आ जाएगी.
0: वंडरफुल. सो लेट बी एक्चुअली, अगर हम
1: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपना डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसको एक कंट्रोलर के तरह नहीं, एक गाइड की तरह. एक गाइड गाइड करता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको साक्षी होना ही पड़ता है. तो औरों की स्क्रिप्ट लिखना बंद करके अपनी स्क्रिप्ट लिखे और बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें. और अगर कोई हमें बुलाता है इंटरफेयर करने के लिए, यू नो पीपल अपने साथ शेयर करते हैं अपनी सारी बात, तो शेयर करें विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट. तो उससे क्या होगा, हम उनको जो वो पूछ रहे हैं वो तो बता देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा अगेन कंट्रोल नहीं करेंगे. नहीं, फिर आप मैंने जो बताया आप उस अनुसार करें. नहीं, लेट पीपल बी द वे दे वांट टू बी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट बी शुड ऑलवेज बी इन माई माइंड कि जहां भी मैं किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, स्टॉप, लेट देम बी, दे विल फाइंड देयर वे. यू नो इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि हर आत्मा अपनी रास्ता ढूंढ लेती है. हर आत्मा, हम ही सोचते हैं कि नहीं हम जल्दी से उसको उस रास्ते पर ले जाए, वो पॉसिबल नहीं होता. एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्सेप्ट एवरीथिंग. जहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है, अगेन इट्स वेरी वेल कनेक्टेड, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस आता है तो जिसके भी प्रति या जिस सिचुएशन के प्रति मेरे अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो मैं एक्चुअली उसको और शक्तिशाली बना देती हूँ. जैसे हम कहते हैं ना, वो और जिद्दी होते जाते हैं.
0: हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनके अंदर वो आदत और कड़क होती जाती है. तो वो रेजिस्टेंस, और फिर यहाँ रेजिस्टेंस, हम बहुत बार बाहर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कहने के लिए, लेकिन अंदर रेजिस्टेंस है. तो ये रेजिस्टेंस सामने वाले को या सिचुएशन को और भी एम्पावर करता जाता है. तो वी नीड टू रिमूव दैट एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज, क्योंकि हर चीज जो हो रही है वो परफेक्ट
0: फॉर दैट टाइम, फॉर दैट मिनट, फॉर दैट यू नो पूरा पर्सपेक्टिव में वो सही है.
1: तो उस क्षण में उसको एक्सेप्ट करें, अगले क्षण में फिर उसको जिस तरह से चेंज करना है वो कर सकते हैं. तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग. एंड जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है पास ऑन. हमें जो कुछ मिलता है उसको हम पकड़ कर रख लेते हैं. हमें जो कुछ मिला है वो मिला है पास ऑन करने के लिए. जिन लोगों को भी हम सारा दिन में मिलते हैं, शेयर शेयर विद देम एवरीथिंग, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, अपनी क्वालिटीज, हर चीज शेयर करें.
0: क्वालिटीज वो जो हम सचमुच में समझ चुके हैं अपनी. Absolutely. जो कि हर दूसरी आत्मा में भी है.
1: अब तो क्वालिटीज तो बहुत सेकेंडरी बात हो जाती है. इवन नॉलेज एंड स्किल्स शेयर करने में हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चलते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जो हमारे पास है अगर हम उसको पास ऑन नहीं करेंगे तो हमारे पास नया कहाँ से आएगा. हम बस उतने को ही लेकर पकड़ कर रख लेते हैं. जैसे एक नदी को हम देखते हैं जो ऊपर से बहती हुई जाकर नीचे सागर में जाकर मिल जाती है. यू जस्ट हैव टू सी द जर्नी ऑफ द रिवर, क्योंकि माय लाइफ इज लाइक दैट जर्नी.
0: लेट इट फ्लो, एक्चुअली यू नो एवरीथिंग हैज टू फ्लो,
1: एवरीथिंग हैज टू फ्लो. अब वो रिवर क्या करता है, जब वो नीचे फ्लो कर रहा है, एक तो वो अपनी यात्रा अपने आप कर रहा है, इट फाइंड्स इट्स वे. बीच में कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढता जाता है. वो जो नदी है, जो वो पानी की लहर जो फ्लो कर रही है, वो कितने सारे क्रीचर्स के लिए घर भी बन जाती है, कितने सारे उसके अंदर रहते हैं. लेकिन उस रिवर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है वो क्या,
0: जीवन.
1: किसको?
0: जीवन दायिनी, मनुष्य को देना.
1: एब्सोल्युटली. सिर्फ मनुष्य को नहीं, उसकी यात्रा में जो कुछ आता है
0: उसको जीवन देते.
1: एक फूल, एक पत्ता, एक टहली, एक जानवर, एक पशु, एक पक्षी एंड ह्यूमन बींग, उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी यात्रा में एवरी थिंग, एवरी लिविंग बींग जो आता है, इट नरिशेज दैट लिविंग बींग. दैट्स द जर्नी ऑफ द रिवर.
0: वाओ ब्यूटीफुल, दैट्स नाइस.
1: दैट्स माय जर्नी. मैं भी तो उसी तरह हूँ. आई एम फाइंडिंग माय वे. इट्स ओके. देयर आर ऑब्स्टिकल्स. आई एम फाइंडिंग माय वे. आई हैव गिवन शेल्टर टू अ फ्यू क्रीचर्स. दैट्स ऑल्सो ओके. बट वॉट इज माई मेन पर्पज इन लाइफ? बिकॉज वॉट्स माई पर्पज इन लाइफ, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है. मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? और वो समझते हैं कि कोई और उनको बता पाएगा कि व्हाट्स माय पर्पस इन लाइफ. पर्पस इन लाइफ इज कि यू आर फ्लोइंग. स्टैग्नेंट वाटर नहीं बन जाओ जो एक जगह रुक जाता है. फ्लो करो, और आपके फ्लो होने में, आपके कॉन्टैक्ट में जो भी आता है
0: उन्हें नरिश.
1: और नरिश करना अर्थात जो मेरे पास है वो सबको, क्योंकि जैसे ही उनके साथ शेयर किया उनको भी एम्पावरमेंट मिल जाते. इमेजिन गोइंग टुमारो मॉर्निंग टू वर्क विद दिस फीलिंग, देन वर्क इज नो लॉन्गर वर्क. एक है मुझे काम करने जाना है, पैसे कमाना है, घर आना,
0: और वहां सफोकेट होना है, वहां पता नहीं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा.
1: एक है मुझे कल जाना है अपने जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए, और वो ये है कि कल सारा दिन में जितने लोग मुझे मिलेंगे उनको नरिश करना,
0: and give them happiness, you know? Yeah.
1: ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Imagine how the day will pass. And then I'm sharing and giving without expecting. At the end of the day, mujhe kaisa lagega? Do I have to think, is satisfaction kya hoti hai? Contentment kya hoti hai?
0: Stress management kya hoti hai? I think stress has gone somewhere up, you know. It's like in this whole conversation, I think, mujhe lagta hai ki humare darshak bhi zarur is baat ko anubhav kar pa rahe honge ki is puri baatcheet mein stress kahin dikha hi nahi. कहीं था ही
1: स्ट्रेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बात करनी थी. स्ट्रेस दिस इज मोर द सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन है बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल गो टू वर्क वेरी अनविलिंगली. आई हैव टू गो टू वर्क.
0: वर्क इज अ स्ट्रेस. इतनी बार ये कहा जाता है कि माय वर्क एरिया इज अ स्ट्रेस एरिया. द मोस्ट स्ट्रेसिंग पार्ट ऑफ माय लाइफ इज माय वर्क.
1: तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हर एक के जीवन का लक्ष्य ये है, एनर्जी एक्सचेंज विद एवरीबॉडी आई मीट. अब मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए. अब उसमें कई लोग बोलते हैं मैं तो देता हूँ अच्छी वाली लेकिन औरों से मुझे नेगेटिव मिलता है. स्टॉप. माय रोल इज ओनली टू
0: वंडरफुल. यू नो वी कैन ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी वांट कि हमें मिलना चाहिए. वी कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस. ये उदाहरण एग्जांपल को अगर हम याद कर लें, आई एम लाइक अ रिवर.
1: क्योंकि आप फ्लो करते करते कितनी चीजों को पास ऑन करते जाएंगे और वो अपने आप नरिश होते
0: जाएंगे.
1: रुका हुआ पानी कैसे हो जाता है?
0: कई बार अपने साथ लोगों को, कईयों को ले चलते हैं. दे कैन बी पार्ट ऑफ योर फ्लो.
1: तो वो आपकी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन हर एक को नरिश करें ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और इसको अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारे जीवन बहुत सुंदर हो जाती है, क्योंकि हर एक को नरिश करते करते वो नरिशमेंट तो
0: हमसे होके.
1: आई फील ब्यूटीफुल.
0: एंड यू नो दैट रिवर इज हेल्दी रिवर व्हेन इट इज नरिशिंग एंड इट्स नॉट डाइंग, इट्स फ्लोइंग.
1: हीलिंग हो जाएगी उससे. कितनी हीलिंग. और थोड़ी देर के बाद साइलेंस में जब हम बैठते तो अपनी इस अंदर की आवाज को जरूर सुने. कई बार हमें कुछ कर्म करने से पहले ऐसे लगता है कि आई थिंक समथिंग इज टेलिंग मी दिस इज रॉन्ग, लेकिन मैं कर देती हूँ. क्योंकि अगर मैं उस आवाज़ को सुनती हूँ तो वो मुझे उस टेम्प्ररी चीज़ों से जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो कोई डिपेंडेंसी है, चाहे वो कोई अटैचमेंट है, चाहे वो कोई एडिक्शन है, वो मुझे उससे दूर लेकर जा रही है. मुझे अंदर पता होता है कि लेकिन उस आवाज़ को सुनना मतलब इस टेम्प्ररी जो हैप्पीनेस की जो हमने चीज़ें ढूंढी हुई हैं इनसे दूर जाना. तो मैं इसको आवाज़ को अनसुना कर देती हूँ और उस तरफ चले जाते हूँ. ये जो बार बार अपने अंदर की जो ये आवाज़ आती है, क्योंकि विजडम इज ऑल इनसाइड, तो ये जब अंदर की आवाज़ आती है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं तो ये भी एक दिन
0: बात करना बंद कर देते हैं.
1: तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि साइलेंस में बैठकर वो ही लाइब्रेरी वाला सीन वापस क्रिएट करके, एक्सटर्नल नॉइज को ख़त्म करके, जो भी अपने पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, जैसे हम दूसरों को पूछने जाते हैं वैसे अपने आप के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दो. तुरंत आंसर नहीं एक्सपेक्ट करो, बट दैट शुड बी इन साइलेंस. साइलेंस में जाके क्वेश्चन वहाँ छोड़ दो, आंसर विल बी देयर बिकॉज द आंसर इज ऑलरेडी हियर. तो इसको हम कहते हैं लिसनिंग इनसाइड. कीप लिसनिंग टू द ट्यूटर इनसाइड इन ट्यूशन. अब हमें समझना चाहिए कि मेरी आंतरिक जो अंदर का विवेक है उसने वो आंसर दिया है वो मुझे. That's good for me. Then I should follow that. So बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग, पास ऑन टू एवरीवन एज दे कम एंड लिसन इनसाइड.
2: बिल्कुल
1: सिंपल सिंपल थिंग्स. सुनने में इमिडिएटली लग रहा होगा नहीं सिंपल नहीं बहुत डिफिकल्ट, तो वे सिंपल सिंपल.
2: और हर बार की तरह
1: स्टार्ट डूइंग दैट,
2: हर बार की तरह वो एक्सपेरिमेंटेशन करके अपने अनुभव पे के आधार पर फिर हम इसको देखें कि कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं. बट यस, अपना अनुभव मुझे फिर यही कह रहा है कि ये बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्ट्रेस से हम जिंदगी को भरा हुआ है वो कहीं उड़ जाएगा. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सस्ता शिवारी. ओम शांत.
1: ओम शांत.
2: अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स है 9999344555, 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफर यूं ही चलता रहेगा. एक स्ट्रेस फ्री जिंदगी आपकी हो, इसी दुआ के साथ आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है, या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: 8 FM वर आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।

0: सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, जहां पर हम लोग जीवन विकास इस नाम से कार्यक्रम को शुरू करते हैं और ये करियर ऑप्शन भी बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग, तो जहां पर हम बच्चों के जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है या फिर कॉलेज में है, उन सभी के लिए एक मार्गदर्शन मिले, एक मोटिवेशन मिले, इसके लिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि किसी भी करियर को कैसे हम लोग उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, कैसे हम लोग कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इस विषय को समझने के लिए हम लोग अभी किसी ऐसे एक्सपर्ट से जो है बात करते हैं जिन्होंने अपना करियर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में किया है, उनसे बात करते हैं और उनकी यात्रा जो है बचपन की और फिर कैसे उन्होंने करियर को चूज किया, किस तरह से वो चीजें बनी और वर्तमान में वो चीजें कैसी हैं, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं ताकि आप करियर को अच्छे से फ्रेम कर सके। तो आइए आज के इस शो में हमारे साथ करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जीवन विकास के सुंदर प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं यशवंत, ये बांसवाड़ा से बिलोंग करते हैं और जर्नलिस्ट हैं वर्तमान में, तो उनसे बात करेंगे जर्नलिज्म के बारे में, लेकिन सबसे पहले उनका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं यशवंत जी?
2: हाँ, ओम शांति।
1: ओम शांति, कैसे हैं आप
2: जी? बढ़िया हूँ। आज के कार्यक्रम में मुझे आपने जो अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और मैं चाहूंगा थोड़ा अपना बचपन के बारे में, आपका जो बचपन है वो कहाँ बीता और किस तरह से आपकी पढ़ाई, एजुकेशन, शिक्षा, दीक्षा क्या हुई?
2: जी, बचपन से तो मेरा बांसवाड़ा में ही बचपन से, और मैं थोड़ा सा विद्या भारती जी, विद्या भारती संस्था है पोल इंडिया में जो आरएसएस से रिलेटेड है, उससे मैं जुड़ा हूँ। और फिर मैंने संघ की शाखा वगैरह वो भी मैंने चलाई है, और बचपन से ही मुझे पढ़ने का और विशेष वो था कि भाई मैं कुछ अच्छे लेख पढ़ूं, तो मैं लाइब्रेरी वगैरह भी जाते रहता था और अखबारों वगैरह को टटोलता रहता, उसमें से जो लेख आते हैं जैसे नरेंद्र कोहली है, जो ऐसे ऐसे जो भी थे, या विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित रहा मैं, और उनकी आध्यात्मिक, और उनको उन्होंने 40 वर्ष की उम्र में बहुत बड़े काम किया देश में, अपना नाम किया मात्र 40 वर्ष की उम्र में, तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि इतनी मतलब इतना दिमाग उनमें कैसे था, तो ये मेरी हमेशा खोज रहती थी, बड़े बड़े महापुरुषों के ऐसे क्या गुण थे, उनको आत्मसात करने के लिए मुझे बहुत ललक थी, तो मैं हमेशा ये ढूंढता रहता था, तो ये मेरा बचपन से ही था, उस कारण मैंने रुचि रही है।
1: आध्यात्मिक किताबें पढ़ी आपने?
2: जी जी।
1: अच्छा, जो स्कूल में आप पढ़ाई किया वो गवर्नमेंट था या प्राइवेट था?
2: नहीं, मैंने पूरा अध्ययन मैंने गवर्नमेंट स्कूल में ही किया।
1: अच्छा अच्छा अच्छा जी। और कॉलेज वगैरह आप फिर?
2: कॉलेज भी गोविंद गुरु कॉलेज है।
1: अच्छा
2: जी, तो उसमें भी मैंने ग्रेजुएशन किया।
1: अच्छा, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपके माता पिता क्या करते थे?
2: मेरे पिताजी तो व्यवसायी थे, अपना राशन का दुकान था। अच्छा। और माताजी गृहिणी थी, वो ज्यादा पढ़े हुए नहीं थे, और हमारा मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई में हमारा एक चाय का दुकान था वहाँ पे।
1: अच्छा अच्छा
2: जी। और उसके बाद वहां से छोड़ के आए, लगभग हमारे तीन पार्टनर थे हम पिताजी के, तो चार चार महीना तीनों चलाते थे, चार महीने में वो कमा के आते, फिर यहाँ पे आके फिर यहाँ व्यवसाय करते थे, ऐसा था। तो

0: हाँ तो हमारी आर्थिक स्थिति तो बहुत कम थी, कमजोर थी। मतलब पहले हम एक गांव में रहते थे, गांव से फिर यहाँ शहर में आ गए, बांसवाड़ा शहर में। फिर
1: अच्छा
0: यहाँ यहाँ पे आके हम दो भाई थे, बड़े भाई ने पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया तो उन्होंने बैंक में सर्विस बैंक मैनेजर बन गए वो।
1: अच्छा
0: और मेरे को दुकान के साथ मैं पढ़ाई भी करता रहा, ऐसा मैं उनका सहयोग करता था दुकान में भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा गांव के बारे में बताएंगे, जहाँ गांव से आप आए तो उस गांव
0: जी
1: की क्या विशेषता रही और वहाँ उस समय
0: बिल्कुल
1: क्या
0: बिल्कुल,
1: था।
0: बहुत अच्छा,
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: अच्छा पूछा आपने। मेरा गांव बहुत बढ़िया गांव है, मेरा गांव साबला है, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। बांसवाड़ा से उदयपुर जाते हैं, बीच में 60 किलोमीटर के पास, 60 किलोमीटर बांसवाड़ा से पड़ता है वो। और बहुत पवित्र स्थान है वो, मतलब वहां पे हमारे गांव के 5 किलोमीटर ही बैनेश्वर धाम है। तो बहुत बड़ा, मतलब यहाँ पे साल में एक बार बहुत बड़ा मेला लगता है और लाखों लोग यहाँ, जो जनजाति समाज है
1: अच्छा
0: यहाँ आदिवासी जी, बांसवाड़ा डूंगरपुर इलाका और प्रतापगढ़, ये जनजाति बहुल इलाका है, भील आदिवासी जो बहुत, और उनमें कृष्ण प्रति, भगवान के प्रति बहुत आस्था है, बहुत भले भले इंसान है ये, और भगवान के प्रति आस्था है। पूरी रात मेला चलता है यहाँ पे बैनेश्वर धाम, 5 किलोमीटर दूर है। और
1: अच्छा
0: मेरा गांव साबला में हरि मंदिर है, वहीं यहाँ के जो अभी पीठाधीश्वर है अच्युतानंद
1: हाँ
0: जी महाराज, वो वहीं विराजते हैं और उनके नजदीक ही मेरा मकान है, तो उनका भी सानिध्य रहता है। मेरे पूरा परिवार, मेरे काका वगैरह जितना भी परिवार थे और मेरे पिताजी वगैरह, बहुत उनका सानिध्य रहा है। और उनके पहले जो भी रहे हैं गुरु, उनका भी सबका आशीर्वाद हमारे परिवार पे रहा है जी। तो मेला भरता है, बहुत अच्छा मेला लगता है, यहाँ से मध्य प्रदेश गुजरात सभी मेले में वहाँ मेलार्थी आते हैं, और वहाँ पे दुकानें भी सस्ती है, बहुत पवित्र स्थान है, बहुत नाम है बनेश्वर धाम का जी। जी
1: अच्छा।
0: जी
1: तो साल में एक ही बार मेला भरता है या दो तीन बार होता
0: नहीं, माह में एक बार,
1: है? अच्छा
0: साल में एक
1: साल
0: बार,
1: साल में
0: साल में
1: एक
0: एक बार,
1: साल में एक बार मेला
0: साल में
1: भरता
0: एक बार। और पूरी रात पूनम जी, माघ माघ महीने की पूर्णिमा को,
1: है। अच्छा।
0: माघ माह की पूर्णिमा को, जो मतलब वहां पे कहते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण रास लीला करने आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो पूरी रात इसलिए मेला भरता है वहां पे। और चांदनी रहती है पूनम की चांदनी,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: वहाँ कृष्ण का बहुत बढ़िया मंदिर है, और वहाँ इसलिए वो, और फिर वहां पे त्रिवेणी संगम है ये, यानी
1: अच्छा।
0: कि माई सोम और जाखम, ये तीन नदियों का संगम है। और वहां पे त्रिवेणी संगम है, तो यहाँ की जो आप त्रिवेणी संगम में, मतलब यहाँ के जो लोग स्थानीय, तो गंगा ही मानते हैं इनको, कि हम वो अस्थिया विसर्जन भी यही करते हैं, हमने तो हरिद्वार में अस्थिया विसर्जन कैसे कर दिए, इस प्रकार मानते हैं इनको यहाँ पे।
1: अच्छा।
0: जी,
1: यशवंत जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने गांव के बारे में, और आपने गवर्नमेंट स्कूल से ही अपनी पढ़ाई पूरी की, कॉलेज भी गवर्नमेंट का ही था, और अपने पिताजी को आप हेल्प करते थे पढ़ाई के साथ साथ में, और बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। आपका जो बचपन है बड़ा ही प्यारा सा बीता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं और बात करेंगे कि अब बाद में कॉलेज के बाद आपने कैसे अपना करियर शुरू किया, इसके बारे में जानेंगे आपसे। आप सुनाइए रेडियो मधुबन 107.FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बातें हो रही हैं करियर ऑप्शन इस प्रोग्राम में। यशवंत जी हमारे साथ हैं, बांसवाड़ा से जुड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट हैं और हम लोग बात कर रहे थे उनके बचपन की, कुछ बातें हमें उन्होंने ताजा कराई हैं। अब मैं चाहूंगा यशवंत जी, आप अपना स्कूलिंग पूरा हो गया, कॉलेज पूरा हो गया, तो उसके बाद आप क्या सोच रहे थे, क्या बनना चाहते थे, या पिताजी का ही बिजनेस आप कंटिन्यू करना चाहते थे, क्या सिचुएशन रहा कॉलेज के बाद, या कॉलेज के कुछ ऐसे यादगार लम्हों को जरूर बताइए ताकि हमें आपकी कॉलेज के लाइफ के बारे में भी पता चल सके।
1: कॉलेज में, कॉलेज तो जाते ही थे हम, साथ साथ मेरी क्या थी कि लाइब्रेरी में जाने का बहुत शौक था मुझे।
0: अच्छा,
1: तो हाँ, तो कॉलेज की भी लाइब्रेरी में किताबें भी टटोलता रहता था। और बांसवाड़ा के जिला का या पुस्तकालय है यहाँ पे, सूचना केंद्र, पीआरओ ऑफिस, वहाँ भी दो घंटा रोज जाता रहता था। तो पीआरओ में जो पीआरओ साहब थे वहाँ पे, दीपक जी आचार्य नाम है उनका, अभी निदेशक है वो, जैसलमेर में बैठते हैं वो, तो वो हाँ उनका परिचय भी था। और रोज मैं जाता रहता था तो अखबार वगैरह पढ़ता था, पत्र पत्रिका है, तो फिर निकलते वक्त उनसे मिलता हुआ ही निकलता था हमेशा। तो मुझे एक बार बोला उन्होंने कि अरे यार यशवंत जी, आपको अखबार वगैरह बहुत रुचि है और मेरे पास एक अखबार का काम है, एक अखबार है, तो आप क्या कुछ उसको हैंडल करना होगी क्या, आपको संपादक बना देता हूँ बांसवाड़ा का। मैंने कहा हाँ हाँ। तो भाई जी मेरे को क्या एक्चुअली तो क्रिमिनल जो रहते हैं उसमें थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने बोला कि मैं ये जो क्रिमिनल है ये वगैरह उनकी खबरें मैं नहीं कर सकता हूँ, धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं बांसवाड़ा में उनको तो मैं बिल्कुल अच्छी तरह से कवरेज करूंगा और बहुत अच्छा भी मैं लिख सकता हूँ और भेज भी सकता हूँ, उसके अलावा भी कुछ और कर सकता हूँ, पर क्रिमिनल, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप जो आपको रुचि वो करो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरे को बांसवाड़ा संपादक बना दिया उस अखबार का और मैं यहाँ से खबरें भेजता था। और फिर मैंने एक संगति पत्रिका है पांचजन्य, तो पांचजन्य में भी मैंने अपना लेख, यहाँ का मानगढ़ धाम है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ पे जलियांवाला बाग से भी बड़ा यहाँ पे नरसंहार हुआ है, तो मेरे को उसमें उसका मैंने डिटेल निकाला और पूरा मैंने लेख भेजा। तो वहां से मेरा फोन आया पांचजन्य से कि आपका लेख अच्छा लगा और हम उसको प्रकाशित कर रहे हैं, तो मेरा वहां पे लेख भी प्रकाशित हुआ और बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि पूरे भारत में ये बहुत बड़ी मात्रा में समाचार पत्रिका ये निकलती है।
0: तो पत्रकारिता में आप जब जुड़े तो क्या उसके लिए कुछ आपने, किस तरह से आपका अपॉइंटमेंट हुआ, क्या पेमेंट वगैरह कुछ देते थे या फिर ऐसा कुछ नहीं था?
1: नहीं, पत्रकारिता में तो मेरे स्वयं के मैंने पैसों से, पहले तो मैंने कैमरा खरीदा भाई जी, और मैंने ये नहीं देखा कि उनको पूछा कि मेरे को कितना मिलेगा क्या मिलेगा, कुछ नहीं, बस यही था कि नहीं कि मैं बांसवाड़ा से अच्छी अच्छी आध्यात्मिक जो अपनी मतलब भागवत कथा है ये उनका प्रचार, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में यही कहा है कि आप गीता का जितना प्रचार करोगे तो आप मुझसे जुड़े हुए, मतलब जितना धर्म का प्रचार करता है व्यक्ति तो वो एक तरह से अच्छा ही काम है ना। तो मेरा यही रुचि रहती है कि जितना जितना लोगों से हुआ, फिर मैंने स्वयं की भी खुद की मैंने पत्रिका अखबार शुरू किया भाई जी। अच्छा। हाँ जी, तो मैं राम सिंह संप्रदाय से भी जुड़ा हुआ हूँ, अपना बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ये है राम सिंह संप्रदाय, तो यहाँ के जो महाराज जी है वो हमारे गुरु है, तो उनका सानिध्य मिला मुझे और मैंने तो मैंने एक दरिया दर्पण करके खुद मेरा एक अखबार निकाला मैंने ये कर, महाराज जी जो भी दरियाओं जो संप्रदाय है उनकी जो भी जितने भी जो भी आश्रम है उनकी जो गतिविधियां होती है उनको मैं उसमें प्रकाशित करता हूँ जी। और मेरा जो अखबार का विमोचन है वो मुलक पीठाधीश्वर है, राजेंद्र जी जी है, जो मेरे को मेरता, जो मेरता भूमि है मीरा की जन्मस्थली, वहां पर मेरे को वहां बुलाया और उन्होंने मंच पे मेरा अखबार का विमोचन किया फर्स्ट पहली बार। जी जी।
0: तो फिर और मैं पत्रकारिता के साथ आप एज ए आपकी रुचि से जुड़े, आप रुचि से खर्चा कर रहे हैं, तो फिर आपको कैसे, आपका आजीविका कैसे चल रहा है? आजीविका कैसे चलता है फिर?
1: कैसे चलता है मतलब
0: आपका जीवन यापन कैसे करते हैं आप?
1: जीवन यापन मतलब अर्निंग सोर्स मेरा।
0: हाँ हाँ
1: हाँ। अर्निंग सोर्स तो क्या है कि यहाँ मैं एक और सेवा में ही लगा हुआ हूँ, तो मैं एक सेवा कार्य देखता हूँ। यहाँ पे उत्तम स्वामी जी महाराज हैं, महामंडलेश्वर है, तो उनकी गांव में और अकाउंट्स में मैं रहा। मैं मेरा सब्जेक्ट अकाउंट रहा है, तो जीवन में अकाउंटेंट रहा। विद्या भारती में भी मैं अकाउंट पद पे काम करता था, उसको तो छोड़ दिया मैंने। उसके बाद मेरे को उत्तम स्वामी सेवा संस्थान है यहाँ पे, उत्तम स्वामी जी की, उनकी गांव में इंटरनल स्कूलें चलती है।
0: अच्छा,
1: जहाँ गवर्नमेंट स्कूलें भी नहीं वहाँ पे, वहाँ स्कूलें चलती है उनकी।
0: अच्छा,
1: तो जी जी, तो जी, तो वहाँ पे मेरे को उनका अकाउंट मतलब उनको पेमेंट देना वगैरह और उनको मेंटेन करने का, तो वो सब मैं देखता हूँ। और जी, तो ये वहाँ से और उसके साथ जो वहाँ की व्यवस्था देखते हैं अकाउंट वहाँ पे स्वामी जी की, तो एक पर्सन वो उनकी क्या रियल इस्टेट का काम है पूरा, प्लॉटिंग वगैरह का, तो वो उन्होंने मेरे को साथ में रखा है कि भाई कभी कोई जगह में लॉन्च करता हूँ तो वहाँ पे किसी को लाके बताना वगैरह नहीं है, तो वहाँ से मेरे को थोड़ा
0: साइड बिजनेस है। अच्छा,
1: जी जी, वो साइड बिजनेस है।
0: अच्छा,
1: बाकी पत्रकारिता के बारे में आपको भी बताऊँ तो पत्रकारिता में ओनली अगर ईमानदारी से व्यवस्था अगर करे तो बहुत बढ़िया। बाकी पत्रकारिता में जैसे खबरें छपती है और जो मतलब पत्रकारिता को व्यवसाय बना दिया है पत्रकारों ने, बहुत से पत्रकारों से मेरी इसके बारे में बहुत वो है, होती है कि भाई कोई खबरें आप दबा देते हैं, कभी कोई खबरों को नहीं छापते हैं, तो ये गलत है। मतलब कहने का मतलब ईमानदारी से पत्रकारिता करो, जो रियलिटी है उसको लोगों के सामने ले जाना, ये तो अपना धर्म बनता है। ये तो पत्रकारिता में कहते हैं कि नारद मुनि जी थे, उनको आराध्य नारद, जो नारद जी है उनका हम जयंती भी मनाते हैं पत्रकार, और पत्रकारों को सम्मानित भी करते हैं उस अवसर पे। तो जो वास्तविक पत्रकार है जो डरते नहीं है, निष्पक्ष भाव से बिना राजनीति के जो करते हैं उनको सम्मानित भी करते हैं कि नहीं इन लोगों ने। जी जी, तो मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से भी मेरा निवेदन,
0: अभी जो है समय ऐसा चल रहा है जहाँ पर हमको इनकम सोर्स, जैसे आपका खुद का जब आप अकाउंटिंग का काम करते हैं और हॉबी से आप पत्रकारिता को कर रहे हैं, तो आपकी बात अलग है, लेकिन जिनका कोई दूसरा कार्य नहीं है और पत्रकारिता ही इनका फुल फ्लेज हो, तो वो कैसे क्या सर्वाइव करेंगे?
1: नहीं, तो उनको तो वेतन मिलता ही है।
0: अच्छा अच्छा,
1: वहाँ वेतन के अलावा वेतन मिलता ही है उनको, पर वहाँ वेतन मिलता है वो, उसके अलावा अगर वो सोचे कि नहीं मैं वेतन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यानी कि मतलब कुछ किसको किसकी खबरें छापना किसकी नहीं छापना और वहां से कुछ अर्निंग कर लेना, मतलब कैसे आपको बताऊं कि।
0: अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। हाँ हाँ,
1: बस तो ये जो है
0: यही होना चाहिए, पत्रकार
1: यही होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल पारदर्शिता
0: सबकी कवरेज जी जी चाहिए आपका।
1: हाँ बिल्कुल,
0: और एक अच्छे पत्रकार को जो है अपना जो कंपनी से
1: या
0: पत्रकार जो संस्थान है उससे जो पेमेंट मिलता है उससे उनको अपना जीवन यापन करना चाहिए, ना कि अलग अलग खबरें जो बिना मतलब के खबरें छाप के अपना इनकम जनरेट करना, ये सब अच्छा नहीं है, ये आप बता रहे। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और पत्रकारिता का जो रुचि कैसे बढ़ा आपको? एक्चुअली में क्या लाइब्रेरी से आप पुस्तक पढ़ रहे थे या फिर पेपर्स पढ़ते थे, न्यूज के प्रति आकर्षण था इसलिए आप इसमें जुड़े, शौक से या फिर कुछ और भी था?
1: वास्तविक तो यही कि मैं जो लाइब्रेरी वगैरह जाता था वहां पे पढ़ता था तो, और फिर एक पत्रकार का दबदबा अलग अलग रहता है, वो कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, किसी से मिल सकता है, एक और उनसे बातचीत कर सकता है, तो एक एक जरिया रहता है कि कहीं भी जाके अपन एक बार जाके अपनी बात रख सकते हैं, उसको गलत हुआ तो गलत तो बोल भी सकते हैं, तो इस कारण मेरे को रुचि थोड़ी हुई इसमें।
0: अच्छा अच्छा जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया, और आपकी पत्रकारिता में जो है निष्पक्ष स्वभाव है और सत्य के प्रति प्रेम है आपका, और निश्चित तौर पे आप दूसरी पहलू भी आप देख रहे हैं कि पत्रकार होने से समाज में कहीं ना कहीं हम अहम भूमिका निभा सकते हैं, और जहां पर गलत हो रहा है उस बात को भी हम उठा सकते हैं और उस बात को लोगों के बीच में पत्रकारिता के माध्यम से रख सकते हैं, इसीलिए आपने इसको एज ए हॉबी इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ आप अपना प्रोफेशन के तौर पे वेतन के रूप में आप अकाउंटिंग का काम जो है स्कूलों का करते रहे हैं, और साथ में आप एज ए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप एज ए सेल्स का काम भी देखते रहे हैं, जहां जैसे जरूरत हो उन चीजों को भी आप करते रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। चलिए, हमारे विद्यार्थी मित्रों को शायद अभी पता चल गया होगा कि कैसे हमें पत्रकारिता के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप फुल फ्लेज पत्रकारिता ही करना चाहते हैं तो आप जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या छोटे कोर्सेस भी होते हैं, कई कई एनजीओस भी इस तरह के जो है 6 महीना या 3 महीने के कोर्सेस करा के आपको पत्रकारिता का जो है सर्टिफाइड कोर्स भी होता है, लेकिन आप डायरेक्टली आफ्टर 12th जो है जर्नलिज्म का 3 साल या 4 साल का जो डिग्री कोर्स होता है उसको करके भी आप जो है इस फील्ड में अच्छा खासा अपना एक चैनल बना सकते हैं, न्यूज पेपर चला सकते हैं, इसमें भी अच्छी कमाई है, और साथ ही साथ आप जो है समाज का जो है एक दायित्व जिम्मेवारी आपको मिलता है, तो इस फील्ड में आप स्काई इज द लिमिट है, बस यही है। लेकिन जैसे यशवंत जी जो बता रहे हैं उनकी अपनी एक अलग सोच है और अपनी एक भावना है, वो भी अपनी जगह पे सही है, और आप भी अपनी जगह पे जर्नलिज्म करने के बाद, ऐसा नहीं कि भाई अभी न्यूज़पेपर में ही काम करना है, लेकिन आज इसका दायरा बढ़ गया है, आप बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, न्यूज चैनल 24 चलता रहता है, 24/7 कंटिन्यू कवरेज जो है चलती रहती है, तो एज ए न्यूज एंकर आप बन सकते हैं, या न्यूज रीडर आप बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, या खुद का अपना एक चैनल बनाकर आप जो है उसको रन कर सकते हैं, तो उससे भी काफी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, या आप अपना खुद का पत्रिका भी निकाल सकते हैं, या मैगजीन आप निकाल सकते हैं, बुक की तो बहुत सारी लिस्ट है, आप एक बार जर्नलिज्म का मास्टर डिग्री आपके पास आ जाता है तो फिर आप कंपनीज में काम भी कर सकते हैं, या फिर किसी एनजीओस में काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी मीडिया के माध्यम से वो भी अपना प्रचार माध्यम चाहते हैं, तो वो सारी चीजें जुड़ी रहती हैं, और कोई बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी है उनको भी एक पीआरओ जर्नलिज्म वाला चाहिए रहता है, ताकि वो कंपनी के पहलुओं को लोगों के बीच में अच्छी तरह से रखे, और कहीं कुछ डिस्प्यूट हो तो जर्नलिज्म के क्षेत्र में रहने वाले उसको ठीक ढंग से लोगों के बीच में रख सकते हैं, अपना बात रख सकते हैं, तो इसीलिए भी वो कंपनी वाले भी आपको जो है बुलाते हैं, तो वहां पर भी काम कर सकते हैं, तो स्काई इज द लिमिट, यहाँ पर आपको बहुत सारे रास्ते हैं, आप किस तरह से जुड़ना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए एक और ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर हम यशवंत जी से वापस जुड़ेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

वक्त गुजर रहा है तेजी से, वक्त गुजर रहा है तेजी से, अब वक्त नहीं है खोने को, जागो और जगाओ सभी को।

0: नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है जीवन विकास करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में, जहां पर हम लोग आज पत्रकारिता के बारे में बातें कर रहे हैं। और यशवंत जी जो है जर्नलिस्ट होने के साथ साथ जो है अपनी रुचि से पत्रकारिता में अपना खुद का पेपर भी चलाते हैं और दूसरे पेपरों में अपना धार्मिक जो चीजें हैं, धार्मिक स्थल है या धार्मिक जो बातें हैं उसका उस चीज उन चीजों का प्रचार प्रसार करने में अपनी रुचि रखते हैं। तो उन चीजों के लिए उन्होंने काम भी किया है और उसके लिए उन्हें सम्मान भी प्राप्त है। तो आइए फिर से मैं जोड़ना चाहूंगा यशवंत जी से। तो पत्रकारिता में क्या क्या हमारे जो है अचीवमेंट्स हैं या क्या क्या हम अचीव कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमारे विद्यार्थी मित्रों को बताइए, ताकि वो इस फील्ड में आने के लिए अपनी रुचि बढ़ा सकें। जी यशवंत जी।
1: जी जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। पत्रकारिता में जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और जैसे कि आप जो आप देखते हैं न्यूज चैनल, बड़े बड़े न्यूज चैनल, सुधीर चौधरी डीएनए आपने देखा होगा आज तक पर, सुधीर चौधरी आते हैं डीएनए 9 बजे आते हैं रात को, बहुत अच्छा डीएनए उसमें करते हैं। सभी को उनको देखना चाहिए किस प्रकार उन्होंने किस विषय को समेट कर किस प्रकार लोगों को प्रस्तुत करते हैं रियलिटी में। ऐसे ही पत्रकारिता से आप बहुत से एनजीओ है संस्था उस पर जाके मंचों पे बोलना, एंकरिंग, उससे अपने को एंकरिंग भी अच्छी हो जाती है। मतलब कोई एंकरिंग सब लोग तो जैसे सोनू शर्मा है, विवेक बिंद्रा है, आज उनको सुनने के लिए बहुत लोग ललचाते रहते हैं। मतलब उनके टिकट नहीं मिलती है, उनके कार्यक्रमों में जाने के लिए टिकट नहीं मिलती है। ऐसे ही अपने कन्या कुमारी की भी दीदी है, शिवानी दीदी, ऐसे ऐसे लोगों को सुनने के लिए, और बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको विषय पे कमांड रहता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर पत्रकारिता से अगर बहुत सी चीजें अगर अपन प्राप्त कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा करियर, बहुत बड़ा करियर।
0: जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और इसमें चैलेंजेस क्या है यशवंत जी, क्योंकि एक तो अचीवमेंट ये है कि आपका जो कार्ड है वो आपको पहचान देता है, और प्लस आप कहीं भी किसी भी जगह पे जा सकते हैं, ये एक है अचीवमेंट। लेकिन इसके साथ में चैलेंजेस क्या है वो थोड़ा सा बताएं।
1: चैलेंजेस तो निर्भयता, सबसे बड़ा है निर्भयता। आप निर्भय होके काम करें, अगर आपने सोच लिया कि नहीं ये मैं छापूंगा, और ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके बारे में अगर मैंने इसके बारे में ये कर दिया, कल उठा के उस मेरे पे हमला हो जाए, मेरे पे FIR हो जाए, मेरे को कहीं जेल हो जाए, अगर ये सोच के करोगे तो फिर वो सक्सेस नहीं हो पाता। निर्भयता, अगर अपनी सच्ची बात है उस पर अड़ी होंगे, आप पत्रकारिता करते हैं या कोई भी बात हो जीवन में कोई भी हो, अगर निर्भयता रखेंगे, भय नहीं रखेंगे, बिना भेदभाव के कुछ भी करेंगे, तो आप जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि पत्रकारिता में स्काई इज द लिमिट, माना बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आप नाम, शान और पैसे सब कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको निर्भय होना बहुत जरूरी है। कहीं भी आप जो है सच्चाई बताने के लिए आप अगर आगे रहते हैं और उसके लिए आप थोड़ा सा धाड़स करते हो, थोड़ा सा डेयरिंग करते हो, हिम्मत करते हो, तो निश्चित तौर पे आपके लिए ये जो है करियर बहुत बढ़िया है। और युवा साथी, अगर इसमें आप जो है सिर्फ टीवी में जो क्लाइमेक्स है या जो चकाचौंध है फेम और देखकर अगर आप आना चाहते हैं तो वो एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू यहाँ पर आपके लिए करियर को बहुत अच्छी तरह से अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको निर्भय होना बहुत जरूरी है, जो यशवंत जी ने बताया। अगर आप निर्भय हैं तो निश्चित तौर पे फिर आप यहाँ पर पत्रकारिता में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जर्नलिज्म में बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पर आगे बढ़ने का आपको चांसेस काफी है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं यशवंत जी से चाहूंगा कि हाल ही में जो चीजें देख रहे हैं, क्योंकि 24/7 न्यूज चल रहे हैं तो सच्चाई क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है, कई बार फेक न्यूज भी बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
1: जो विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अभी सप्ताह भर से मैं जो मैं देख रहा हूँ और मीडिया चैनल भी बहुत कह रहे हैं कि आज के जो युवा वर्ग है, जैसे आज 12 वर्ष से 18 वर्ष 20 वर्ष के, उनको सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत फेक चीजें अभी आती है, बहुत फेक चीज आती है। तो जो वास्तविक है उसको एक बार तो पकड़ो, आप उसको फॉरवर्ड मत करो, एक बार देखो कि सच्चाई क्या है।
0: बिल्कुल।
1: और क्या ये अपने भारत देश में अपने जो अपने जन्म लिया है, अपना जन्म सिद्ध अधिकार है अपना, कि भाई गलत चीजों को प्रकाशित क्यों करना, उनका विरोध भी करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और उस फेक को आप अगर विरोध करके अपन लिख सकते कि नहीं ये फेक है, उसमें फैक्ट नहीं है, तो बहुत बड़ा संदेश जाता है ये। और मैं कहता हूँ अभी फिलहाल जो भी युवा है या बच्चे हैं आजकल वीडियो गेम्स बहुत देखते हैं, और वीडियो गेमों में छुट्टियों में या जैसे भी समय मिला तुरंत घर वाले मोबाइल दे देते हैं, और वो मोबाइल पे लगे रहते हैं और वीडियो गेम्स पे ऐसा उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, जैसे कि शूट करना शूट करना शूट शूट करते करते करते वो कोई कोई अचीव कर लेते हैं, तो उनके दिमाग में दिन भर ये शूटिंग, जैसे आपने विदेशों में देखा हो बच्चे स्कूलों में निकाल के कहीं बंदूक हाथ में आ गई तो वही शुरुआत कर देते हैं, उनको मालूम नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। ऐसे ही अभी एक जो हुआ कि किसी धर्म के प्रति ये धर्म हमारा अच्छा है ये धर्म खराब है, तो ये विषय था अभी बहुत चर्चा में, और उस बच्चों को धर्मांतरण हो गया, वो न जाने मस्जिदों में जाने लग गया और धर्मांतरण हो गया, और पेरेंट्स को मालूम ही नहीं कि दिन में 4-5 बार कहाँ जाता है और कैसे कहाँ क्या करता है वगैरह। तो ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय गिरोह था, और उन्होंने वीडियो के माध्यम से बच्चों को ब्रेन वॉश कर दिया।
0: अच्छा।
1: तो यहाँ तक कि जब पहले बहुत सी, हालांकि अपने कानून ऐसा बना हुआ है कि उनको बहुत सौ को बैंड भी किया है, जैसे पहले एक पबजी करके गेम चलता था इस वीडियो गेम में, तो बच्चों को बहुत रुचि थी उसमें, तो रुचि जगती है। आजकल क्या हो गया कि वीडियो गेम के कारण बच्चों में रुचि जगती है, दिन भर वो सोच भी यही, बच्चे खाना तक छोड़ देते हैं, खाने भी बैठे रहते हैं, लोग जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, ये स्थिति हो गई है, बहुत मतलब दुखदायी स्थिति है ये।
0: तो
1: जी तो मैंने ये किया कि
0: हमारे हैंड में हाथ में आ गया, तो उसका जो है अच्छे भी और बुरे भी परिणाम आ रहे हैं, दोनों चीजें
1: आ रहे
0: हैं, पड़ रहा है। और जो बच्चों पे जो ज्यादातर इस तरह की चीजें हो रही हैं,
1: कहीं पेरेंट्स को सतर्क रहना चाहिए,
0: लाइफ स्पॉइल हो रहा है, इसके वजह से हमें सतर्क रहना है, और खास करके माता पिता को जो है बच्चों पे पूरा ध्यान देना है। और जब स्कूल जाने वाला बच्चा है तो उसका जो है आने जाने और वो क्या करता है वो सब चीजों पे आपको निगरानी रखनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज
1: अपने
0: बच्चों को खो देंगे। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। चलिए यशवंत जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके, और आपने अपना जर्नलिज्म के बारे में बताया, अपने बारे में बताया, और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक जो है मैसेज क्या देना चाहेंगे युवाओं के लिए जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए।
1: बहुत बढ़िया, हम सब युवाओं को ये कहता हूँ कि आप देश का भविष्य हो, आप भारत तो आपके ऊपर टिका हुआ है, जैसे अपने कहते हैं ना कि एक कदम आप बढ़ाओगे तो सभी एक एक कदम बढ़ाएगा तो देश कहाँ से कहाँ हो जाएगा। और अपना संकल्प क्या है, भारत को विश्व गुरु बनाना, यानी कि भारत पहले विश्व गुरु था, अब उसको पुनर्स्थापित करना है। तो मैं कहूंगा आज के युवा में जितना भी टैलेंट है उसको करते हुए भारत को एक बार दुनिया को ये बताना है कि भारत विश्व गुरु था और है और रहेगा। तो मैं सोचता हूँ कि आज के युवा बहुत इसको प्रयत्न कर सकते हैं, और अपने देश के प्रति अपने को गर्व होना चाहिए कि अपना देश सनातन जो था हमारा संस्कृति, जो उसके ऊपर अपने को गर्व होना चाहिए, अपना ऋषि मुनि परंपरा थी जो हमारा यहाँ इस भारत भूमि पे देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो मैं आज के युवा को यही कहूंगा कि अपने भारत के प्रति अपने गर्व होना चाहिए, तो आज का यही संदेश है मेरा।
0: यशवंत जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया, और खास करके युवाओं को आपने संबोधन किया, गर्व होना चाहिए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, फिर से एक्चुअली में भारत विश्व गुरु था और फिर से उसे पुनर्स्थापना करने की बात आपने कही है। तो ये सब चीजें हो सकता है आप अपने करियर राइट वे में चूज करें, आप अपने करियर के प्रति जो है पूरे निष्ठा के साथ अपने करियर को बनाइए, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, जो फील्ड आपको अच्छा लगता है, उस फील्ड के लिए आप पूरे आत्मसात आत्मिक रूप से तैयार रहें, पूरी तरह से उसकी जानकारी हासिल करे और उसके ऊपर जो है निष्ठा से काम करे, तो आप अपना करियर पहले बनाए जिससे आपका जीवन यापन अच्छी तरह से चल सके, फिर आप अपने परिवार के बारे में सोचिए और फिर आप अपने देश के बारे में सोचिए। ये बहुत ही अच्छा संदेश यशवंत जी आपने दिया और बहुत बहुत साधुवाद आपको कि हमारे साथ जुड़कर अपना अनुभव साझा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर, कुछ नए करियर के बारे में बात करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणेशा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, संते रहो, नमस्कार, राते रहो।

0: अहो ऐकलत का हो
1: पुणेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो खुश रहो खुशियां बांटो
2: रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियां बांटो। नमस्कार रेडियो श्रोतागण, आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो पुनेरी आवाज पर प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयामों से रूबरू कराएगा। ज्ञान चिंतन
3: नमस्कार, मैं हूं विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। आज मैं आत्मसम्मान पर अपने चिंतन की धारा आपसे शेयर करूंगा। आत्मसम्मान एक ऐसा गुण है जो हर व्यक्ति के व्यक्तित्व और जीवन को निखारता है। यह न केवल हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करता है बल्कि यह हमें अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आत्मसम्मान का अर्थ है स्वयं के प्रति आदर और विश्वास रखना। यह न केवल दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में परिलक्षित होता है बल्कि यह हमारे विचारों और निर्णयों में भी झलकता है। आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को पहचानें। हमें यह समझना चाहिए कि हम पूर्ण नहीं हैं, परंतु हमारा आत्म मूल्य हमारी उपलब्धियों प्रयासों और सकारात्मक दृष्टिकोण से निर्धारित होता है। हमें अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए और अपने मूल्यों को सहेज कर रखना चाहिए। आज के समय में जहां समाज में प्रतिस्पर्धा और तुलना का माहौल है, आत्मसम्मान को बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। लेकिन यदि हम अपने आप पर विश्वास रखें और अपने अंदर की ताकत को पहचानें, तो हम किसी भी परिस्थिति में आत्मसम्मान के साथ खड़े रह सकते हैं। संक्षेप में, आत्मसम्मान हमारे जीवन का आधार है। यह हमें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सशक्त बनाता है। आत्मसम्मान के साथ जीने से हमें मानसिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। हमें चाहिए कि हम न केवल अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखें बल्कि दूसरों के आत्मसम्मान का भी सम्मान करें। यही सच्चे मानवीय मूल्यों का परिचायक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। धन्यवाद।
2: आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज पर। खुश रहो खुशियां बांटो।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
4: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां।

0: ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM, आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.
1: नमस्कार. वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन.
2: थैंक यू.
1: बीइंग डिवाइन की एक बड़ी अच्छी पॉइंट लगी लास्ट टाइम मुझे कि किस तरह हम भी खुश रहें और अगले को कैसे महसूस कराएं, उसको भी खुशी दें. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो छोटा बड़ा, ही इज माई ड्राइवर, ही इज माई कुक, ये हमारा बॉस है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे से उम्र में बड़ा है, ये उम्र से छोटा है, ये सारी बातें इतने जन्मों जन्म से यहाँ भरी हुई है मेरे अंदर. वो थोड़ा कहीं ना कहीं वो आ जाता है.
2: वो आ जाता है क्योंकि बहुत समय से वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका है. वो सच भी है कि कोई हमसे बड़ा है, कोई हमसे छोटा है, सच है. कोई हमसे उम्र में बड़ा है, छोटा है, वो भी सच है. कोई औहदे में बड़ा है, छोटा है, कोई रिश्ते में बड़ा है, छोटा है, वो सच है. इट्स नॉट दैट इट्स नॉट ट्रू, इट्स ट्रू. बट व्हेन दैट बिकम्स माय कॉन्शियसनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन दैट बिकम्स माय आइडेंटिटी, देन अ लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज.
1: दैट्स अ लवली पॉइंट. मतलब व्हेन दैट बिकम्स माय आइडेंटिटी. मतलब एज एन एक्टर अगर मैं कोई डाकू का रोल कर रहा हूँ और घर पे आके भी डाकू बनता रहूँ, तेरी आइडेंटिटी ही मैं तो डाकू हूँ जी, डाकू हूँ जी. आई मीन सो ब्यूटिफुल
2: बिकम्स माय आइडेंटिटी ना. आप मालिक हैं, एक आपके यहाँ कोई ड्राइवर है. दिस इज अ फैक्ट, दिस इज द ट्रूथ. नोबडी कैन डिनाई दैट दिस इज द ट्रूथ. लेकिन जब आप उसके बारे में सोचते हैं या उसके साथ व्यवहार में आते हैं, अगर ये रोल्स जो हम प्ले कर रहे हैं, ये हमारी कॉन्शियसनेस, ये हमारी आइडेंटिटी बन जाए, तो वो हमारी सोच, बोल और व्यवहार पे फर्क डाल देगी.
1: सही बात.
2: एक होता है कि हम रोल प्ले कर रहे हैं कि ये ड्राइवर का रोल प्ले कर रहा है, मैं मालिक का रोल प्ले कर रहा हूं. फिर आप कहीं जाएंगे, कोई और आपसे पोजिशन में बड़ा होगा, आप किसी से छोटे होंगे, वो भी हो सकता है. तो हर जगह हम अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं. लेकिन जब हमारा रोल हमारी आइडेंटिटी या कॉन्शियसनेस बन जाती है, तो हमारी सोच और व्यवहार में बहुत फर्क आ जाता है. एंड दैट्स व्हाई दैट ट्रू आइडेंटिटी द कॉन्शियसनेस में रहे कि हु एम आई, बहुत सारी चेन पे उसका फर्क पड़ जाएगा. अगर हम सारा दिन में अपने इस इनर प्रोसेस को देखें, तब हमें समझ में आएगा कि ट्रू आइडेंटिटी पता होना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. एवरी थॉट वी क्रिएट, सारा दिन में अब देखो, जैसे ही आप एक थॉट क्रिएट करते हैं, जस्ट क्रिएट एनी थॉट जस्ट नाउ, जैसे ही आप एक थॉट क्रिएट करेंगे, इमीडिएटली जो सेकेंड चीज फॉलो होगी, व्हाट विल दैट बी.
1: जैसे अगर मैं बोलूं यहां बहुत गर्मी है,
2: हाँ ठीक है, तो दिस इज अ थॉट. तो जैसे ही एक थॉट क्रिएट की, सेकेंड चीज क्या फॉलो होगी?
1: व्यवहार में पानी दो, कहीं से पंखा लाओ,
2: व्यवहार में आएगा. लेकिन बीच में एक स्टेज मिस हुई है.
1: क्या?
2: पहले एक थॉट क्रिएट होती है, जैसी थॉट क्रिएट होती है वैसा आप फील करते हैं.
1: ओके.
2: सपोज आप किसी से मिलते हैं, आप एक थॉट क्रिएट करते हैं, वंडरफुल पर्सन. जैसे ही थॉट क्रिएट की, वंडरफुल पर्सन, You feel nice meeting that person.
1: उल्टा नहीं होता
2: क्या?
1: पहले मैंने फील किया कि गर्मी है या वंडरफुल है.
2: इसी सीन में अलग अलग लोग अलग अलग थॉट क्रिएट करेंगे. किसी और को यहीं पे ठंडक लग रही होती है, डिपेंडिंग ऑन रेफरेंस टू वॉट दे आर यूज टू.
1: और वो वंडरफुल पर्सन नॉट वंडरफुल लगे किसी को.
2: किसी को, यस, एब्सोल्युटली. इट विल फर्स्ट, द माइंड विल फर्स्ट क्रिएट अ थॉट. आपके सामने कोई खाने की चीज आई, आप एक थॉट क्रिएट करते हैं पहले उसके बारे में, फिर अच्छा फील होता है. वाह, आज आइसक्रीम है, यू फील नाइस.
1: पुराना टेस्ट याद आता है फिर.
2: हाँ, वो रीजन हम देखेंगे क्यों वो हो रहा है, लेकिन थॉट जो क्रिएट करेंगे वो फील होगा फिर. इसीलिए कई बार हम अपने आप को थॉट लेवल पे नहीं चेक कर पाते, हम फीलिंग लेवल पर चेक करते हैं, हाउ एम आई फीलिंग टुडे, सो समटाइम्स वी से आई एम फीलिंग वेरी लो टुडे, है ना। जैसे हमें ये लगे आई एम फीलिंग वेरी लो टुडे, आई नीड टू ओनली पॉज एंड थिंक, क्या क्या सोच रहे थे आज सारा दिन, जो सोच रहे थे वो फीलिंग में ट्रांसलेट हो चुका है।
1: ओके,
2: आई एम फीलिंग वेरी नाइस टुडे, क्या सोच रहे थे आज। द सेकेंड स्टेज है फीलिंग, दिस इज आवर इनर वर्क। मैंने देखा ना, इनर वर्क पे हमें अब अटेंशन चाहिए ताकि सब कुछ हमारा जो परफॉर्मेंस है वो परफेक्ट चले। जैसी थॉट वैसी फीलिंग। अब जैसी फीलिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हमारा एटीट्यूड बन जाता है। किसी के प्रति हमने बार बार वही थॉट क्रिएट की, वैसा ही फील किया उनके बारे में, तो हमारा एक जनरल एटीट्यूड उनके बारे में क्या हो जाएगा, ये है ही ऐसे, या ये है ही ऐसे, बहुत अच्छे, दिस इज माई एटीट्यूड नाउ। सो थॉट फीलिंग एटीट्यूड, ये इनर प्रोसेस है, ये अंदर हो रहा है, बाहर नहीं दिख रहा किसी को। डिपेंडिंग ऑन ये तीन स्टेजेस जो अंदर हुई, थॉट फीलिंग एटीट्यूड, फिर आप व्यवहार में आएंगे।
1: थॉट फीलिंग एटीट्यूड
2: अंदर बन गया, ये बाहर नहीं दिखता, इसको हम कहेंगे संकल्प। संकल्प, फिर उससे कैसे हमने महसूस किया और क्या हमारी वृत्ति बनी, एटीट्यूड हमारा बना, उस एटीट्यूड से हमारा नजरिया, दृष्टि भी बनती है, पर्सपेक्टिव। फिर हम व्यवहार में आते हैं, व्यवहार में बहुत बाद में आ रहे हैं, तीन चार चीजें अंदर हो चुकी हैं सारी, थॉट फीलिंग एटीट्यूड पर्सपेक्टिव, सब यहां हो गया। फिर व्यवहार में आए, टाइम बीता बीच में, पहली चार स्टेजेस के बारे में हम कई बार अवेयर ही नहीं होते, हम सिर्फ कौन सी स्टेज को देख रहे होते हैं, मैंने कैसा व्यवहार किया। अब अगर मुझे अपने व्यवहार को चेंज करना है तो मुझे ये इनिशियल स्टेजेस पर चेंज करना पड़ेगा, व्यवहार में चेंज नहीं आ सकता, नहीं तो
1: समझो मुझे अभी गुस्सा आया, तो मैं सोचूं कि क्या सोच, मैं मुझे ये देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि मैंने क्या थॉट किया, उसके बाद क्या उसके थॉट के रिएक्शन हुए, फील हुआ पूरी बॉडी में, फीलिंग है, उसके बाद फिर मेरे बुक से निकला।
2: एब्सोल्युटली, काफी लंबी स्टेज है ना,
1: इतना फास्ट होता है,
2: फास्ट हो गया,
1: सेकंड में हो जाता है।
2: थॉट क्रिएट बिना तो बिहेवियर में नहीं आएगा, नहीं आ सकता है। बहुत सारी थॉट्स क्रिएट हो जाती हैं, बिहेवियर में भी नहीं आती, लेकिन जो भी बिहेवियर में आ रहा है वो स्टार्टिंग फ्रॉम अ थॉट, बीज है वो हमारा। थॉट फीलिंग एटीट्यूड एक्शन, ये पूरी हमारी अंदर की फैक्ट्री है कि कैसे ये मैकेनिज्म वर्क करता है। हु एम आई और वो आई के अंदर सारा दिन क्या हो रहा है, अगर हमें ये मैकेनिज्म नहीं पता होगा तो हम अपनी फैक्ट्री का पूरी तरह से ध्यान नहीं रख पाएंगे, और हम इस फैक्ट्री से निकलता हुआ जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेंगे। अगर कोई मालिक कहे कि मेरी फैक्ट्री से ये निकल रहा है, सामने वाला कहे तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, कहीं क्या करूं मुझे तो पता नहीं है, तो अपने आप निकलता जा रहा है। आज हमारे बोल अपने आप निकल रहे हैं, हमारे एक्शंस अपने आप हो रहे हैं, कहीं किसी का हाथ अपने आप उठ रहा है, किसी मुंह से अपने आप निकल रहा है, ये जो अपने आप प्रोडक्ट्स बाहर निकल रहे हैं, दिस इज बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट इनर प्रोसेस दैट इज गोइंग इनसाइड। सो नाउ लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप, थॉट फीलिंग एटीट्यूड पर्सपेक्टिव नजरिया एक्शन, एक्शन मीन्स वर्ड और बिहेवियर एनीथिंग एक्शन। अब कोई भी चीज अगर एक्शन में आ गई, फिर कोई एक्शन हमने बार बार रिपीट किया तो वो हमारी बन गई आदत,
1: संस्कार,
2: हैबिट, आदत बन गई। तो आदत भी कहां से बनी, स्टार्टिंग फ्रॉम
1: थॉट,
2: थॉट। अगर थॉट में नहीं आती तो आदत में नहीं आएगी। आदत को बदलना है, कहां बदलना पड़ेगा, चेंज इट एट द लेवल ऑफ थॉट। अब वी हैव सो मेनी हैबिट्स, सारी हमारी आदतों का जो पैकेज है उसको हम कहेंगे इनकी पर्सनालिटी, ये व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व इज अ पैकेट ऑफ ऑल माय हैबिट्स, दिस इज द सम टोटल, हु एम आई, दिस इज माय पर्सनालिटी। कहां से बनी पर्सनालिटी, थॉट। अब ये पर्सनालिटी हर स्टेप पे कर्म में जा रही है, तो नेक्स्ट स्टेज क्या बनेगी, थॉट फीलिंग एटीट्यूड एक्शन रिपीटेड हैबिट, हैबिट मींस कर्म, हैबिट, ऑल माई हैबिट्स पुट टूगेदर पर्सनैलिटी, अब ये पर्सनैलिटी सारा दिन में इतना कुछ कर रही है, नेक्स्ट स्टेज क्या बन रही होगी?
1: मेरा फ्यूचर
2: विच मीन्स माई डेस्टिनी. मेरा फ्यूचर, क्योंकि मेरा कर्म, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा फ्यूचर मतलब मेरा भविष्य.
1: तो थॉट से लेके सीधा
2: डेस्टिनी तक,
1: जैसे सारे का मैं पता नहीं सा, सीधा नीचे से लेके ऊपर.
2: अगर शुरू का नोट ठीक नहीं रहा
1: तो पूरा एंड तक सब बराबर नहीं आएगा.
2: अब अगर डेस्टिनी में कुछ चेंज करना चाहते हैं, पर्सनालिटी में कुछ चेंज करना चाहते
1: हैं, तो आपको अपना प्रॉपर सा को ठीक करो, तो ऊपर का सा भी,
2: बीज
1: रे भी ठीक आएगा, ग भी आएगा, म भी,
2: ऑटोमेटिकली सारा कुछ ठीक आ जाएगा. आज हम अपनी डेस्टिनी को ठीक करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वो भी हम बाहर कर रहे हैं कि डेस्टिनी मेरी कैसे बदल जाए, मैं क्या पहनूं, घर में क्या टांगूं, क्या लटकाऊं, क्या ऐसा करूं जिससे मेरी डेस्टिनी बदल जाए, मेरी पर्सनालिटी चेंज हो जाए, मेरी आदतें बदल जाए. आदतों को भी हम बाह्य लेवल पर चेंज करने की कोशिश करते हैं, लाइक न्यू ईयर डे है, बर्थडे है, आज से आई विल डू दिस, थोड़े दिन के बाद इट विल गो बैक टू द सेम.
1: न्यू ईयर से कर लेंगे.
2: वेरी रिसेंटली आफ्टर लास्ट ईयर 31st December, तो 5th of January को न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था फर्स्ट पेज पे. वो आर्टिकल एक इंटरव्यू था उन लोगों का जो सिगरेट और टबैको बेचते हैं, वेंडर्स जो है, तो उनका आर्टिकल था. तो उन्होंने कहा हर साल के पहले 5 और 6 दिन हमारा जो बिजनेस है वो बिल्कुल डिक्लाइन हो जाता है. कहते लेकिन हमें कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है कि 6-7 तारीख तक
1: डबल हो जाएगा,
2: सारे वापस आ जाएंगे. दिस इज हाउ मच पावर वी हैव ऑन चेंजिंग आर हैबिट. अगर हम उसको बाहर के लेवल पर करेंगे, सिर्फ कि आज से मुझे ये नहीं करना है, उसके पीछे की कॉन्शियसनेस क्या थी, थॉट क्या थी, अंडरस्टैंडिंग क्या थी, एटीट्यूड क्या बनाया, उसको नहीं चेंज किया, सिर्फ हैबिट पर एक्सटर्नली वर्क किया, पुरानी आदतों पर वापस चले जाएंगे. तो डेस्टिनी, पर्सनैलिटी, हैबिट, व्यक्तित्व, बात करने का तरीका, एक्शन, कर्म, ये सब को बाहर नहीं चेंज करना, इनसाइड. अब इनर स्टेज पे अगर एक भी स्टेज पे अगर गलती हो गई तो डेस्टिनी पर असर पड़ जाएगा. इफ आई कीप दिस फॉर्मूला इन फ्रंट ऑफ मी, माय थॉट लीड्स टू माय
1: डेस्टिनी.
2: कितने ध्यान से सोचेंगे, मेरी सोच मेरा भविष्य बना रही है.
1: घंटों डेली लोग सारे गाम जब गाना सीखते लेके बैठे रहते एक ही सोच, ताकि वो एंड का सा करेक्ट आए ऊपर तक, ऊपर से नीचे नहीं आते.
2: अभी हमने क्या सोचा था, हम एक्चुअली ऊपर से नीचे जा रहे हैं जीवन में. हम क्या कहते हैं, भाग्य अच्छा होगा, मतलब भाग्य अच्छा होगा, मेरे साथ सब अच्छा होगा, तब मुझे अच्छा फील होगा, आई विल फील गुड अबाउट माय लाइफ. तो हमने सोचा अगर भाग्य अच्छा तो सोच अच्छी. तो प्रोसेस प्लांट में वी वर ट्राइंग टू गो बैकवर्ड्स. ट्रूथ इज सोच अच्छी तो भाग्य अच्छा,
1: सोच अच्छी तो फिर कर्म अच्छे, फिर कर्म अच्छे तो
2: भाग्य अच्छा. तो वी हैव टू गो इन द राइट ऑर्डर. तो नाउ इट्स इम्पोर्टेंट कि हमारी हर सोच कितनी प्योर और डिवाइन हो, ताकि हमारा भाग्य वैसा बने. अब जैसे आपने कहा, हमारी सोच भी किस आधार से बनती है,
1: करेक्ट,
2: राइट, क्योंकि सोच भी एक एनर्जी है जो हमने क्रिएट की. एवरी थॉट वी क्रिएट इज एनर्जी. तो वो एनर्जी का भी सोर्स क्या है, तो वो सोच के 3 फैक्टर्स है, जिसको हम कहेंगे 3 क्राइटेरिया किस बेसिस पर हमारी वो सोच क्रिएट होगी. क्योंकि कई बार हम अपनी थॉट्स को चेंज करना चाहते हैं. यू नो, लॉट ऑफ पीपल वी डूइंग पॉजिटिव थिंकिंग कोर्सेस. दुनिया में भी लोग किसी भी बात के लिए कहते हैं पॉजिटिव सोचो ना, पॉजिटिव सोचो. पॉजिटिव कैसे सोचो, बात ही ऐसी थी, मुझे चिंता तो होनी थी, बात ही ऐसी थी, डर तो लगना ही था, पॉजिटिव कैसे सोच सकते हैं इसमें. इसका मतलब थॉट लेवल पर भी चेंज ऐसे नहीं आ सकता जब तक थॉट से भी हम थोड़ा सा पीछे नहीं जाएंगे. कि थॉट क्रिएट करने का भी क्राइटेरिया कौन, 3. फर्स्ट, इन्फॉर्मेशन. जो आपने कहा कि पेरेंट्स कुछ कह रहे थे, छोटे बच्चे ने सेम बात कहने शुरू कर दी, तो उसने थॉट कहाँ क्रिएट की, कि बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन जो उसको पेरेंट्स से बच्चे को मिली.
1: ओ, इन्फॉर्मेशन भी मिली, उनका एटीट्यूड भी देखा।
2: इन्फॉर्मेशन, एटीट्यूड भी तो एक इन्फॉर्मेशन है ना। इन्फॉर्मेशन सिर्फ वो नहीं होता जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। इन्फॉर्मेशन मीन्स हर चीज जो हम अंदर लेते हैं, ये हर चीज जो हम अंदर ले रहे हैं अपनी इन सारी कर्म इंद्रियों के द्वारा। इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी वाइब्रेशन जो हम अंदर ले रहे हैं, वो हमारी सोच का हिस्सा बनेंगी। अगर मुझे आपसे अभी नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही हो, आप मेरे बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, आई एम कंज्यूमिंग दैट नेगेटिव वाइब्रेशन एंड आई विल क्रिएट अ नेगेटिव थॉट। तो इन्फॉर्मेशन जो हम अंदर लेते हैं वो बहुत बड़ा सोर्स है हमारी सोच का। तो जो हम कुछ दिन पहले देख रहे थे कि हम मीडिया से क्या लेते हैं, हम पढ़ते क्या हैं, हम देखते क्या हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते क्या हैं, दिस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
1: सेलफोन्स हैं, लोग हैं, अखबार है,
2: एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन। तो जैसी मेरी इन्फॉर्मेशन वैसे मेरी सोच। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हम जब आते हैं, फर्स्ट चीज जो हमें समझ में आती है कि सुबह सुबह हम अपने अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन भरते हैं।
1: अच्छा,
2: सुबह सुबह, क्योंकि जो हम अंदर भरेंगे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, उसी से हमारी थॉट्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। तो कहां हम पहले अखबार पढ़ते थे, या आजकल लोग न्यूज चैनल भी ऑन कर देते हैं, तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी क्या है, उसमें अगर वायलेंस है, टेरर है, पेन है, डिवेस्टेशन है, अटैक्स है, नेचुरल कलामिटीज है, एक्सीडेंट है, पॉलिटिकल केओस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, न्यूज वही दिखा रही है ज्यादा, और हमने अंदर भर लिया सुबह सुबह। सुबह सुबह उठे थे, ब्लॉटिंग पेपर एकदम क्लीन था, ग्रहण करने की शक्ति हाईएस्ट थी, इन्फॉर्मेशन कौन सी अंदर भरती।
1: सो सैड सिस्टर, मैं लोगों को देखता हूँ सुबह उठ के न्यूज पेपर एंड सिगरेट टूगेदर, एक तो यहाँ मन को भी भर रहे हैं, लंग्स को भी भर रहे हैं, बाहर के वातावरण को भी खराब कर रहे हैं।
2: आजकल तो साथ में न्यूज चैनल पे टीवी पे भी चलता है।
1: हाँ, वो भी साथ साथ, ऊपर साथ में एक कप ऑफ चाय भी चल रही है, नहा भी बाद में रहे।
2: See, क्यों इम्पैक्ट ऑफ टीवी चैनल विल बी मोर देन द न्यूज पेपर ऑल्सो।
1: उसमें सब कुछ है, साउंड है,
2: सेंस ऑर्गन्स को कितना वो कैप्चर कर रही है।
1: हाँ, साउंड भी है, विजुअल्स भी है, इम्पैक्ट है,
2: इम्पैक्ट। आप उस सीन को फील करते हैं ना। सेम थिंग अगर कहीं कुछ हुआ है, आप उसको अगर अखबार में पढ़ते हैं कि यहाँ पे फ्लड्स आए, यहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ, ये भी एक न्यूज है, बट इसको अगर हम अखबार में पढ़ेंगे तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा, और उसी को अगर हम
1: विजुअली देखेंगे और साउंड भी,
2: एंड पूरा जो इमोशंस का हमें मिलता है ना वाइब्रेशन, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, न्यूज़पेपर से वो नहीं मिलेगा। न्यूज़पेपर से सिर्फ क्या मिलेगा, सो मेनी पीपल अफेक्टेड, सो मेनी पीपल लॉस्ट लाइफ, सो मेनी पीपल एक्सीडेंट, सो मेनी पीपल इंजर्ड। लेकिन टीवी पर जब उसको देखेंगे, वो इंजरी एक्चुअली दिखेगी, वो डेड बॉडीज दिखेगी, रोते ना, वी फील के ये नॉर्मल है, मतलब टीवी है, देखेंगे। अर्ली मॉर्निंग भरा है अपने आप को, एंड जैसी इंफॉर्मेशन वैसी थॉट्स, ये हमारा भोजन है सुबह का, इसके बेसिस पे सारा दिन की ऊर्जा निर्माणित होगी। तो सुबह सुबह कौन सा भोजन अंदर डालेंगे, दुनिया में क्या हो रहा है हमें पता लगना है, हमें जानना भी है, हम देखना चाहते हैं तो देखना भी है। सुबह सुबह सुबह सुबह कुछ अच्छा नहीं भरेंगे तो फिर पॉजिटिव थिंकिंग जो हम कह रहे हैं वो होगी कैसे फिर। देन वी कांट जस्ट से टू ईच अदर थिंक पॉजिटिव, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वेयर इज द पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन रॉ मटेरियल दैट्स गॉन इन। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हम क्या देख रहे हैं, कितना देखते हैं उसको, कितना सुनते हैं। कई बार इतना स्टैटिस्टिक्स है इस पर कि किसी और शहर में, किसी और देश में हुआ सीन, कुछ हुआ विच वॉज अ बिग ट्रॉमा, लेकिन उसका असर सामने व्यूअर के ऊपर उतने दर्द का हो सकता है। जैसे मूवी देखते हैं तो लोग रोते हैं ना, लोग रो सकते हैं ना उस सीन को देखते हुए, उस इंफॉर्मेशन का इम्पैक्ट उतना होता है कि वो सीन देखने वाले के अंदर वो सेम इमोशन क्रिएट कर देती है।
1: सही बात है।
2: तो यहाँ इमोशन क्रिएट हो गया, पहले
1: लिविंग दैट,
2: बट यू स्टार्टेड क्रिएटिंग दैट.
1: यू लिव दैट मोमेंट.
2: सो इट्स यू डोंट जस्ट लिव दैट मोमेंट,
1: यू
2: हैव क्रिएटेड दैट इमोशन. वी हैव क्रिएटेड दैट इमोशन हियर. नाउ दैट सीन इज नॉट देयर, इट्स हियर. वो अब मेरी सोच का, फिर मेरी फीलिंग का, फिर धीरे धीरे मेरे एटीट्यूड का, मेरे कर्म का, मेरा भाग्य का हिस्सा बन सकती है. क्योंकि वी हैव नॉट लर्न के डिटैच होकर कैसे उसको देखना है. हम मूवी के सीन के अनुसार रोते हैं, हंसते हैं, डरते हैं, सब कुछ सीन के अनुसार हम करते हैं. मतलब हमारा इमोशन सीन के इमोशन के साथ जुड़ गया. कितना इम्पैक्ट है ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द कॉन्शियसनेस इनसाइड. वी नीड टू बी सो केयरफुल, सो केयरफुल. एक इंटरव्यू था, पैनल डिस्कशन था, तो उसमें कुछ टीवी सीरियल्स जो बनाते थे वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर भी थे, तो जो एंकर थे उन्होंने कहा कि आप जो दिखा रहे हो वो समाज में होने लग गया है ज्यादा. यू नो लाइक सपोज डिवोर्स और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स और एनीथिंग, कि जो हिंदी सीरियल में आप टीवी पे दिखा रहे हो वो समाज में होने लग गया है. तो उन्होंने वहां से कहा हम वो दिखाते हैं
1: जो समाज में
2: जो समाज में हो रहा है. सो नाउ इट वॉज विच वे इज ट्रू, कि जो समाज में हो रहा है वो दिखा रहे हैं, या जो वो दिखा रहे हैं वो समाज में हो रहा है. तो फाइनल जब डिस्कशन पूरा हुआ तो उसका जो रिजल्ट निकला वो ये कि समाज में कुछ कुछ जगह कुछ कुछ परसेंटेज में वो होता है. उसको हम उठाते हैं और हम एक सीरियल या एक मूवी बनाते हैं, उसको करोड़ों लोग जब देखते हैं तो वो कई लाखों के जीवन में होने लग जाता है. पहले वो कुछ लोगों के जीवन में हो रहा होता है.
1: मैं एक जगह पढ़ रहा था सिस्टर के एक नेगेटिव और वायलेंट थॉट एक आदमी क्रिएट करता है तो जो वीकर ब्रेन कहे, उसने तो किताब में तो वीकर ब्रेन लिखा, दूसरा बंदा उसको तुरंत कैच करता है फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर मॉब वायलेंस और जो सड़कों पे जो होता है वायलेंट लोग हो गए, लाठी ये वो. He wrote like this. अभी मेरे समझ में ये बात.
2: इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई प्ले सो मच इम्पोर्टेंट रोल.
1: ना टीवी, ना कैमरा, ना न्यूज़पेपर, ना कुछ. एक आदमी की स्ट्रांग थॉट और दूसरे का वीक.
2: दैट्स व्हाई वी सेड इवन वाइब्रेशंस भी तो इन्फॉर्मेशन है ना. वाइब्रेशन भी इन्फॉर्मेशन है.
1: उनको भी रोकना पड़ता है,
2: इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है उसको भी रोकने के लिए. अब आपने कहा वो इन्फ्लुएंस किसको करेगा, वीकर माइंड को. तो वीकर माइंड को मुझे अब क्या बनाना है, स्ट्रॉन्गर माइंड बनाना है. स्ट्रॉन्गर माइंड इसलिए बनाना है ताकि दूसरे की वाइब्रेशन मुझ पर प्रभाव ना डाले. अब स्ट्रॉन्गर माइंड बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन फिर सारा दिन कौन सी डालनी है, फिर बेटर, प्योरर, पावरफुल, पॉजिटिव, स्ट्रॉन्गर इन्फॉर्मेशन जो मुझे पावरफुल बनाए वो इन्फॉर्मेशन डालनी है. तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में फर्स्ट चेंज लाने के लिए, थॉट पे हमें चेंज लाना है. फर्स्ट चेंज हम करते हैं कि सुबह कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अंदर नहीं भरनी है. दिन में भी बहुत ध्यान रखना है कि अंदर क्या जा रहा है, लेकिन सुबह सुबह नेगेटिव कुछ नहीं भरना. लेकिन नेगेटिव तो बंद किया, जैसे बहुत सारे भाई बहन कहते हैं अच्छा हमने न्यूज़पेपर बंद कर दिया, हमने टीवी चैनल सुबह नहीं देखते.
1: हम नेगेटिव सोचना,
2: नेगेटिव सोचने को हमें चेंज करना है. लेकिन नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बंद किया तो कोई प्योर इन्फॉर्मेशन डाला. आप घर पे बैठे हैं, आपने टीवी देखना बंद किया सुबह, अखबार पढ़ना भी बंद किया, लेकिन उसकी जगह डाला कुछ और.
1: नहीं,
2: दैट हैज टू बी डन. इफ आई वॉन्ट अ प्योर थॉट आई विल हैव टू फिल माई सेल्फ विथ प्योर इन्फॉर्मेशन. तो अगर हमें ये छोटा सा परिवर्तन भी लाना है तो हमें दिन की शुरुआत को, जिसके लिए हम कहते हैं ज्ञान, डिवाइन नॉलेज, डिवाइन संस्कार चाहिए ना, तो डिवाइन नॉलेज हम अपने अंदर भरे. तो इन्फॉर्मेशन विल इन्फ्लुएंस थॉट्स. सेकेंड चीज जो इन्फ्लुएंस करती है वो है पास्ट एक्सपीरियंसेस. पास्ट में हमारे साथ कुछ हुआ वो रिकॉर्ड हो गया यहाँ पर. जब सेकेंड टाइम स्टिमुलस सामने आएगा तो उस स्टिमुलस के सामने जो मेरी पास्ट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड है उसके आधार से थॉट क्रिएट हो जाएगी.
1: मेमोरी बैंक में भरा पड़ा है.
2: इसीलिए मेमोरी बैंक भी बहुत ध्यान से क्या उसमें स्टोर हो रहा है. नहीं तो क्या होगा, जो पास्ट की इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड है हर बार जब स्टिम्युलस आएगा सेम क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट होती जाएगी एंड वी विल मेक द पास्ट इनटू आवर प्रेजेंट एंड देन इनटू आवर फ्यूचर बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पास्ट में किसी के साथ कुछ बात हुई, हमने हर्ट क्रिएट की, नेक्स्ट टाइम हम उनको मिलने से पहले ही एक थॉट क्रिएट कर लेंगे, इस बार पता नहीं क्या होगा जब उनसे मिलेंगे. पास्ट एक्सपीरियंस. तो इन्फॉर्मेशन हुई, पास्ट एक्सपीरियंस हुआ एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर माई बिलीफ सिस्टम. हम क्या बिलीव करते हैं, क्या हम मानते हैं. जैसे हमने कई बार देखा है एंगर इज नेचुरल, टेंशन तो होती है, ये हमारा बिलीफ सिस्टम था. तो अगर मेरे को लगता है कि गुस्सा तो नेचुरल है, ये मेरा बिलीफ है, तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो मेरी सोच कौन सी क्रिएट होगी.
1: नेचुरल जो है
2: तो बिहेवियर में क्या आएगा और वही मेरी डेस्टिनी बन जाएगी. अब अगर हमने अपनी बिलीफ को चेंज किया कि नहीं गुस्सा तो अननेसेसरी है, तकलीफ देता है बहुत सबको, पेशेंस
1: सबको क्या
2: है? मुझे यस. अब मैंने अपने बिलीफ को चेंज करना है, हैबिट को नहीं चेंज कर सकते. पहले हम क्या करते थे, हैबिट को चेंज करते थे. हमें दुनिया में सिखाया जाता था 1 से 10 गिनो गुस्सा टल जाएगा, पानी पी लो बीच में गुस्सा टल जाएगा. कहाँ टलता था, पूरा गुस्सा आ गया करके फिर 1 से 10 याद आता था, फिर पानी याद आता था. बिकॉज वी वर ट्राइंग टू डू इट एट द लेवल ऑफ हैबिट. बिलीफ सिस्टम को चेंज करना था कि नहीं, पेशेंस इज नेचुरल, पीस अच्छी लगती है हर एक को, संस्कार हर एक की अलग अलग है. अंडरस्टैंडिंग को चेंज किया, परिस्थिति आई, सोच बदली, कर्म बदला, भाग्य बदल गया. अब बिलीफ में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बिलीफ है वो है हु एम आई, मैं कौन हूं. वो आंसर उस बिलीफ का हमारी सोच बनेगी, हमारी फीलिंग, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार, हमारा भाग्य. इसीलिए हु एम आई का आंसर बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर हु एम आई फिल इन द ब्लैंक में कोई रॉन्ग आंसर लिख दिया जो सच नहीं है, तो उसका असर भाग्य तक जाएगा. एंड दैट्स व्हाई वी नाउ नीड टू फाइंड आउट द ट्रू आइडेंटिटी दैट हु एम आई.
1: लवली, दैट्स वंडरफुल. अगले एपिसोड में हु एम आई को कंटिन्यू करते हैं.
2: थैंक यू.
1: ओम शांति. ओम शांति.
3: एवरी थॉट is followed by a feeling. Feelings over a period of time develop our attitude. Attitude comes out into action. Any action done repeatedly becomes a habit. All our habits put together is our personality. Our personality creates our destiny. If we try to bring a change in our habits, personality or destiny on an outer level, then there are chances that we revert to our old self. Change needs to be created in the consciousness, thoughts and attitude, and then brought into habit. The quality of thoughts is based on 3 input factors: information, past experiences and belief system. Everything we read and hear through media and people influences the quality of our thoughts. Let us avoid reading and watching negative news early morning. Past experiences, if stored unresolved in the memory, will push us into creating the same quality thoughts always. We will think and behave with people based on unpleasant past experiences with them, which will create a negative present and future.
2: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999-559-660.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

भारत माता है कई वीर पुत्रों की, भारत भूमि है अनेक धर्म और जाति की। भारत सा न कोई देश है, न भारत सी एकता की कोई मिसाल। किसी ने क्या खूब गीत लिखा है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। 29 राज्य एक राष्ट्र एक कहानी में हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसे भारत के अनेक राज्यों, भाषाओं और संस्कृतियों से, जिसमें अब हम आपको ले जा रहे हैं भारत भूमि के उस भाग की ओर जो प्रकृति की खास धरोहर है, जो अपने अलग अंदाज और सादगी के अनेक रंग लिए जी रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें शामिल हैं आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड। सबसे पहले आपको ले चलते हैं चाय के उत्पादन के लिए विख्यात प्रदेश आसाम। आसाम पूरे उत्तर भारत में एक सरहदीय राज्य है। भारत भूटान और भारत बांग्लादेश सरहद कुछ हिस्सों में आसाम से जुड़ी है। यहाँ पर कपिली नदी और ब्रह्मपुत्र नदी भी बहती है। ये प्रदेश पूर्वोत्तर दिशा में भारत का प्रहरी है और पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी है। आसाम की उत्तर दिशा में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व दिशा में मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण दिशा में मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य हैं। इतिहास हर राज्य की कहानी है, जिसे जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आसाम के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। ब्रिटिश शासन में जब इस राज्य का विलय किया गया, उससे पहले लगभग 600 वर्ष तक इस राज्य पर अहोम राजाओं का शासन रहा था। आस्ट्रिक, मंगोलियन, द्रविड़ और आर्य जैसी विभिन्न जातियाँ प्राचीन समय से इस प्रदेश की पहाड़ियों और घाटियों में अलग अलग समय पर आकर रहीं और बस गईं, जिसका यहाँ की मिश्रित संस्कृति में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। प्राचीन समय में ये राज्य प्राग्ज्योतिष अर्थात पूर्वी ज्योतिष का स्थान कहलाता था। कालांतर में इसका नाम कामरूप पड़ गया। कामरूप राज्य का सबसे पुराना उदाहरण इलाहाबाद के समुद्रगुप्त के शिलालेख से मिलता है। इस शिलालेख में कामरूप का विवरण ऐसी सीमावर्ती देश के रूप में मिलता है जो गुप्त साम्राज्य के अधीन था, और गुप्त साम्राज्य के साथ इस राज्य के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। चीन के विद्वान यात्री ह्वेनसांग लगभग 743 ईस्वी में राजा कुमार भास्कर वर्मन के निमंत्रण पर कामरूप में आए थे। ह्वेनसांग ने कामरूप का उल्लेख कामोलुपा के रूप में किया है। 11वीं शताब्दी के अरब इतिहासकार अल बरूनी की पुस्तक में भी कामरूप का विवरण मिलता है। इस प्रकार प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक समस्त आर्यव्रत में पूर्वी सीमांत देश को प्राग्ज्योतिष और कामरूप के नाम से जाना जाता था, और यहाँ के नरेश स्वयं को प्राग्ज्योतिष नरेश कहलाते थे। सन 1228 में पूर्वी पहाड़ियों पर अहोम लोगों के आने से इतिहास में मोड़ आया। उन्होंने लगभग 600 वर्ष तक असम राज्य पर शासन किया। 1819 में बदन चंद्र की हत्या के बाद सन 1826 में ये राज्य ब्रिटिश सरकार के अधिकार में आ गया। इस समय बर्मी लोगों ने यंडाबू संधि को मानकर असम को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था, परंतु जब स्वतंत्रता संग्राम भारत में शुरू हुआ तो आसाम भी पीछे नहीं रहा। असम की ग्यादनलू एक नागा आध्यात्मिक तथा राजनीतिक नेता थी, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वे 13 साल की उम्र से ही स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनी तथा 1932 में जब वे मात्र 16 वर्ष की थी, तब उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। भारत को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भी उन्होंने समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए तथा उन्हें जवाहरलाल नेहरू द्वारा रानी की उपाधि प्राप्त हुई।

भूगोलिक नजर से देखें तो मैदानी इलाकों एवं नदी घाटियों वाले आसाम को तीन प्रमुख भौतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, दक्षिण में बरक नदी घाटी एवं कार्बी तथा आलंग जिलों में पर्वतीय क्षेत्र और इन दोनों घाटियों के मध्य स्थित है उत्तरी कछार की पहाड़ियाँ। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी आसाम का प्रमुख भौतिक क्षेत्र है। असम राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। चावल इस राज्य की प्रमुख खाद्य फसल और जूट, चाय, कपास, तिलहन, गन्ना, आलू आदि यहाँ की नकदी फसलें हैं। राज्य की प्रमुख बागवानी फसलें संतरा, केला, अनानास, सुपारी, नारियल, अमरूद, आम, कटहल और नींबू हैं। इन सभी की खेती यहाँ छोटे स्तर पर की जाती है। असम में लगभग दो तिहाई जनसंख्या खेती करती है। इसके अलावा 10% लोग चाय बगानों, वनों या अन्य कृषि आधारित व्यवसायों में कार्यरत हैं। विदेशी मुद्रा के आय के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण चाय और पटसन की पैदावार मुख्यतः ब्रह्मपुत्र घाटी में होती है। चलिए अब उस क्षेत्र की ओर चलते हैं जो किसी भी प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाता है, यानी कि शिक्षा क्षेत्र। असम भी शिक्षा क्षेत्र में पीछे नहीं है। असम भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यहाँ असम कृषि विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, तेजपुर विश्वविद्यालय आदि कई संस्थान हैं। यहाँ संस्कृति का भी एक अनोखा रूप देखने को मिलता है। असम का सांस्कृतिक जीवन विभिन्न सांस्कृतिक संस्थानों एवं धार्मिक केंद्रों जैसे सत्र एवं नमो ग्रह की गतिविधियों से गुथा हुआ है। पिछले 400 सालों में असम में सत्र ही वहाँ की जनता के धार्मिक एवं सामाजिक कल्याण की देखरेख कर रहे हैं। असमी लोग हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को मनाते हैं, लेकिन उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व बिहू है, जो वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। मूलतः ये कृषि पर्व है, जिन्हें लोग धर्म और जाति के भेदभाव को भूलकर हर्षोल्लास से मनाते हैं। पहला और मुख्य बिहू पर्व है वसंत ऋतु में मनाए जाने वाला बुहांग बिहू, जो नए वर्ष के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। ये नृत्य और संगीत का उत्सव है। और भी कई त्योहार हैं यहाँ जो उमंग के साथ मनाए जाते हैं। असम के लोगों का, विशेषकर महिलाओं के सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न अंग है बुनाई। प्रत्येक असमी घर में, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समाज का हो, कम से कम एक हथकरघा अवश्य देखने को मिल जाएगा। हर स्त्री का महीन रेशम एवं सूती वस्त्रों के उत्पादन की कला में पारंगत होना अनिवार्य है। कला और हस्तशिल्प से संबंधित कुटीर उद्योगों के लिए असम सदा विख्यात रहा है। हथकरघा, रेशम, बेत और बांस की वस्तुएं, गलीचों की बुनाई, काष्ठ शिल्प, पीतल आदि धातुओं के शिल्प प्रमुख कुटीर उद्योग हैं। असम में विभिन्न प्रकार का उत्पादन होता है, जिनमें से मूंगा नामक रेशम की किस्म का उत्पादन विश्व भर में सिर्फ असम में ही होता है। अगर बात करें पर्यटन की, तो असम यहाँ के अति लोकप्रिय स्थानों में से एक है। यहाँ गुवाहाटी में तथा उसके आसपास प्रमुख पर्यटन स्थलों में कामाख्या मंदिर, उमानंदा, नवग्रह मंदिर, वरिष्ठ आश्रम, डोल गोबिंद, गांधी मंडप, राज्य का चिड़ियाघर, राज्य संग्रहालय, शुक्रेश्वर मंदिर, गीता मंदिर, पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण मदन कामदेव मंदिर और सरायघाट पुल आदि प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस पाक परियोजना, पोबीतोरा और उरंग वन्य जीव उद्यान, चंदुबी झील आदि पिकनिक स्थल हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं एक असमी गाना। बने रहिए हमारे साथ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

अब बढ़ते हैं उत्तरी पूर्व भारत की अगली मंजिल की ओर, जो है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम व दक्षिण में बांग्लादेश, पूर्व में मिजोरम और पूर्वोत्तर में असम राज्य से घिरा हुआ है। त्रिपुरा गोवा तथा सिक्किम के बाद भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। चलिए अब जानते हैं इस छोटे से प्रदेश के बड़े इतिहास के बारे में। त्रिपुरा का इतिहास बहुत पुराना और लंबा है। इसकी अपनी अनोखी जनजातीय संस्कृति और दिलचस्प लोक कथाएं हैं। बंगाली और त्रिपुरी भाषा यहाँ मुख्य रूप से बोली जाती है। ऐसा माना जाता है कि राजा त्रिपुर, जो ययाति वंश के 29वें राजा थे, उनके नाम पर ही इस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा। जबकि एक मत के अनुसार स्थानीय देवी त्रिपुर सुंदरी के नाम पर इसका नाम त्रिपुरा पड़ा है। ये हिंदू धर्म की 51 शक्ति पीठों में से एक है। इस राज्य के इतिहास को राजमाला गाथाओं से भी जाना जा सकता है। महाभारत और पुराणों में भी त्रिपुरा का उल्लेख मिलता है। राजमाला के अनुसार त्रिपुरा के शासकों को व उपनाम से पुकारा जाता था, जिसका अर्थ पिता होता है। 14वीं शताब्दी में बंगाल के शासकों द्वारा त्रिपुरा नरेश की मदद किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। त्रिपुरा की स्थापना 14वीं शताब्दी में माणी

के नामक इंडो मंगोलियन आदिवासी मुखिया ने की थी, जिसने हिंदू धर्म अपनाया था। त्रिपुरा के शासकों को मुगल के बार बार आक्रमण का भी सामना करना पड़ा, जिसमें आक्रमणकारियों को कम ही सफलता मिलती थी। कई लड़ाइयों में त्रिपुरा के शासक ने बंगाल के सुल्तानों को हराया। 19वीं शताब्दी में महाराजा वीरचंद किशोर माणिक बहादुर के शासनकाल में त्रिपुरा में नए युग का सूत्रपात हुआ। उन्होंने अपने प्रशासनिक ढांचे को ब्रिटिश सरकार के नमूने पर बनाया और कई सुधार लागू किए। उनके उत्तराधिकारी ने 15 अक्टूबर 1949 तक त्रिपुरा पर शासन किया। इसके बाद त्रिपुरा भारत संघ में शामिल हो गया। प्रारंभ में ये भाग सी के अंतर्गत आने वाला राज्य था और 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश बना। 1972 में इसने पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। भूगोलिक दृष्टि से मध्य एवं उत्तरी त्रिपुरा एक पहाड़ी क्षेत्र है, जिसे पूर्व से पश्चिम की ओर चार मुख्य घाटियां धर्मनगर, कैला शहर, कामालपुर और खोबाई काटती हैं। ये घाटियां उत्तर की ओर बहने वाली नदियों चूरी, मनु, देव, ढलाई और खोबाई द्वारा निर्मित हैं। पश्चिम व दक्षिण की निचली घाटियां खुली व दलदली हैं। हालांकि दक्षिण में भूभाग बहुत अधिक कटा हुआ और घने जंगलों से ढका है। लगभग आधा राज्य जंगलों से ढका है। हालांकि खेती के लिए इनकी व्यापक कटाई हुई है, इनमें अब भी महत्वपूर्ण वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें मजबूत लकड़ी है, जिसमें शोशिया रोबोस्टा शामिल है, जो सागौन के बाद दूसरी सबसे अधिक कीमती लकड़ी है। यहाँ के प्राणियों में बाघ, तेंदुआ, हाथी, सियार, जंगली कुत्ते, जंगली सुअर, ग्याल, सांड, जंगली भैंस तथा गौर शामिल हैं। अब बात करते हैं उस पहलू की जिस पर पूरा भारत टिका है, यानी कि कृषि क्षेत्र। त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था भी प्राथमिक रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ की मुख्य फसल चावल है और पूरे राज्य में इसकी खेती होती है। यहाँ की नकदी फसलों में जूट, कपास, चाय, गन्ना, मेस्ता और फल शामिल हैं। शिक्षा के मामले में भी त्रिपुरा आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में त्रिपुरा विश्वविद्यालय नामक एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इससे जुड़े 15 शासकीय डिग्री महाविद्यालय एवं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 2 पॉलिटिक संस्थान के अलावा त्रिपुरा प्रौद्योगिकी संस्थान TIT नामक राज्य का प्रौद्योगिकी संस्थान भी है। इसके अतिरिक्त राज्य में 2 चिकित्सा महाविद्यालय और 1 वेटरनरी, फिशरी और कृषि महाविद्यालय भी है। और भी कई संस्थान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। त्रिपुरा की संस्कृति अपने आप में अनोखी है। जनजातीय रीति रिवाज, लोक कथाएं व लोकगीत त्रिपुरा की संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्व हैं। यहाँ पर 2 प्रमुख वार्षिक उत्सव मनाए जाते हैं, जो है गाड़िया और कास। हर समुदाय का अपना नृत्य है, जैसे रियांग का होजागिरी, त्रिपुरी का गड़िया, झूम, मालमित, मसक, सुमनी और लेबांग बुमनी आदि। यहाँ प्रमुख संगीत वाद्य बांसुरी, लोम्बांग, सरिंदा, दोतारा और खींगरों हैं। सचिन देव बर्मन और राहुल देव बर्मन जैसे प्रसिद्ध संगीतकार इसी राज्य की देन हैं। त्रिपुरा में वैसे तो कई त्योहार मनाए जाते हैं, परंतु उनमें से कुछ प्रमुख हैं राश, बंगाली नववर्ष, गारिया, धालमेल, बीजू और होजगिरी उत्सव। यहाँ नौका दौड़, मनसा मंगल उत्सव, केर और खाची उत्सव, खपुई उत्सव और वाह उत्सव भी मनाए जाते हैं। यहाँ पर पर्यटन समारोह का भी नियमित आयोजन होता है, जैसे कि ऑरेंज एंड टूरिज्म फेस्टिवल, उनोकोटी टूरिज्म फेस्टिवल आदि। घूमने के लिए वैसे तो हर उत्तर पूर्वी राज्य एक अच्छा चयन है, पर त्रिपुरा हर दृष्टि से पर्यटन के लिए उपयुक्त राज्य है। यहाँ देखने तथा घूमने फिरने के लिए कई स्थान है। राज्य संस्कृति की दृष्टि से भी संपन्न है। यहाँ पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा बांग्लादेश जाने वाले पर्यटक भी आकर्षित होते हैं। होटल उद्योग के विकास के साथ ही यहाँ पर्यटन की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। अपने प्राचीन इतिहास, सौंदर्य, पर्वतीय इलाकों की सुंदरता, हरियाली, संस्कृति, रहन सहन एवं परिवेश तथा अच्छे मौसम की वजह से
इसे पर्यटन में काफी लाभ होता है। यहाँ के पर्यटन स्थलों में अगरतला स्थित उज्जैंत मंदिर, कुंजपन महल और मालंचा निवास शामिल हैं। अगरतला से कुछ दूरी पर गुमटी अर्थात गोमती नदी के किनारे उदयपुर और अमरपुर के बीच स्थित देवता मुला शहर प्रतिमाएं एक अन्य पर्यटक स्थल हैं। गुमटी नदी के दाएं किनारे पर उदयपुर में भुवनेश्वर मंदिर है, जहां रवींद्रनाथ टैगोर ने विसर्जन और राजर्षि की रचना की थी। अगरतला से 25 किलोमीटर की दूरी पर सिपाही जाला वन्य जीव अभयारण्य है। इसमें लगभग 150 प्रजातियों के पक्षी और चश्मे के जैसे निशान वाले विख्यात बंदर पाए जाते हैं। अगरतला से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर कमला सागर झील और लगभग 200 किलोमीटर दूर मिजोरम की सीमा के पास जम्पुई पर्वत है, जहां त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी पेतलोंग चिप स्थित है। यहां के अन्य देखने योग्य स्थल सेफ जाला, नीर महल, जम्पुई हिल आदि हैं।

चलिए अब आपको लिए चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के तीसरे राज्य सिक्किम में, जो भारत का एक पर्वतीय राज्य है। सिक्किम की जनसंख्या भारत के राज्यों में न्यूनतम है और क्षेत्रफल गोवा के बाद न्यूनतम है। अंगूठे के आकार का ये राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर और पूर्व में चीनी तिब्बत क्षेत्र और दक्षिण पूर्व में भूटान से घिरा हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में है। इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, नेपाली, लेपचा, भूटिया, लिम्बू तथा हिंदी हैं। परंतु शासकीय कार्य में अंग्रेजी का ही प्रयोग होता है। राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर गंगटोक है। इतिहास की बात करें तो यहाँ सिक्किम का प्रारंभिक इतिहास 13वीं शताब्दी में उत्तरी सिक्किम के काप लुंगत्सोक लेपचा राजा थे कोंग टेक और तिब्बती युवराज खेपुम्सा के बीच रक्त संबंध और भाईचारे के समझौते पर हस्ताक्षर करने से आरंभ होता है। सन 1641 में तिब्बत के माननीय लाम्बा संतों ने पश्चिमी सिक्किम के युकसाम नामक प्रांत की ऐतिहासिक यात्रा की। वहां उन्होंने खेपुम्सा के छठी पीढ़ी के वंशज पुत्सोंग नामग्याल का सिक्किम के पहले राजा के रूप में अभिषेक किया। इस प्रकार सिक्किम के नामग्याल राजवंश का उदय हुआ। समय समय पर परिवर्तन के साथ सिक्किम प्रांत के नागरिकों ने लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया को अपनाया और 1975 में वो भारतीय संघ का अभिन्न अंग बन गया। छोटे आकार का होने के बाद भी सिक्किम भौगोलिक दृष्टि से विभिन्नताओं से भरा है। कंचनजंगा, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम के उत्तरी पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। इस पर्वत शिखर को प्रदेश के कई भागों में देखा जा सकता है। सिक्किम राज्य का साफ सुथरा होना, प्राकृतिक सुंदरता से भरा होना और राजनीतिक स्थिरता यहाँ की विशेषताएं हैं। कंचनजंगा, जिसे सिक्किम की रक्षा देवी माना जाता है, अपनी प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बिखेरती है। जैव विविधताओं से भरे दुनिया के 18 प्रमुख क्षेत्रों में से एक सिक्किम है। सिक्किम हिमालय जैव विविधता से भरपूर है। राज्य में आवृतबीजी वनस्पतियों की 5000 प्रजातियां मिलती है। सिक्किम की डोगिक्या श्रेणी में ही नाथुला तरगा स्थित है। देश भर में पाई जाने वाली आवृतबीजी प्रजातियों की ये एक तिहाई है। सिक्किम में फूलदार पौधों की 4000 प्रजातियां, पक्षी की 500 से 600 प्रजातियां, तितलियों और कीटों की 400 से अधिक प्रजातियां और सरीसृपों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। दुर्लभ नीली भेड़, तिब्बती मास्टिफ, याल और लाल पांडा भी यहां पाए जाते हैं।

अगर बात करें कृषि की तो सिक्किम मूलतः कृषि प्रधान है। राज्य की 64% से अधिक जनसंख्या जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर है। सामान्यतः यहाँ मिली जुली फसलें उगाई जाती हैं। मक्का, चावल, गेहूं, आलू, बड़ी, इलायची, अदरक और संतरा यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। देश में बड़ी इलायची का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य सिक्किम है। इसके अलावा आलू, संतरा और गैर मौसमी सब्जियाँ यहाँ की अन्य नकदी फसलें हैं। चलिए अब चलते हैं मनाने सिक्किम के रंगारंग त्योहार। सिक्किम के नागरिक भारत के सभी प्रमुख हिंदी त्योहार दीपावली और दशहरा आदि मनाते हैं। बौद्ध धर्म के ल्योसार, लुसोंग, सागा दावा आदि त्योहार भी यहाँ मनाए जाते हैं। सिक्किम राज्य में मुख्य रूप से भोटिया, लेपचा और नेपाली समुदायों के लोग हैं। लोसर, सोनम लोचर, ब्राह्मण जोग आदि यहाँ के प्रमुख त्योहारों में से है। पर्यटन की बात करें तो सिक्किम उन लोगों को ज्यादा आकर्षित करता है जो धार्मिक स्थल देखना चाहते हैं। पर सिक्किम को अपने प्राकृतिक हरे भरे पौधों, जंगलों, दर्शनीय घाटियों और पर्वतमालाओं और भव्य सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के शांति प्रिय लोगों के कारण से ये प्रदेश पर्यटकों के लिए सुरक्षित स्वर्ग के समान है। सिक्किम का प्रमुख बौद्ध मठ पेलिंग में स्थित पेमा यंगत्से है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी सिक्किम में ताशिदिंग मठ भी है जो सिक्किम के सभी मठों में सबसे पवित्र माना जाता है। सिक्किम का सबसे प्राचीन मठ युकसोम है जिसे द्रबड़ी मठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ दक्षिण जिले की एक पवित्र गुफा भी है जिसमें एक शिवलिंग है जो इस गुफा को जगमगाता है और कोई रोशनी यहाँ नहीं पहुँचती है। इसके अलावा राज्य में कुछ महत्वपूर्ण गुरुद्वारे मस्जिदें भी हैं, जिनमें से प्रमुख गंगटो और रावणगला में है। आइए सुनते हैं सिक्किम का ये मनोहर गीत। हमारे साथ जुड़े रहिएगा पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चलिए बढ़ते हैं आगे और ले चलते हैं आपको मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर राज्य के उत्तर और दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से म्यांमार लगा हुआ है। यहाँ के मूल निवासी मेती जनजाति है जो घाटी क्षेत्र में ही रहते हैं। इनकी भाषा मेतिलोन है। इसी भाषा को मणिपुरी भाषा भी कहते हैं। ये भाषा 1992 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई थी। यहाँ के पर्वतीय भाग में नागा व कुकी जनजाति के लोग निवास करते हैं। मणिपुरी बहुत ही संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है। मणि का शाब्दिक अर्थ आभूषण है, अतः मणिपुर का अर्थ आभूषण की भूमि है। मणिपुर में प्राकृतिक संस्थानों का प्रचुर भंडार है। यहाँ की प्राकृतिक छटा देखने योग्य है। यहाँ जलप्रपात रंग बिरंगे फूलों वाली वनस्पति है। यहाँ पर कुछ दुर्लभ वनस्पतियाँ और जीवदु भी पाए जाते हैं। मणिपुर का इतिहास लंबा और शानदार है। यहाँ के राजवंशों का लिखित इतिहास सन 33 ईस्वी में पंकगबा के राज्याभिषेक के साथ मिलता है। इसके बाद अनेक राजाओं ने मणिपुर पर शासन किया। मणिपुर की स्वतंत्रता 19वीं सदी के आरंभ तक बनी रही। उसके बाद 7 वर्ष सन 1819 से 1825 तक बर्मी शासकों ने यहाँ पर कब्जा करके शासन किया। 1891 में मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया और 1947 में देश के साथ स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर ये एक मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय संघ के भाग सी के राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य की श्रेणी मिली और 60 निर्वाचित सदस्यों की विधानसभा का गठन किया गया। भूगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत के पूर्वी सिरे पर मणिपुर राज्य स्थित है। इसके पूर्व में म्यांमार, बर्मा, उत्तर में नागालैंड, पश्चिम में असम और दक्षिण में मिजोरम राज्य है। भौगोलिक रूप से मणिपुर के दो भाग हैं, पहाड़ियाँ और घाटियाँ। घाटी मध्य में है और उसके चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9/10 भाग है। चलिए अब आपको अवगत कराते हैं यहाँ की संस्कृति से। मणिपुर ने शास्त्रीय नृत्य की एक स्थानीय शैली मणिपुरी को जन्म दिया है। भारत के अन्य नृत्य रूपों से विपरीत इस नृत्य शैली में हाथ की मुद्राओं का उपयोग मूक अभिनय के बजाय सजावटी तौर पर किया जाता है। घुंघरुओं से स्वराघात उत्पन्न नहीं किया जा सकता और नर्तक व नर्तकी मिलकर ये नृत्य करते हैं। नृत्य नाटिकाएं जिनकी व्याख्या वाचक के द्वारा होती है यहाँ के धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इन नाटिकाओं के विषय समानतः हिंदू धर्म के देवता कृष्ण के जीवन से लिए जाते हैं। लंबे समय से लगभग अज्ञात इस नृत्य का शेष भारत से परिचय महाकवि रवींद्रनाथ टैगोर ने 1917 में करवाया। रास, संकीर्तन नृत्य और थोंगता भी इनके सांस्कृतिक जीवन

यहाँ पोलो और हॉकी अति लोकप्रिय खेल हैं। इसके अलावा मणिपुर में अच्छे योद्धा भी होते हैं और वे कुश्ती, तलवारबाजी और युद्ध कलाओं का अभ्यास करते हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं मणिपुर की प्रकृति के बीच सुंदर पर्यटक स्थलों पर। इस राज्य में अनेक पर्यटक स्थल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर इम्फाल से 7 किलोमीटर दूर खोंगमपाट ऑर्किड उद्यान है, जहां इस पुष्प पौधे की ऑर्चिड उद्यान है, जहां इस पुष्प पौधे की लगभग 110 किस्में उपलब्ध हैं। इस पुष्प पौधे की 110 से भी अधिक किस्में उपलब्ध हैं। राज्य की राजधानी से कुछ किलोमीटर दूर पर मनोहारी पर्वतीय स्थल माओ है। इम्फाल से मात्र 27 किलोमीटर दूर बिष्णुपुर में विष्णु का मंदिर है। इसके अलावा मुहरा वो जगह है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार भारत की भूमि पर भारतीय तिरंगा फहराया था। यहां आजाद हिंद सेना स्मारक भवन तथा युद्ध संग्रहालय भी हैं। ये स्थान प्राचीन मणिपुरी लोक संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। निकट ही लोकटक झील भव्य दृश्य प्रस्तुत करती है और पास ही में एक हिरण उद्यान भी है। यहां पर्यटक कई किलोमीटर की दूरी पर स्थित तिमेलों भी जाना पसंद करते हैं, जहां जलप्रपात और देश विदेश के ऑर्चिड फूलों सहित विविध प्रकार के आकर्षण मिलते हैं। इसके अलावा काइना हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। कैबुल नामचाओ राष्ट्रीय उद्यान देश का अपने ढंग का एकमात्र तैरता अभयारण्य है। राज्य के अन्य उल्लेखनीय पर्यटन स्थलों में प्राचीन महल, वैष्णवों का श्री गोविंद जी मंदिर, युद्ध शहीदों के कब्रिस्तान, पोलो मैदान के निकट राज्य संग्रहालय, लांगता बंद महल और क्वेराम बंद बाजार शामिल है। त्योहारों की बात करें तो मणिपुर में वर्ष भर त्योहार मनाए जाते हैं। कोई महीना ऐसा नहीं होता जब यहाँ कोई त्योहार न मनाया जाए। त्योहार मणिपुर के निवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आकांक्षाओं का प्रतीक है। राज्य के कुछ प्रमुख त्योहार हैं लाई हरोबा, रास लीला, चिरोबा, निंगोल चाकूबा आदि। मणिपुर में घूमने के लिए चाहे वो पर्यटक हो या उनका जन्म यहीं पर हुआ हो, प्रतिबंध क्षेत्र का परमिट लेना आवश्यक होता है। ये परमिट मुख्य महानगरों में स्थित क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से मिलता है तथा 10 दिन तक ही वैध होता है। अपने मनोहर प्राकृतिक भूदृश्यों से मणिपुर पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ मुख्य पर्यटन केंद्र हैं कांगला, श्री गोविंद जी मंदिर, खरीमबंद बाजार, युद्ध स्मारक, शहीद मीनार, नूपी लेन, विष्णु मंदिर, राजकीय संग्रहालय, केनिया पर्यटक आवास, होगजोम युद्ध स्मारक परिसर आदि। मणिपुर भ्रमण करने के बाद अब समय हो चला है इस कड़ी की समाप्ति का, जिसमें हम आपको ले गए थे आसाम, त्रिपुरा, सिक्किम और आखिर में मणिपाल। भारत के इस अनूठे संगम यानी पूर्वोत्तर राज्यों का सफर अभी जारी रहेगा अगली कड़ी में। 29 राज्य, एक राष्ट्र, एक कहानी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा पुनरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत का?
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुनेरी आवाज।
1: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ बांटो।
3: नमस्कार दोस्त, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योति सिंह MP छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं मौन के ऊपर। 100 सवालों का एक जवाब होता है, वो होता है मौन। ऐसे हम देखते हैं कि उन व्यक्तियों पर आप अपने शब्दों की शक्ति का जो है उसको आप व्यर्थ ही खर्च करते हैं, जो वास्तव में आपकी चुप्पी की बात है। कभी कभी आपके सबसे शक्तिशाली शब्द आपका मौन ही है, अर्थात मौन कभी कभी वाचालता की प्रतिध्वनि बन जाती है। 100 सवालों का एक जवाब मौन होता है, परंतु 1000 सवालों से घिरे व्यक्ति का एक जवाब मौत है, जो सभी सवालों से मुक्त ही नहीं कर देती, बल्कि सवाल कर रही दुनिया को मौन कर देती है। जिसके मन में नित्य सवाल ही सवाल उमड़ते घुमड़ते हैं, वह अति दुर्बल मन का होगा। मन की दुर्बलता शरीर की दुर्बलता का कारण बनती है और शरीर की दुर्बलता अकाली मौत का कारण बनती है। जो व्यक्ति सवालों में घिरा रहता है वह जरूर अकर्मण्य है, क्योंकि कर्मण्यता प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करती है। कर्मण्यता दिखाती है कि वह संतुष्ट है, संपन्न है और बेफिक्र है। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रश्नों के उत्तर जो होते हैं वो भी कि उसकी भी एक कीमत 2 वर्षों का मान है। संत तिलोपा के बारे में कहा जाता है कि उसके पास हर प्रश्न का उत्तर है, जैसा कि उनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है। यह सुनकर मालूम पुत्र नाम का एक दार्शनिक उसके पास अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने आया। तिलोपा ने उसके सारे प्रश्न सुने और कहा कि सारे प्रश्नों के उत्तर देने को मैं तैयार हूँ, परंतु इसकी कीमत पहले अदा करनी होगी। मालूम ने सोचा कि मेरे इन प्रश्नों का उत्तर आज तक कोई दे नहीं पाया और यह व्यक्ति कीमत लेकर यदि उत्तर दे सकता है तो कीमत अदा करने में कोई नुकसान नहीं है, अतः उसने कीमत देना स्वीकार किया। संत ने कहा कि कीमत है 2 वर्ष का समय जो तुम्हें मेरे साथ रहकर बिताना होगा और इस दौरान तुम चुप रहोगे, बोलोगे नहीं, चाहे कैसी भी कष्टदायक परिस्थिति क्यों ना हो। मालूक ने यह बात भी स्वीकार कर ली। वह 2 साल तक संत के पास रुका रहा। इन 2 सालों में उसके चरित्र में, संस्कार में और उसकी सोच में काफी परिवर्तन आया। उसे अब सुख मिलने लगा और वह यह भूल ही गया कि कितना समय गुजर गया और उसके क्या प्रश्न थे। परंतु एक दिन संत ने उससे कहा कि आज 2 साल पूरे हो गए, तुम अपने प्रश्न पूछो। मालूक ने कहा कि मुझे सारे उत्तर अनुभव हो गए, मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा मालूक ने क्या किया। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में ज्योतिषी फिर से आपका स्वागत करती हूँ और हम चर्चा अपनी जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है 100 सवालों का एक जवाब है मौन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सत्यता जो होती है, सत्यता शोर नहीं मचाती। सत्य के अन्वेषकों के लिए मौन सर्वाधिक मददगार है। मौन से उन अति सूक्ष्म आवाजों व तरंगों का वो सुना जा सकता है, वो उसको पकड़ा जा सकता है जो निरंतर आत्मा को गहन गहराई से उच्चारित या संप्रेषित हो रही है। अंदर आत्मा की आवाज मौन में अस्पष्ट सुनाई देती है। आत्मा का स्वरूप शांति व शक्ति का है और शांति में टिक कर ही सत्यता की शक्ति का अनुभव व प्रयोग किया जा सकता है। सत्य की खोज में लगा पुरुषार्थी पहले स्वयं के स्वरूप का ही अनुभव कर ले, अन्यथा कस्तूरी मृग की तरह वह भटकता ही रहेगा। सत्यता व मौन में करीबी रिश्ता है, क्योंकि सत्यता शोर नहीं मचाती, लेकिन जब इसे बोलना पड़े तो यह सर चढ़कर बोलती है। सत्यता अद्वैत है, निर्विकल्प है। हाँ, संशय जो है इनके बीच संशय और भेदभाव रहित भी है। सत्यता का ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु, अर्थात माया अविद्या या फरीब का आवरण हटते ही मन बुद्धि सत्यता से जो है आलोकित तो हो सकते हैं, परंतु ऐसे आलोकित मन बुद्धि पुनः अज्ञानता के अंधकार में नहीं डूब सकते। किसी की दैहिक मृत्यु होने पर परिजन राम नाम सत्य है का उद्घोष करते हैं, अर्थात यह स्वीकार करते हैं कि एक ईश्वर का जो नाम है राम का नाम, वही सत्य और वह स्मरण की ही आत्मा की गति सदगति कर सकती है। यह गति अर्थात मुक्ति यानी कि मोक्ष एवं सदगति अर्थात जीवन मुक्ति ही आत्मा का असली मुकाम है। और इस सत्य को जीवन जीते हुए यदि मनुष्य जो है मनुष्य आत्मा समझ ले तो उसके कर्म विकर्म ना बने, वह सदकर्मों की खेती करता हुआ पुण्यों की पूंजी जो है वो साथ ले जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि सत्यवादी जो होता है अस्पष्टवादी होता है। यदि कभी मौन व्रत धारण किया हो तो अंदर से कभी यह नहीं बोलते रहना चाहिए कि मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं। मौन एक सहज स्थिति

करती हूँ, न कि आयोजित हट। मौन का भाव अंदर से बना रहे, अन्यथा बलपूर्वक रखे गए मौन से आत्मा की सहज स्वरूप एवं हट स्वरूप में झगड़ा होता रहता है। यदि मन को सत्य में निवास कराया जाए तो मौन रखना नहीं पड़ता, बल्कि मौन स्वतः आ जाता है, क्योंकि मन को विकल्पों की खुराक मिलनी बंद हो जाती है। सत्य में निवास करने से विकल्प नहीं उठते, सत्य में निवास करने से फिजूल के कितने ही रिश्ते संबंध, वह संबंधों का जो ताना सिमटने लगता है, और केवल सच्चे मित्र संबंधी ही संबंध बनाए रखते हैं। सत्यवादी अस्पष्टवादी होता है और वह वाद विवादों में कभी नहीं उलझता। यहाँ पर हम देखते हैं कि सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला, ये कहावत है, एक चुप और सौ सुख। अर्थात चुप रहने वाला बहुत से विवाद फसाद आदि से बचा रहता है और सुख का अनुभव करता रहता है। यह भी कहावत है कि एक चुप सौ को हरावे, अर्थात यदि एक सच्चे इंसान के पीछे सौ झूठे पड़ जाए, सच्चे को झूठा साबित करने के लिए दलीलें दे हो और जो होता है हो हल्ला मचाए, तो सच्चे का मौन उन सबको शांत करने के लिए काफी है। यदि सच्चा व्यक्ति अपनी सफाई तर्क व समझाने प्रस्तुत करे तो झूठे उस पर भारी पड़ते हैं। सच्चे का साथ समय देता है, परंतु सत्यता सही समय आने पर ही प्रत्यक्ष होती है, और तब तक सच्चे को गलत बातों को सहन करना पड़ता है। कहावत है कि सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। महान जो मनुष्यों के बोल उनके गुजर जाने के बाद भी दोहराए जाते हैं, उनका स्मरण किया जाता है, परंतु झूठे मनुष्य के बोल तो पिसार दिए जाते हैं कि झूठे वक्ता के धुआंधार भाषण पर एक बार तालियां तो बच जाती है, परंतु श्रोताओं के द्वारा उन बातों को याद नहीं रखा जाता, अतः उनका लाभ भी नहीं लिया जाता। इसके विपरीत मंच से श्रोताओं को मौन दृष्टि देते हुए उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना व प्रेम के प्रकंपन देना उन्हें विस्मरणीय शांति की अनुभूति कराता है। ऐसे वक्ता के गिने चुने शब्द ही श्रोताओं पर अमिट छाप छोड़ते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है 100 सवालों का एक जवाब है मौन। तो मौन के ऊपर हम बातें कर रहे थे, देखते हैं हम कि गर्भ में पिछले जन्म का मौन अभ्यास का काम आता है। मृत्यु एक सत्य है, आत्मा का मृदा या मिट्टी से बनी देह को त्यागना ही मृत्यु है। मृत्यु आत्मा का नौ जीवन में जाना है, परंतु अज्ञानी इससे भयभीत होते हैं। मृत्यु के उपरांत आत्मा मौन यात्रा पर निकलती है। यदि जीवित रहते उसने समय समय पर मौन धारण कर आत्मा अवलोकन किया होता है तो मृत्यु उपरांत गर्भधारण तक की उसकी यात्रा मौन व शांति से पूरी होती है, अन्यथा आत्मा को घोर यातना का अनुभव होता है। आत्मा जब गर्भ में लगभग 3 माह के भ्रूण में प्रवेश करती है तो उसे 6 माह मौन में पूरे करने होते हैं और पिछले जन्म का मौन अभ्यास उसके काम आता है। इस दौरान उसके मन में पिछले जन्म की बातें घूमती रहती हैं। गर्भस्थ शिशु और उसकी माता 6 माह शरीर से जुड़े रहकर मौन वार्ता करते रहते हैं। दोनों को एक दूसरे की हलचल, संकल्प व भावनाओं का आभास होता रहता है। नवजात शिशु अपनी बात रोककर, मुस्कुराकर या मौन में रहकर अभिव्यक्त करता है, परंतु माता को सब समझ में आ जाता है। पालने में लेटा शिशु जब रोता है तो माँ काम छोड़कर आती है और कोई गीत या लोरी गुनगुनाकर उसे दुलारती है। शिशु को लोरी का अर्थ नहीं पता होता, उसे तो माँ की वात्सल्य भावना चुप कराती है। रात्रि विश्राम करती माता की मौन उपस्थिति शिशु को वैसे ही बेफिक्र बनाती है जैसे कि शिव की याद एक पुरुषार्थी को बेफिक्र बादशाह बनाती है। एक तरफ हम देखते हैं यहाँ पर कि संगीत में शोर को मौन में और मौन को शांति में बदल देने की शक्ति है। मारी मीना, दिया त्रेच, अंग्रेजी में फ्रांसीसी फिल्मों की प्रख्यात पार्श्व गायिका थी। वह एक बार वह अपना जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने में पेरिस गई तो पेरिस में उसने देखा एक बड़े हॉल में मंच पर उसका स्वागत किया गया और संक्षिप्त भूमिका के बाद मारी लीना ने गाना शुरू किया। तभी हॉल के में सामने की लाइन में बैठी एक महिला की गोद के बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। श्रोताओं व आयोजकों की बड़ी झुंझलाहट हुई और स्वयं मारी लीना ने भी गाना रोक दिया। बच्चे की मां ने उसे चुप कराने का असफल प्रयास किया और फिर शर्मिंदगी के साथ उठकर हॉल के बाहर जाने लगी। तभी माइक पर मारी लीना की मधुर आवाज गूंजी, बहन बाहर मत जाइए, बच्चे को रोने दीजिए। वह महिला वापस आकर बैठ गई। बच्चे के शोर में ही मारी लीना ने एक भावपूर्ण मीठी लोरी गाई जिसे सुनकर बच्चा चुप हो गया और जल्दी ही सो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि गहन मौन छाते ही मारी लीना ने फिर तय गीत गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो संगीत में वह शक्ति है जो शोर को मौन में और मौन को शांति में बदल दे।
यदि आपके मन में किसी घटना से उथल पुथल मची हो तो आप एकांत में संगीत सुने, मन मौन होकर शांति में टिक जाएगा। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर जो ज्ञानमय गीत बजाए जाते हैं वह मन को मौन में और फिर शांति में लाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराते हैं। इससे फिर सुख व शांति के सागर शिव की याद में टिकना आसान हो जाता है। यदि एक बार मन को मौन की टेव पड़ गई तो जीवन में अलौकिकता व सहजता छा जाती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है 100 सवालों का एक जवाब है मौन। तो आज हम मौन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे परम धाम जो है आत्माओं व परमात्मा का मूल निवास स्थान है, जहाँ अखंड मौन का वातावरण होता है। वहाँ आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा शिव का साथ मिलता है, जिससे आत्माओं की जन्म पुनर्जन्म से आई थकान दूर होती है। जिस प्रकार एक सर्जन शरीर को अचेत करके ऑपरेशन करता है, उसी प्रकार परम धाम में शिव का सानिध्य ही उपचार है। परंतु इससे वो सतयोगी प्रारब्ध नहीं बनती जो संगम युग पर साकार में ईश्वरीय सानिध्य से बनती है। साकार में जब पुरुषार्थी आत्मिक स्थिति में मौन धारण कर शिव से योग युक्त होता है, तो वह निरोगी व पावन होता है। महाविनाश के बाद प्रकृति व बचे हुए जीव जंतु मौन व शांत हो जाते हैं, क्योंकि मौन उपचारात्मक होता है। गंभीर बीमारी के बाद मरीज जितना मौन व शांति में रहता है, उतना ही शीघ्र स्वास्थ्य लाभ ले पाता है। यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं कि क्षमा प्रीति से हृदय में मौन व शांति का वास होता है। मौन और शांति में काफी समानता है, परंतु दोनों में अलग अलग। मौन में रहते हुए व्यक्ति अंदर से अशांत हो सकता है, और अशांत वातावरण में रहते हुए भी व्यक्ति शांति के अनुभव में रह सकता है। सर्वश्रेष्ठ स्थिति है मौन। मौन में रहते हुए शांति का अनुभव करना, इसके निरंतर अभ्यास से व्यक्ति अशांत वातावरण में रहते हुए भी मौन व शांति दोनों अखंडित रख सकता है। आज मनुष्यों को छोटी छोटी बातों पर चिखना चिल्लाना और अशांति फैलाना घर घर में देखने में आ रहा है। जो बच्चे ऐसे माहौल में पले बड़े हुए हों और ऐसे उपद्रवी संस्कार से ग्रसित हों, वह अपने जीवन में शांति कैसे पा सकते हैं। हाँ, ऐसे बच्चे या बालिक जब ब्रह्मा कुमारियों के संपर्क में आते हैं, तो उनके लिए अशांति के जो जन्मजात संस्कार को छोड़ना आसान हो जाता है। यदि शांति चाहिए तो मतभेद, मनमुटाव, ईर्ष्या, द्वेष, नाराजगी आदि के संकल्पों से मौन अर्थात दूर रहना होना पड़ेगा, और क्षमा प्रीति को विकसित करना होगा। जिस हृदय से क्षमा प्रीति का वास है, हाँ, जिस हृदय में जो होता है क्षमा प्रीति का वास है, उसमें मौन व शांति का वास सहजता से होगा। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। हाँ, नमस्कार, ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: ख्वाबों का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर ख्वाबों का सफर। जी हां, मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूं ख्वाबों का सफर इस प्रोग्राम को। और आज के इस एपिसोड में हम लोग पी अक्षर वाले बहुत सारे गाने सुनेंगे, जैसे कि ये
2: अनखाई सैया हमारो,
1: जैसे कि

जी, इस तरह से पी अक्षर वाले काफी गाने हम लोग आज के इस एपिसोड में सुनेंगे और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह के कलेक्शन को लेकर आपके साथ जुड़ते हैं। तो जब हम लोग काम कर रहे होते हैं कि पी अक्षर वाले 50s एंड 60s के कौन से गाने हैं, तो उसमें हमें भी बहुत अच्छा लगता है। ये सोच के खुशी होती है कि आपको कुछ नई चीजें देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। पुराने गाने सुनने में जो सूदिंग फील होता है, जो खुशी हमको मिलता है, और वो आपके मैसेजेस और आपके फोन कॉल से हमें पता चलता है। तो मैं चाहूंगा कि आप मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ में 7219190005 पर, और ख्वाबों के सफर सुनकर आपको कैसा लग रहा है या कौन से एपिसोड में कौन से गाने आपको बहुत पसंद आए, इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में आपको मैं ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत, सूदिंग गाना, तीसरी कसम 1966 का इस एल्बम से, जिसे शैलेंद्र साहब ने लिखा है, आशा भोसले ने गाया है, शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध। ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए, आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: क्या बात है, क्या बात है। पान काए सयाह हमार। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना। ये मस्ती भरा गीत था और कहीं ना कहीं एक पान के साथ साथ प्रेम भी जुड़ा हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक और गीत की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है और हम अपने हमसफर साथी या पति पत्नी को या पत्नी पति को ये बातें अक्सर कहते हुए सुना है। इसके साथ में ऐसा नहीं है कि पति पत्नी के बीच में या प्रेमी प्रेमिका के बीच में ही तबीयत के बारे में बात हो, और ऐसा हो सकता है कि हम अपने दोस्त के हाल को भी पूछ सकते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में इस तरह की बातें करता है, और कभी कभी हम लोग जाने अनजाने किसी व्यक्ति से मिलते हैं, बहुत लंबे समय के बाद मिलना हुआ तो तब भी हम लोग इस तरह की बातें पूछते हैं। तबीयत की बात पूछनी हो तो किस तरह से पूछी जाए। तो ये एक गाने के अंदाज में अगर आपको बताया जाए या सुनाया जाए तो कितना अच्छा होगा, है ना। तो आइए ऐसा ही कुछ भाव भरा एक गीत आपके लिए लेकर आया हूँ। इंदिवर साहब का लिखा, मोहम्मद रफी साहब का गाया, सी अर्जुन साहब का संगीत से सजा। एक फिल्म आई थी पुनर्मिलन 1964 में, इस फिल्म में ये गीत है। तो मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज में और बड़े नखरेले अंदाज में ये चीजें जो है उन्होंने इस गाने के अंदर गाया है। तबीयत की बातें इसमें पूछी गई है। तो चलिए अब बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए मैं सीधे आपको ले चलता हूँ इस गीत की तरफ। जी हाँ, आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पास बैठो, तबीयत बहल जाएगी। चलिए, किसी का अगर तबीयत ठीक नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी के पास बैठो या कोई आपके पास आकर बैठे तो शायद आपका तबीयत ठीक होने लगे। तो चलिए, 1964 का पुनर्मिलन इस एल्बम से ये गाना आपने सुना। आइए अब एक और खूबसूरत गीत की तरफ मैं ले चलता हूँ आपको। 1969 की अगर बात करें तो उस समय एक फिल्म आई थी जिसका नाम था तलाश। तलाश इस फिल्म का नाम जो है ये एक खोज की बात है या ढूंढने वाली बात आती है, किसी गुमशुदा व्यक्ति को ढूंढने की बात है। ये हमने इस कहानी इस तरह की ही कुछ है, लेकिन फिर भी कहानी में बहुत सारी चीजें हैं, उस कहानी के बारे में नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन आपको इस गाने के बारे में जरूर बताऊंगा। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला। जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत नखरेला जो है एक अंदाज में चीजें है जो एक प्रेमी प्रेमिका को कहता है। मजनू सुल्तानपुरी का लिखा ये खूबसूरत गीत, जी हाँ, लता मंगेशकर, रफी साहब का गाया, सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा, ये बहुत ही खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। और आशा करता हूँ आप सभी इस गाने को बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि कई बार शब्द जो है ऐसे हैं जिसमें भाव कुछ और होता है और कुछ मतलब हम लोग और निकल लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही रहस्यमय जो है लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा है, पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला। तो अब देखिए कि किस भाव से क्या बताना चाहते हैं, गाने को सुनकर ही आप पता लगाइए। मैं आपका साथी हम सफर लेकर आया हूँ, खाबों का सफर, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: कंची को गला रंगियो कंचन हेरे रो।
2: गौरी, ये क्या गा रहा है?
3: कह रहा है प्यार अनमोल होता है और समय कभी पलट के नहीं आता।
2: हुँ?

जी हाँ, आपने बहुत ही खूबसूरत गीत सुना। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है। और कई बार जो संगीतकार होते हैं या फिर गायक होते हैं, इनकी तो बातें ठीक है, हमने जो लिरिक्स दिए हैं वो उस भाव को समझकर गाते हैं, लेकिन लिखने वाले ने भी क्या खूब वो कहानी को रचा उसने कि ताकि गायक और संगीतकार इस चीज़ को अच्छी तरह से जोड़ पाए। तो लिखने वाले की कमाल है कि वो शब्दों के मेलजोल को, शब्दों के खेल को अच्छी तरह से समझकर उन्हें लिखते हैं। तो आइए ऐसे ही एक और गीतकार के बारे में बात करना चाहूँगा, शकील बदायूं साहब का। ये भी बहुत अच्छे गीतकार रहे और इनके लिखे हुए गीत भी बहुत मशहूर, आज भी लोग उनके गानों को सुनते हैं। तो आइए अगला गाना मैं आपको शकील बदायूं साहब का ही सुनाने वाला हूँ। 1950 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बाबुल। बाबुल इस एल्बम से ये गाना है और लता मंगेशकर ने इसे गाया है, नौशाद साहब ने संगीत से सजाया है। कहते हैं पंछी बन मैं पिया पिया गाने लगा, पंछी बन मैं पिया पिया गाने लगा। तो आइए इसके पीछे जो भाव है वो पूरा गाना सुनने के बाद आपको पता चलेगा। तो चलिए अब सीधे मैं आपको ले चलता हूँ इस गीत की तरफ, बाबुल इस एल्बम का ये खूबसूरत नगमा अभी आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: चलिए, जब पंछी की बात चली रही है तो पंछी बन के पिया पिया गाए या पंछी बन के उड़ जाए बात दोनों में पंछी शब्द जरूर है, लेकिन कोई पीछे घूमना चाहता है और कोई उड़ना चाहता है। तो अब बात आती है, जब इस गाने को लिखा, ये गाना जो अभी मैं आगे अभी अभी हमने जो गाना सुना उसे शकील बदाई साहब ने लिखा था पंछी बन मैं, और अभी जो गाना मैं सुना रहा हूँ पंछी शब्द इसमें भी है, लेकिन इसे लिखा है हर्षद जयपुरी साहब ने। और पंछी को लेकर हर्षद जयपुरी साहब के कल्पना में उड़ने की जो बात आती है तो उस पर उन्होंने लिखा है, जैसे कि जी हाँ जी, पंछी बनू उड़ते फिरूं मस्त गगन में तो कितनी खुशी होती है कि शब्दों का जब थोड़ा सा जो है हेरफेर हो जाता है तो हो सकता है कि हमारे जो इमोशंस है, हमारे जो भावनाएं हैं, उसमें कितना बदलाव आ जाता है। जैसे पिछला गाना जो हमने सुना उसके भाव अलग थे, अब ये गाना जो सुनेंगे इसके भाव अलग है, मस्ती भरे है, खुशनुमा है, उड़ान भरने वाले हैं, मोटिवेशन वाले हैं। तो ये लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में शंकर जयकिशन का संगीत बद 1956 का चोरी चोरी इस फिल्म से ये गाना है, पंछी बनू उड़ते फिरू मस्त गगन में। तो चलिए, कभी कभी मनुष्य पंछियों को देखकर ये सोचता जरूर है, जैसे मैं भी पंछियों को देखकर मैं ये सोचता हूँ हमेशा कि पंछी कितने मस्त गगन में उड़ते हैं, क्या मनुष्य को भी पंख लगाया जाए तो वो भी इस तरह से उड़ सकता है चलिए, पंछी बन हम उड़ नहीं सकते, लेकिन आजकल हवाई जहाज से तो हम उड़ ही सकते हैं तकनीकी तरक्की तो हमने बहुत कर ली, लेकिन उड़ान की जब बात आती है तो टेक्निकली चीज़ों के साथ जरूर उड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है मन की उड़ान की। जी हाँ, अगर हम हमारे मन को अच्छी तरह से समझ लें, मन में सद्विचारों को हमेशा बनाए रखें, मन में अच्छे विचार घूमते रहे, खुशी के विचार आते रहें, तो मन मस्त होकर हम जब इस दुनिया में जिएंगे तो कितनी खुशी होगी, है ना। तो चलिए, अब बातें और ना करते हुए चोरी चोरी इस एल्बम का ये खूबसूरत गीत अभी आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना। और इसके साथ ही हमारे कुछ मैसेजेस भी आ गए 7219190005 पे। अच्छा लगता है जब आप लोग गाने सुनने के बाद या कुछ ऐसे भाव आपके अंदर उभरते हैं तो ज़रूर मैसेज करके आप जब अपनी रिस्पांस देते हैं तो हमारी खुशी बढ़ जाती है। तो बहुत ही धन्यवाद के पात्र है आप सभी, आपके प्यार आपके SMS से हमारी खुशी बढ़ जाती है। तो आइए पी अक्षर वाले अल्फाबेट से हम इस पी अक्षर वाले गाने आज हम इस एपिसोड में आपको सुना रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, ऐसे ही खूबसूरत गाने और भी हैं। जी हाँ, जब पंछी की बात चल रही है तो पंख भी होंगे। तो वही हसरत जयपुरी साहब ने जैसे ही पंछी की बात लिखी उसके बाद उनके कलम से पंछी नाम से भी एक गाना लिखा उन्होंने। हसरत जयपुरी साहब ने एक और गाना इसी तरह का लिखा जैसे कि ये। देखिए इसमें भी उड़ान भरने वाली बात है, इसमें भी खुशी की बात है। और यहाँ पर पंख नहीं है लेकिन होते तो क्या होता, इस भाव को यहाँ पर हसरत जयपुरी साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने कलम से लिखा है। और इसे बखूबी, जैसे पहले वाला गाना भी आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना, वही लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना भी बहुत ही सुदी है। और सुनकर आपको तो लगा होगा कि मैं जल्दी से गाना सुनाऊं। जी हाँ, ज़रूर सुनाएंगे। और रामलाल जो थे एक बहुत ही अच्छे संगीतकार थे 1960 में, उन्होंने इस गाने को संगीत दिया है। फिल्म आई थी 1963 में सहरा। जी हाँ, इस फिल्म का ये गाना है। तो चलिए इस गाने को सुनते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: बाजार में चक्कर लगा रही हो, शायद उसने मिलने का वादा किया होगा।
1: वादा करने वाले बड़े झूठे होते हैं।
0: हाय मैया, क्या तुमसे भी किसी ने वादा किया था?
1: जाने भी दे,
0: देखो जा रही है। कहाँ जा रही होगी? अपने प्रीतम से मिलने।
1: जो है, काश मेरे भी पर लग जाए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: पंख होते तो उड़ी आली रे, रसिया वो जाली माँ। पंख होते तो उड़ आती रे, रसिया वो जाली माँ। बहुत ही खूबसूरत भाव भरे गीत आपने सुने। आशा करता हूँ आप सभी को इस तरह के गीत पसंद आ रहे होंगे, और क्यों ना हो, क्योंकि व्यक्ति का जो मन है वो कहीं ना कहीं उड़ान भरना चाहता है। ऐसे मन के लिए काफ़ी बातें कही गई हैं कि मन जो है विचारों का एक बैंक है, मन भावनाओं से युक्त है, मन इच्छाओं से भरा हुआ है, मन में हमारी भावनाएं भरी हुई हैं, कभी खुशी कभी गम, मन के आधार से हम लोग फील करते हैं। तो मन जब उड़ने लगता है तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं। तो इसीलिए हमेशा अच्छे विचारों में रमन कीजिए, अच्छे विचारों से उड़ते रहिए। तो आइए, जब मन की बात चले तो मन वाला एक गाना भी हम सुनाई देते हैं आपको।
2: तो आइए, मन कैसा हो, इन भावों को इस गीत के माध्यम से सुनते हैं, और आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा ये गाना।
1: तो अगला जो गाना है वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। सुनील सुकंदकर ने इस गीत को लिखा है, पानी सा निर्मल हो मेरा मन। इसे गाया है अमृता सुभाष शेखर कुलकर्णी ने गाया है। श्रीरंग उमरनी ने इसे संगीत से संवारा है, और ये एक फिल्म आई थी नीतल, इस फिल्म का ये गाना है, नीतल एल्बम का। जैसे कि ये
3: पानी सा निर्मल हो मेरा मन, मेरा मन।
1: वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत भाव है, पानी सा निर्मल हो मेरा मन। जैसे जैसे हम लोग इस गाने के भाव को, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि पंची पंख ये सारी चीजें मन से जुड़े हुए हैं, मन कैसा हो अगर इस पे बात करें,
2: तो इस गाने के माध्यम से मन का सही परिचय हम सभी को हो जाएगा। मन क्या है, मन के भाव क्या है, और किस तरह से होने चाहिए, बहुत ही खूबसूरती से इस गाने में मन के बारे में बताया गया है। तो आइए इस गीत का आनंद उठाते हैं, और इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, सलाम, और आशा करता हूँ आप सभी ने आज के इस एपिसोड को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। और जो गाने आपको पसंद आए उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए, मैसेज जरूर कीजिए 7219190055 पर, और आप सभी को ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सांभड़ो रे सांभड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले।
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

18वीं सदी का सुधार युग। उस युग के प्रमुख समाज सुधारक थे राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस आदि। उन्होंने अपने अपने प्रयासों से समाज कल्याण का बीड़ा उठाया था। इन महापुरुषों के पदचिन्हों का अनुसरण कर स्वामी विवेकानंद ने समाज और देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। पश्चिमी देशों को भारत की एक नई पहचान मिली। भारतीय ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता से उनका परिचय हुआ और सारा विश्व इस तरुण सन्यासी के प्रति आकर्षित हो गया।

0: आपने 19वीं सदी के भारत और मुख्यतः बंगाल के बारे में भी जाना। हमने सुना वो कितना अशांत युग था, समाज दिशाहीन तथा अंधकारमय था। कुछ समाज सुधारकों ने समाज को कुछ हद तक सुधारा, दिशा दी, परंतु सदियों की रूढ़िवादिता, धर्मांधता तथा कदाचार पर संपूर्ण रूप से विजय पाना संभव न था।
1: उसी अशांत कालखंड में स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव हुआ। अपने ज्ञान, कर्मयोग, भक्ति एवं वैदांतिक राष्ट्रवाद से उन्होंने समूचे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का दिल जीत लिया। दिशाहीन भारत को एक सच्चा पथ प्रदर्शक मिला। जाति, प्रांत और भाषाई अंतर को भुलाकर भारतवासियों ने उन्हें अपने प्रेरणा पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा से लोग मुग्ध हुए।
0: ऐसे दिव्य महापुरुषों की जीवन कथा बहुत ही रोचक है। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने हजार वर्षों का काम कर दिखलाया था। इतने सारे गुणों से धनी स्वामी विवेकानंद को संस्कार अपने परिवार से मिले थे। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी, अतः विवेकानंद को जानने से पहले उनके परिवार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता नगरी के उत्तरी भाग में सिमुलिया या शिमला मोहल्ले में गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट पर दत्त परिवार का विशाल भवन अपनी संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। आज भी उस भवन का जीर्ण द्वार अतीत वैभव का साक्षी बना खड़ा है। दत्त वंश का ऐश्वर्य और ख्याति उनके 12 महीने के 13 उत्सव पर्व का आडंबर उस समय के कलकत्ता के धनी समाज में चर्चा का विषय रहा।
1: कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील राममोहन दत्त के समय में सिमुलिया के दत्तों ने नगर में काफी प्रभाव और प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। राममोहन दत्त के पुत्र दुर्गाचरण ने उस समय की प्रथानुसार संस्कृत तथा फारसी भाषा में शिक्षा प्राप्त की और राजभाषा अंग्रेजी भी सीखी। उन्होंने भी वकालत प्रारंभ कर दी, परंतु पिता जैसी धनोपार्जन की प्रवृत्ति उनमें न थी। तत्कालीन धनी संतानों के समान नवीन नागरिक सभ्यता के भोग विलास भी उन्हें आकर्षित न कर सके।
0: ये धर्मानुरागी युवक अवसर और मौका पाते ही धर्म शास्त्रों की चर्चा तथा सत्संग किया करता था। उत्तर पश्चिम प्रदेशों से आए हुए हिंदी भाषी वेदांती साधुओं से प्रभावित होकर दुर्गाचरण ने 25 वर्ष की उम्र में ही सारा ऐश्वर्य और सम्मान त्याग कर सन्यास ले लिया।
1: सन्यासियों के नियमानुसार 12 वर्ष के बाद दुर्गाचरण एक बार अपने जन्मस्थान का दर्शन करने आए थे और अपने एकमात्र पुत्र विश्वनाथ को आशीर्वाद दे गए थे। उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। उनके आगमन के एक वर्ष पहले ही उनकी पत्नी यानी विश्वनाथ की माता का निधन हो गया था। सन्यासी पुत्र विश्वनाथ ही सन्यासी विवेकानंद के पिता थे।
0: विश्वनाथ ने अपने दादा राममोहन का अनुसरण कर वकालत करना प्रारंभ किया। वे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वकालत में व्यस्त रहते हुए भी अध्ययन में उनका प्रबल अनुराग था। वे फारसी जानते थे, हाफिज की कविताएं पढ़ते थे, अंग्रेजी साहित्य और इतिहास आदि पढ़ने के कारण धार्मिक कट्टरता उनमें ना थी। कई ऊंचे खानदान के मुस्लिम उनके मुवक्किल थे तथा लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर आदि स्थानों की यात्रा करने के कारण वे उस समय के अनेक खानदानी मुस्लिम परिवारों के संपर्क में आ चुके थे, अतः वे उनके रीति रिवाजों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उनकी पाबंदी भी करते थे। बाइबल के अध्ययन के कारण वे ईसाई धर्म के भी प्रेमी थे, अर्थात धर्म, ईश्वर आदि के बारे में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। वे काफी धनोपार्जन करते थे और खर्च भी वैसा ही करते थे। रिश्तेदारों दोस्तों का आदर सत्कार करना तथा ठाट बाट से रहना वे पसंद करते थे। उनके घर में अनेक आश्रित पलते थे और उस विशाल भवन में किसी चीज की कमी ना थी।
1: परंतु विश्वनाथ की पत्नी भुवनेश्वरी देवी एक पारंपरिक महिला थी। इस बुद्धिमती कुशल गृहिणी की देखरेख में उनके विराट परिवार के सभी कार्य बड़ी कुशलता से संपन्न होते थे। वे बंगला पढ़ना लिखना भली भांति जानती थी। रामायण महाभारत पुराण भागवत आदि का नियमित पाठ करती और साथ ही अपने पति पुत्र के साथ चर्चा करके तत्कालीन विचारधारा से भी परिचित रहती थी। आस पड़ोस के लोग उन्हें श्रद्धा करते थे। वो मीठा बोलने वाली गंभीर धर्म परायणा महिला प्रतिदिन शिव पूजा करती थी।
0: भुवनेश्वरी देवी के मन में एक दुख था। दो कन्याओं की माता तो वे थीं, पर उनका कोई पुत्र ना था। पुत्र मुख देखने की लालसा ने उन्हें धीरे धीरे बहुत ही व्याकुल कर डाला। वे प्रतिदिन सुबह शाम शिव मंदिर में प्रार्थना करती और शिव को संतुष्ट करने के लिए कठोर व्रतों का पालन करती।

कैलाशपति भुजंगेश्वराय नमः। हे देवाधिदेव, मैं भक्ति पूर्वक तन मन से तुम्हारी सेवा में रत हूँ। सभी कठोर व्रतों का नियम पूर्वक पालन करती हूँ। तुमसे आज्ञा या आशीर्वाद लिए बिना मैं कोई भी काम नहीं करती प्रभु। फिर तुम्हारी कृपा कब होगी? कब आप प्रसन्न होंगे? कब मेरी गोद में एक पुत्र आएगा प्रभु? कब तुम्हारी दया होगी? बोलो बोलो ना, कब होगी दया? कब कब होगी तुम्हारी दया?

0: इतने व्रत उपवास पूजा अर्चना के बाद भी उनके मन को शांति न हुई। शिव को और भी अधिक तुष्ट करने के लिए उन्होंने काशी में रहने वाली एक रिश्तेदार महिला को पत्र लिखा।
1: आपको तो मालूम है कि मैं शिव की पूजा नियमित रूप से करती हूँ, उनके नाम का व्रत उपवास भी करती हूँ, पर उनकी कृपा मुझ पर आज तक नहीं हुई। मेरी पुत्र कामना अधूरी ही रह गई। आप तो भाग्यवती हैं, शिव की नगरी में ही निवास करती हैं। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप हर दिन मेरी ओर से बाबा विश्वेश्वर के मंदिर में पुत्र कामना करते हुए पूजा एवं होम

0: सब कुछ भूलकर बेसुत बैठी रही। सारा दिन बीत गया, सांझ हो आई। पति विश्वनाथ के अदालत से लौटने पर उन्हें ये समाचार मिला। वे पत्नी से बेहद प्यार करते थे। व्याकुल होकर पूजा कक्ष में आए और भुवनेश्वरी को आवाज दी।
1: भुवन, ओ भुवन, भुवन, क्या हो गया है तुम्हें? सुना है सुबह से यहां ऐसी ही बैठी हो, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भुवन, तुम सुन रही हो ना? मेरी ओर देखो, जवाब दो भुवन, भुवन।
0: भुवनेश्वरी ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे वहीं पर थककर सो गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें छूने या जगाने की। सूर्योदय के समय अचानक घर वालों की नींद खुली। उन्हें पूजा घर से घंटा बजने और मंत्रोच्चार की आवाज आई। सब दौड़ते हुए वहां जाकर एकत्रित हुए। भुवनेश्वरी होश में आ गई थी और जोर जोर से मंत्र पढ़कर शिव को प्रणाम कर रही थी।
2: हे शिव, हे शंकर, हे करुणामय, तुमने मुझे ये क्या दिखाया, क्या दिखाया? क्या ये निरा सपना था या सच का पूर्वाभास? कहो देव, कहो ना। अरे अरे, सुना तुमने? तुम लोगों ने सुना? मेरे इतने दिनों की तपस्या पूरी होने वाली है। हाँ हाँ, शिव ने मुझ पर दया की है। हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे प्रभु।
1: भुवन, भुवन, शांत हो जाओ। सब ठीक तो है ना? क्या देखा तुमने? कहो, इतनी खुश क्यों हो? कहो तो।
2: मैं क्या कहूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने ये कैसा सपना देखा?
1: क्या देखा तुमने? कहो भुवन।
2: मैंने देखा, मैंने देखा, तुषार धवल पर्वत श्रृंग से कैलाशपति शिव उतर कर आ रहे हैं। हाँ, और वो ठीक मेरे सामने आकर खड़े हो गए। वो मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे, तुम्हारी कठोर तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा भुवनेश्वरी। और कहते कहते शिव एक छोटे से शिशु का रूप धारण कर मेरी गोद में आ गए। हाँ हाँ, वो मेरी गोद में आ गए और मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। हाँ, सच। ओह, हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे शिव,
3: हे शिव, हे शंकर, कहती हुई वे बारंबार माथा टेकती रहीं। परिवार वाले हतप्रभ रह गए।
0: उस दिन 1863 ईस्वी की 12 जनवरी थी। पौष संक्रांति का पुण्य प्रभात। शीत से ठिठुरते हुए नर नारी स्नान के लिए भागीरथी की ओर जा रहे थे। इसी समय सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व 6:33:33 पर भुवनेश्वरी देवी ने विश्व विजयी पुत्र को जन्म दिया।

0: आनंद उल्लास और हर्ष से दत्त भवन मुखरित हो उठा। मंगल शंख बजने लगे। बंगाल के हर घर में पौष पर्व का आनंदोत्सव मनाया जा रहा था, मानो नवजात शिशु को सादर अभ्यर्थना करने प्रत्येक गृह प्रांगण मुखरित हो उठा।
1: नामकरण का दिन। बालक की आकृति बहुत कुछ उसके सन्यासी पितामह की तरह देखकर परिवार के कुछ लोगों ने शिशु का नाम दुर्गादास रखने की इच्छा प्रकट की, परंतु माता ने अपने स्वप्न को स्मरण कर कहा,
2: जी इसका नाम शिव के नाम पर वीरेश्वर रखा जाए। ठीक है, वे ही तो शिशु का रूप धरकर मेरे घर आए हैं। ये मेरा शिव।

0: मेरा शंभू, मेरा महेश और मेरा शंकर है, मेरा बच्चा।
1: सभी ने उनका कहना मान लिया। वे उसे वीरेश्वर से वीरे और अंततः बिले कहने लगे। अंत में अन्नप्राशन के समय बालक का नाम रखा गया नरेंद्रनाथ, और भविष्य में यह बालक नरेंद्रनाथ या नरेन नाम से ही परिचित हुआ।
2: बचपन में नरेंद्रनाथ बहुत ही नटखट थे। उनके उधम से घरवाले हमेशा परेशान रहते थे। वे माँ को बहुत तंग करते थे। एक दिन बालक नरेन आंगन में दौड़ दौड़ कर माँ को सता रहा था।
0: बिले, अरे ओ बिले, आना इधर आ, बात सुन मेरी। बिले, ओहो आना, कपड़े बदल ले। ओहो
3: नहीं नहीं बदलूंगा कपड़े, लो पकड़ो मुझे।
0: अरे सुन ना।
3: नहीं पकड़ पाई ना, मैं अभी पेड़ पर चढ़ने जा रहा हूँ, नहीं आऊंगा तुम्हारे पास।
0: ठहर, पकड़ती हूँ तुझे। अब बस ये पकड़ लिया। बोल अब कहाँ जाएगा। हाँ ठहर ठहर, मैं मजा चखाती हूँ। नहीं सुनेगा ना मेरी बात। हाँ नहीं सुनेगा, चल चल आ इधर आ, ये इधर आ, इधर आ, ये ले ये ले ये। शिव शिव शिव शंभू शिव शंभू शिव शंभू, ले अब तेरा माथा कुछ ठंडा हुआ ना। चल चल अब अंदर चल, चल बेटा सर पोंछ दूं फिर कपड़े बदल लेना। शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर।
2: पिता विश्वनाथ बरामदे में खड़े होकर माँ बेटे का ये नाटक देख रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा,
4: भुवन तुम क्यों हमेशा बिले के पीछे पड़ी रहती हो, अरे खेलने दो ना उसे। देखो ना, नाहक उसके सर पर ठंडा पानी डाल दिया। अगर उसे जुखाम हो गया तो जाओ जल्दी से पोंछो उसका सर।
0: हाँ हाँ, तुम्हें तो हमेशा मेरी ही गलती दिखाई देती है, बेटे की शरारत तुम्हें दिखती ही नहीं। अरे देखो तो, दौड़ा दौड़ा कर मेरा तो दम निकाल दिया, और उसे भिगोने में देखो ना, ये देखो मैं पूरी तरह भीग गई। अरे बिले चल ना, चल जल्दी चल चल।
4: पर तुमने दोबारा उसे नहलाया क्यों, और वो भी ठंडे पानी से।
0: क्या आप नहीं जानते कि आशुतोष शिव जलाभिषेक से ही संतुष्ट होते हैं, और मेरा बिले भी तो शिव का ही अंश है, इसलिए जब मैं इसे किसी भी तरह से शांत नहीं कर पाती तो ठंडा पानी डालकर शिव शिव की जाप करती हूँ, और ये भी शांत हो जाता है।
4: तुम माँ बेटे की महिमा अपरंपार है, मुझे समझ में नहीं आता। अरे बच्चा है अभी, शरारत तो करेगा ही।
0: ए देखो जी, वकालत करते हो उसी को संभालो, हम माँ बेटे के बीच ना आना, ठीक है। ए, ए, ए, अरे अरे अब फिर भाग गया। अरे देखो तो, ओहो फिर भाग गया बिले।
4: लो संभालो अब।
0: ओ माँ गो माँ, मैं तो इसकी शरारतों से तंग आ गई हूँ। ओ अरे अरे, ओ राधा शामू, अरे देख तो किधर भाग गया। वो भाग रहा, वो जा पकड़ पकड़ लिया ना, ले आ इधर इधर ले आ। मांगो माँ, महादेव शिव ने स्वयं ना आकर जाने कहां से एक भूत को भेज दिया है, सबको परेशान कर रखा है। ओह अरे तू तो फिर से रोने लगा, देखा देखा जी अपने लाडले की करामत। हाँ हे देख देख बिले, अगर तू ज्यादा उधम मचाएगा ना तो महादेव तुझे कैलाश में नहीं आने देंगे। हाँ
3: सच कह रही हो ना माँ, शिव जी मुझे कैलाश नहीं आने देंगे तो मैं नंदी बैल की सवारी कैसे करूंगा।
0: अच्छा बच्चा बनो बेटा, तो शिव जी तुझे खुद वहां ले जाएंगे, खूब प्यार करेंगे, समझा। अच्छा अच्छा अब चल, तो चल भीगे कपड़े बदल ले। हाँ चल चल बेटा चल चल, आजा आजा आजा आजा, चल चल।
4: तुम दोनों माँ बेटे की बातें तुम दोनों ही जानो, और जाने तुम्हारे शिव जी। भाई मैं तो चला।
2: नरेंद्रनाथ सबके प्रिय थे। मोहल्ले के धनी निर्धन सभी परिवारों के साथ उन्होंने संबंध स्थापित कर लिया था। यदि उनके परिचितों में से किसी लड़के के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती तो उसे सांत्वना देने वे ही पहले रहते थे। हर घर में आना जाना उनके परिवार जनों को पसंद ना था। एक दिन,
5: ए ए ए बिले, क्यों रे बिले, तू कहाँ गया था? तेरी माँ तुझे ढूंढ रही थी।
3: अरे मैं तो देवू के घर गया था, आपको मालूम नहीं पड़ा क्या? आज देवू के दादाजी गुजर गए। देवू बहुत रो रहा था, उसी के साथ बैठा था।
5: हे भगवान, इस लड़के को जात पात का कोई ध्यान नहीं है। तूने देवू के दादाजी के शव को छुआ तो नहीं? हे ईश्वर,
3: छुआ नहीं, सब दादाजी को आखिरी बार प्रणाम कर रहे थे, सो मैंने भी किया।
5: तूने प्रणाम किया? चल आज तेरी अच्छी पिटाई होगी, चल माँ के पास।
3: आप मुझे डांट क्यों रहे हैं? देवू मेरा दोस्त है, उसके दादाजी को मैं भी दादाजी कहता था, और दादाजी को प्रणाम करने में क्या बुराई है? माँ ही तो कहती है बड़ों का आदर करना चाहिए।
5: अरे अरे अरे अरे अरे, इस मलिच्छु को कौन समझाए? चल चल, तू तो अंदर चल, फिर देखना क्या होता है तेरा। ए ए ए, ए, ए किसी चीज को छूना मत, पहले नहा ले, चल पहले नहा।
3: ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, आपको छू दिया, क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं हुआ, आप तो वैसे ही हैं।
5: हाय हाय हाय हाय हाय, ये क्या कर दिया? मैं तो नहा धोकर घर से बाहर जा रहा था, छू दिया ना, अब फिर से नहाना पड़ेगा। राम राम राम।
3: तो जाइए फिर से नहाइए।
5: राम राम राम राम राम।
1: और नरेंद्र हंसते हुए अंदर चले गए। चाचा जी के गुस्से का अंदाजा तो आप खुद लगा सकते हैं।

0: नरेंद्र बचपन से ही बहुत हाजिर जवाब और शरारती थे, पर उनकी बाल सुलभ शरारतों से अधिकतर लोगों का मनोरंजन होता था। उनकी मजेदार बोलचाल और मनगढ़ंत किस्से कहानियों को सुनकर गंभीर स्वभाव वाले बड़े बूढ़े भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उनके दोस्त तो नरेंद्र से कहानियां सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, और नरेंद्र भी मौका मिलते ही कहीं भी मंडली जमा कर बैठ जाते और दोस्तों को तरह तरह की कहानियां सुनाते। रामायण महाभारत की कथा कहानियां तो सुनाते ही थे, साथ ही अलिफ लैला की कहानियां, ईसप की नीति कथाएं तथा देश विदेश की परिकथाएं भी सुनाया करते थे।
1: नरेंद्र को किसी प्रकार का संकोच न था। अगर कोई कहानी याद न आती तो मनगढ़ंत पात्रों की काल्पनिक कहानियां दोस्तों को सुनाया करते। उनकी काल्पनिक कहानियां भी इतनी मजेदार हुआ करती थीं कि दोस्त यह समझकर भी कि नरेंद्र झूठी कहानियां सुना रहे हैं, घंटों मंत्रमुग्ध हो सुनते रहते थे। बचपन से ही उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत थी।
0: जीवन के आरंभ में ही देखा गया था कि अपने हम उम्र साथियों के साथ झुंड बनाकर क्रीड़ा कौतुक करते समय नरेंद्र ही इन सब आयोजनों के नेता होते। नेतृत्व सुलभ गुण तब से ही उनके चरित्र में प्रस्फुटित होकर धीरे धीरे समुचित रूप धारण कर रहा था।
1: उन दिनों पाठशाला में मकर संक्रांति के दिन गंगा की वंदना के गीत गाकर गंगा के तट पर जाकर पूजा अर्चना करने की प्रथा थी। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ बाबू मकर संक्रांति के दिन गुरुजी एवं छात्रों को नई धोती कुर्ता दिया करते थे, एवं गुरुजी छात्रों को गाजे बाजे के साथ गंगा पूजा कर आने की अनुमति देते थे।
0: लौट कर आने पर प्रथा अनुसार घर पर बनी मिठाइयां खाने को मिलती थीं। नरेंद्र ने पिता से छात्रों के साथ गंगा पूजन की अनुमति मांगी। बाजा गाजा और पताका आदि की व्यवस्था पिता के खर्चे से सहज ही हो गई। अतः गंगा की महिमा गाते हुए बच्चे जुलूस बनाकर गंगा तट पहुंचे। वहां केले के पेड़ के छिलकों से नाव बनाकर उनमें दिया जलाकर रख दिया गया और फूल मालाओं से सजाकर नावों को गंगा जल में बहा दिया गया।
1: छोटे छोटे नाव धीर गति से गंगा में बहने लगी। संध्या के झुरमुट अंधेरे में जगमगाती हुई नाव दियों के साथ साथ धीरे धीरे लहरों के साथ झूमती हुई सागर की ओर बढ़ चली। बच्चे ढोल मंजीरों के साथ गाते रहे।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी, मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा आनंद लुटा।
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: FM, रेडियो मधुबन में आप सब जुड़े हुए हैं आरजे शांतनु के साथ। नमस्कार साथियों, मैं आज फिर से आपके सामने आया हूँ यशस्वी भारत कार्यक्रम में एक नई हस्ती के साथ। एक ऐसी हस्ती जो भारत को न केवल अपने में समाये हुए हैं, लेकिन भारत में जिनकी आवाज बिखरी हुई है। एक ऐसी बेटी भारत की जिसने न केवल अपना नाम भारत के साथ अमर किया, लेकिन भारत की कई कई कई बेटियों को आवाज दी है। जब मैं इनका नाम कहूंगा साथियों, आप कहेंगे अरे इनके बारे में तो हमें पता है, लेकिन एक ऐसा भी दौर था जब ये व्यक्ति गुमनाम थे और ये अपने काम में बहुत मशगूल थे। दूसरों को सामने लाना मीडिया पे ये इनका काम था। आज मीडिया इनके काम को परिचय देती है, आज मीडिया इनको पहचानती है। हम एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ आज मिलने जा रहे हैं साथियों, जिन्होंने ना केवल समाज के बच्चों को बल्कि बुजुर्गों को भी कई ऐसी गहन बातों से रूबरू कराया है, जो केवल हम ना केवल भूल गए थे, लेकिन उनको भूलने की वजह से अपनी दिशा को भूल चुके थे, दशा को भी भूल चुके थे। आज रेडियो मधुबन के स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेसमी वर्कशॉप के मैनेजिंग डायरेक्टर, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सोनाली खान जी। सोनाली खान जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत भी।
4: शांतनु भाई, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस तरह से मेरी परिचय दी। मुझे ये सुन के कैसा लग रहा है कि मतलब ऐसे मैं भी हूँ। मतलब काम में हम इतने मशगूल रहते हैं कि अपने बारे में ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं, तो ये सुन के अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा हम्बल भी लग रहा है
3: जी। आई थिंक नम्रता जो है वो गुण है गुणियों का, और आप जैसे गुणी व्यक्ति को जब भी हम मिलते हैं, हमने देखा है कि नम्रता एक ऐसा गहना है जो आप हमेशा पहने रहते हैं, और ये बहुत सीखने की बात है साथियों। आज की चर्चा में भी हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति जो है अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से न केवल आगे बढ़ सकता है, लेकिन कईयों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। सोनाली जी, आपकी जर्नी कुछ ऐसी ही रही। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे जब मोस्ट हेल्पिंग किड का सर्टिफिकेट मिला स्कूल में, तो मैं बस सोचती रही इसका क्या फायदा है। तो आज आप इस बारे में क्या सोचते हैं?
4: हाँ, जैसे शांतनु भाई, आपने छोटे में सबको कुछ और लाइक रेस में पहला मिल रहा है या ग्रेड पहला, यू नो, क्लास में कोई फर्स्ट प्राइज मिला है कोई सब्जेक्ट में, तो मतलब सब उसको वाह वाह देते हैं, और ये मुझे हेल्पफुल चाइल्ड का मिला था, तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आया और मुझे इतना कुछ ये खास भी नहीं लगा कि नहीं क्या है। तो मैं आज जब उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद वो एक मेरे लिए एक पथ प्रदर्शक ही था कि ऐसा ही, मतलब मैंने जर्नलिज्म का काम किया, मैंने बहुत कुछ किया, पर जब मैं ऐसे अपने ऐसे एक जीवन के एक ऐसे मोड़ पे पहुंची जहाँ मैं एक संस्था में काम करना, मैं महिलाओं के लिए काम करना मैंने शुरू किया, तो मैंने ये सोच के अच्छा अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ इसको, अगर ठीक नहीं होगा तो कोई बात नहीं, है ना, कोशिश तो कर रही हूँ मैं। पर जब मैंने जब वो काम शुरू किया तो मुझे उसमें इतना जोश मिला, मुझे इतना उसमें एक दिशा मिली, जो मैं अभी सोचती हूँ कि शायद वो जो पहला पुरस्कार था वही एक मेरे लिए एक पथ प्रदर्शक था जो मैंने शायद पहचाना नहीं, और अब जाके मैं ये काम में जुड़ी हूँ। पर एक तरह से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो जिंदगी के जितने जो मैं कहती हूँ एक तरह से जो हम जिस तरह से झेलते हैं उसको, खुशियां भी गम भी, वो भी मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं आज वहां तक पहुंचूं, जिससे मैं ये काम को मैं एक अपने इस तरह से करूं जिसमें मेरा जो एक जो जीवन का जो एक्सपीरियंस है या जो जीवन में मैंने सीखा है, जो दुख सुख सब मिला है मुझे, वो ही लेके मैं आगे बढ़ पाऊं। तो वो मुझे करना जरूरी था, और फिर ही मैं इस मोड़ पे आई जहाँ पे मैं ये काम अब कर पाती।
3: सोनाली जी, बचपन में ऐसा क्या किया था आपने कि आपके शिक्षकों ने पहचाना कि इस बच्चे को हमें मोस्ट हेल्पिंग चाइल्ड का खिताब देना चाहिए?
4: मुझे कुछ याद नहीं है, मैं बहुत छोटी थी। शायद मैंने बच्चों को क्लासरूम में मदद किया, या कोई गिर गया था उसको उठाया, या किसी को मैंने मतलब कोई कहीं जाना था उसको ले गई, मतलब छोटी छोटी चीजें थी। ये हेल्पफुल चाइल्ड का अवार्ड कोई एक खास चीज के लिए नहीं मिलता, जैसे कोई ब्रेवरी अवार्ड है, जैसे हमारे देश में कोई एक बड़ा काम किया है उसी के लिए आपको ये पुरस्कार दिया जाता है। ये रोज की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उसमें शायद इन्होंने मुझे ये पहचाना कि एक कोई बड़ा काम नहीं था ये, मतलब ऐसा अवार्ड होता है जो शायद पूरा साल वो बच्चे को देखते हैं कि बच्चा कैसा क्या कर रहा है, उसी के बेसिस पे मिला था। तो ये कोई एक बड़ी चीज नहीं थी, छोटी छोटी चीजें थी शायद, अब मुझे ये बिल्कुल नहीं है।
3: एक्चुअली मुझे आपके इस बात से ये समझ में आता है, और मैं समझता हूँ मेरे श्रोता साथियों को भी ये चीज समझ में आ रहा है कि आप पे हमेशा किसी न किसी की नजर है, और जो हम कर रहे हैं वो कोई ना कोई सीख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसको जहन में रख रहा है और ध्यान में रख रहा है, और क्या पता कब वो बात हमको एक नया जीवन शुरू करने के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाए। जैसे एक छोटे बच्चे को नहीं पता कि जब वो अपने साथियों को मदद कर रहा है कक्षा में, तो शायद उसके टीचर्स उसको देख रहे हैं या कोई और उसको ऑब्जर्व कर रहा है। अगर हम में से हर कोई इस चीज को ध्यान कर ले कि भाई एवरीडे लाइफ, रोज की जो हमारी दिनचर्या है जीवन की, अगर उस पे हमारा गौर रहे तो क्या पता देयर इज समवन हु इज वॉचिंग इट, और क्या पता इट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू शिफ्ट माई लाइफ। तो
4: शांतनु भाई, एक जो अभी जो आप ये कह रहे थे ना, जो ये सुन के मुझे भी अभी ऐसा ही लगा कि एक मुझे एक कहावत की याद आ रही है कि आप ऐसा काम मत करो जो आप किसी के सामने कर नहीं सकते।
3: बहुत बढ़िया जी।
4: तो मतलब आपके ऊपर नजर की बात कर रहे हैं, तो आप हमेशा ऐसा करो जिससे आपको शर्मिंदा ना होना, है ना
3: जी? बिल्कुल। तो सोनाली जी, मुझे यहाँ पर आगे की आपकी जर्नी के साथ जोड़ना है, जहाँ पर आप एज अ जर्नलिस्ट काम करना शुरू करते हैं इतनी सारी विधाओं में, और आप शुरू से बहुत अच्छे स्टूडेंट भी रहे हैं, लेकिन जर्नलिज्म ने क्यों आपको अपनी तरफ खींच लिया?
4: शांतनु भाई, एक चीज मैं बड़ा मजाक कहूंगी, मेरे ना मुझे लॉयर बनना था, मुझे जर्नलिस्ट नहीं बनना। तो मैं बचपन से, जब आप लोग एसेज लिखते हैं स्कूल में क्लासरूम में, वो ना ऐसे लिखने बोलते हैं, तो मैं लिखती थी मुझे बड़े होके लॉयर ही बनना है, और मैं उसी का, मेरे दादाजी वो भी लॉयर ही थे, तो बड़ा शौक था कि लॉयर बनेंगे। पर पता नहीं जिंदगी का मोड़ किस तरह ले गया मुझे कि जाके मैंने जर्नलिज्म किया। और एक दिन मैं ऐसे दोस्तों से बात कर रही थी कि करना है कुछ, अभी पॉलिटिकल साइंस में एमए भी कर लिया था, तो मैंने सोचा कुछ करना है, और मेरे पढ़ाने का मन नहीं था, मुझे टीचिंग करने का मन नहीं था। तो उन्होंने कहा, देखो एक मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये टेलीविजन जर्नलिस्ट की नौकरी है, करना चाहोगी, अच्छा लिखती हो, आ जाओ। मैंने कहा चलो देख लेते हैं कैसा है, कभी किया नहीं था। तो वहाँ पहुँच गए, और उसके बाद दिल लगा के काम किया, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हर दिन एक नई कहानी, हर दिन एक नया मोड़, और लोगों से मिलना, ऐसा एक जोश था कि रोज एक नया न्यूज निकालना, उसका पूरा विचरण देना, एनालिसिस करना, और एक तरह से दिमाग भी चलता है कि आज जो अगर मैं कहूँ मेरा एक तरह से एक एनालिटिकल स्किल है, मतलब एक सोचने का तरीका है जो लॉजिकल है ना शांतनु भाई, वो शायद उसी में मेरी ट्रेनिंग। तो चाहे वो बिजनेस जर्नलिज्म थी या एक तरह का मतलब काम था, पर जो एक सोचने का तरीका, एक लॉजिकल माइंड, टाइम से काम करना, क्योंकि मतलब एक चीज मुझे उसमें बड़ा लगता था कि हर वक्त टीवी पे कुछ आता है, तो ऐसा नहीं है कि काला है ना, हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, तो टाइम से आपको खत्म करना पड़ेगा था। तो ये सारी चीजें मतलब वहीं से, मतलब एक ट्रेनिंग जैसी थी, तो कि उसको निरंतर काम करना है, टाइम से करना है, पूरे जोश से करना है, पूरे दिमाग से करना है, तो नहीं तो आपका न्यूज भी गलत निकलेगा, आपका काम भी सही नहीं होगा, आप उस मतलब, और पूरे शरीर के एनर्जी से करना, कि पूरे दिन भाग दौड़ था, ऐसा नहीं है कि हम एक कंप्यूटर पे बैठे हैं
3: जी।
4: तो ये सारी चीजें एक तरह से मैं अब सोचती हूँ, अब तो एक संस्था भी चलाती हूँ, तो वहां मेरी जो ट्रेनिंग हुई है वो एक जबरदस्त ट्रेनिंग थी।
3: मुझे एक चीज यहाँ पर जानने का मन कर रहा है कि आपको कभी ऐसा पीछे मुड़ करके लगता नहीं है कि वकील ही बनते तो अच्छा था, इसमें तो बहुत ज्यादा मेहनत है?
4: एक मुझे, मैं बहुत सोच रही थी एक दिन, हमने किसी से बात हो रही थी, मेरा मन बहुत था वकील बनने के लिए, देखो मैं कहाँ ये एनजीओ में कहाँ काम कर रही हूँ, इसलिए कोई कुछ कनेक्शन नहीं दिख रहा है, कोई एक दूसरे से जुड़े नहीं है। तो उसी ने मुझे कहा कि उसमें भी हम समाज के लिए काम करते हैं, जस्टिस के लिए काम करते हैं, है ना,
3: न्याय के लिए,
4: तो एक तरह से वही कर रही हूँ, है ना। तुम कोई दलील नहीं कर रही हो, तुम कोर्ट में नहीं हो, पर अगर समाज को ही तुम एक कोर्ट बना दो और उसमें तुम एक तरह से उसी जस्टिस के लिए काम कर रही, तो तब मुझे लगा कि शायद हाँ इसमें कनेक्शन है।
3: इसका मतलब न्याय हर फील्ड में है और हर फील्ड में उसका खनन हो भी रहा है, इसलिए हर फील्ड में एक व्यक्ति को सोनाली खान जैसा बनना पड़ेगा, ताकि हर फील्ड में हम न्याय को वो दर्जा, वो स्थान दे सके जो उसके लिए यथोचित है। लेकिन सोनाली जी, जब आप इस तरीके के मुहिम से जुड़ते हैं जहां पर चारों तरफ आपको एक नेगेटिव एनर्जी का फोर्स दिख रहा है, जहां पर आप अकेले एक कैंडल लेकर के चल रहे हैं, उसके लौ को आपको बुझने नहीं देना है और आप चाहते हैं कि कैंडल कईयों के कैंडल को जलाए, तो उस टाइम पे ये जो हवाएं चल रही होती हैं, जो आपके अगेंस्ट होती है, उनसे लड़ने के लिए सबसे बड़ी ताकत कौन सी थी आपके अंदर?
4: मुझे कई लोगों की बातें याद आ रही हैं, जैसे जैसे आप मुझे बोलते हो ना, कि कोई मुझे एक फ्रेंड थी, वो अमेरिकन थी, तो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि हम लोग को हर तरह से एक पुशडाउन होता है ना, कि आपको नीचे धकेल दिया जाता है या आपको पीछे धकेल दिया जाता है, आप कोशिश तो जारी रहती है, तो वो जो वापस आके लड़ने की जो शक्ति है वो अंदर से आती है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहती थी तुम्हें ये शक्ति पता नहीं कहाँ से आती है, हर चीज नेगेटिव है या प्रॉब्लम आता है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं परफेक्ट हूँ या मेरे में सारे गुण है, मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं सही काम हर चीज सही करती हूँ, कोशिश तो है, पर बहुत सारी ऐसे समस्याएं आती है जो जूझने में काफी मतलब हताश कर देती है। तो वो कहती थी कि तुम ये क्या है जो हर बार तुम जैसे वो बॉल होता है ना, फट से वापस आ जाता है, ये क्या है, पता नहीं ये कहाँ से आता है शांतनु भाई, ये मैं खुद भी नहीं समझती हूँ, कितने मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्याएं आती हैं, नेगेटिव एनर्जी आता है, पता अंदर से ही कुछ, जब मैं सुबह उठती हूँ या इसके बारे में सोचती हूँ, तो कहते नहीं, थोड़ा सा टाइम लेके खुद कुछ मैंने सोचने से लगता है कि नहीं ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए। कहाँ से आता है मुझे कुछ भी पता नहीं, पर है,
3: बिल्कुल है, और ये चीज तो हम सबको पता भी है, बस ये जानने की कोशिश थी कि व्हाट इज योर सपोर्ट सिस्टम, आपका आधार क्या है। कईयों के लिए वो आधार जो होता है उनकी विद्या होती है, उनकी पढ़ाई होती है, कईयों के लिए वो आधार उनका लक्ष्य होता है, कईयों के लिए वो आधार उनका फैमिली होता है, कईयों के लिए वो आधार उनके दोस्त या कुछ भी एक आधार हो सकता है।

0: जो एक आपके प्रति उनकी जो इच्छाएं हैं कि आप कुछ करके दिखाएंगे, ये सारी चीजें हम लोगों को आगे ले जाता है। पर मैं कभी भी ऐसे भी सोचती हूँ कभी बैठे बैठे कि मैं ये करती क्यों हूँ, है ना, मुझे क्या धक्का देता है, क्या आपसे कोई मुझे पहचानेगा, अवार्ड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, पहचान मिलेगी, ये भी अच्छा लगता है, इंसान है आखिर। पर एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जिस दिन मेरे पास काम नहीं है वो उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता।
1: बिल्कुल।
0: तो फिर अगर कोई कर्म नहीं है, कुछ जो जोश मुझे काम से मिलता है, नहीं तो मुझे लगता है कि मैं कैसे बैठी हूँ, मैं टीवी देख रही हूँ या ऐसे ही कुछ कर रही हूँ। तो जब काम होता है तो बहुत जोश आता है, तो एक तरह से सबका प्यार, सबका आशीर्वाद वो तो साथ में ही है। पर इसी तरह से मैं सोचती हूँ कि जिस दिन काम नहीं है उस दिन मैं भी नहीं।
1: तो इसका मतलब आप कर्म को ही अपना आधार मानते हैं
0: एक तरह से। हाँ।
1: और जब कोई व्यक्ति सतत कर्म करने में जुटा हुआ होता है तो उसका फल भी उसके पास आता रहता है। जैसे कि आपने कहा कि सहयोग, लोगों का आपके प्रति समझ, साथ ही साथ जो रिकॉग्निशन है, जो पुरस्कार है, ये सब कुछ फिर धीरे धीरे आने लगता है। और ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को ये बात समझा देता है कि आप जो कर रहे हो राइट है और आगे करते भी रहो। और इसी सिलसिले में फिर आपको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। भारत ने आप में वो चीज देखा जो भारत को लगा कि भाई ये मेरी बेटी है। बेटी तो हर कोई है, बच्चे तो सभी हैं भारत के, लेकिन फिर भी जो उस वर्ष जिन लोगों में भारत ने देखा कि भाई ये है वो मेरी बेटी जिसने मुझे वो स्वरूप या मेरा वो परिभाषा को सार्थक किया है जिसकी वजह से मैं यशस्वी हूँ। तो जब आपको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया तब का मैं आपसे आपका अनुभव सुनना चाहूंगा कि क्या था वो फीलिंग, कैसा लगा आपको, और वॉज इट लाइक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी को दे दिया जाता तो कहते भाई तुम्हारे लिए इतना ही है। सो और वॉज इट कि नहीं मुझे तो अब और करना है, क्या था आपके अंदर चल रहा उस समय?
0: एक तो दो चीजें रही इसमें। एक तो जो राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलना, वो अशोका हॉल में खड़ा होना, जो कभी हम गए नहीं थे, चाहे ना बाहर से देखा था, हम दिल्ली में रहते हैं तो वहां से गाड़ी से हम निकल जाते हैं, और हमारे जब गणतंत्रता दिवस होती है तो पूरा पीछे रहता है वो। तो मैं जो कह रही थी कि वो अशोका हॉल में खड़ा होना, वहाँ पे राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलना, वो एक और ही चीज है। मतलब उसमें आप, मैं क्या कहूँ, हम लोग को बिठाया गया था और वो ना पूरा मिलिट्री आर्मी में वो लोग मैनेज करते हैं। मतलब वो अगर आपको 8:10 बोले, है ना, 8:10, तो 8:10 पे ही वो होगा, ऐसा उनका मतलब प्रिसिशन है। तो ठीक है, हमें बुलाया गया, वहां बिठाया गया, एक बार हमको बोला गया कि इधर ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको खड़ा होना पड़ेगा, राष्ट्रपति जी आएंगे, वो बिल्कुल बचेगा, उनको इतना मिनट लगेगा आने के लिए। हमने सोचा कि अच्छा अच्छा होता है ऐसे, पर ठीक उसी टाइम पे बिल्कुल बजा, राष्ट्रपति जी आए, और मतलब 10 मिनट का था तो 10 मिनट में ही खत्म हुआ। तो वहां बैठ के मुझे लगा कि यही हमारा भारत है, यही हम इस दिशा में हमें जाना है। वहां राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला, उसका फोटो मैं अभी भी रखती हूँ, उसको देखती हूँ, और एक तरह से ये भी लगता है उसके बाद की एक जिम्मेदारी भी सौंपा गया है कि आगे इसको करते जाना है ना, ये पुरस्कार इसी पे रुकना नहीं है, आगे चलते जाना है। मतलब हम इंसान हैं, आगे पीछे तो होता है, ऊपर नीचे भी समस्याएं आती है, खुशियां आती है, पर आगे चलते जाना। और उसके बाद एक और चीज लगता है कि अब कोई पुरस्कार जरूरी भी नहीं है, अब ये मिल चुका है, इसके बाद अब कुछ मतलब और कुछ जरूरी नहीं, क्योंकि अभी भी मुझे एक पुरस्कार अभी किसी ने दिया, मुझे लगा अच्छा लगा, पर ये लगा कि भी ठीक है, ये नहीं है कि वो कुछ कम है, वो भी बड़ा, बहुत बड़ा है। आपसे बात करना, आज भारत की बेटी की तरह आपने मुझे पहचाना, आज पहली बार ये कोई कह रहा है मुझे, आज तक किसी ने कहा नहीं, है ना, डॉटर ऑफ इंडिया या भारत की बेटी है तो हम सभी। तो जिस तरह से आपने मुझे ये एक पद जैसा ही दे दिया है, आज तक मुझे ऐसा किसी ने कहा नहीं, तो ये भी सुन के अच्छा तो लग रहा है, पर हाँ एक तरह से ये भी लग रहा है कि

0: अपनी कोशिश तो और भी करनी पड़ेगी
1: जी
0: ये पदक मिलने के लिए।
1: तो जैसे आपने बताया कि एक तो पुरस्कार मिलता है उससे एक तृप्ति मिलती है, एक संतुष्टता होती है, बट साथ ही साथ एक हौसला भी मिलता है कि भाई अभी आगे और करना है, क्योंकि आपके जैसे ही कई लोग होंगे जो इस फील्ड पे सेवा कर रहे हैं, और उस सेवा को करते हुए जब उनके बीच में से किसी को जब पुरस्कृत किया जाता है तो उनके अंदर भी हौसला आता है कि जो हम कर रहे हैं ये सच में भारत की आवश्यकता है, आवश्यकताओं में से एक है। तो श्रोता साथियों, मैं यहाँ पर बीच में आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप सबने कई बार टीवी पे सुना होगा गली गली सिमसिम, गली गली सिमसिम। ये जो म्यूजिक है अपने आप में एक हॉन्टिंग म्यूजिक मैं कहूंगा, क्योंकि हम में से कोई इसके धुन को भूलता नहीं है, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि गली गली सिमसिम कार्यक्रम के पीछे भी जो मास्टर माइंड कहेंगे वो हमारी सोनाली बहन ही है। तो सोनाली जी, गली गली सिमसिम कैसे शुरू हुआ?
0: मैं तो संस्था से 4 साल हुए जुड़ी हूँ, तो मैं इसका पूरा कोई क्रेडिट तो नहीं ले सकती। गली गली सिमसिम 10 साल से पहले से चल रहा है
1: जी।
0: तो ये एक तरह से सौंपा गया है कि इसको आगे लेके चल, तो ये जिम्मेदारी अब मेरी है। शुरुआत तो मैंने नहीं की, पर जिन्होंने की है उनके हम आभारी हैं कि वो, मतलब ये 50 साल पहले ये संस्था बनी थी अमेरिका में। तब एक उनका जो एक सोच था कि जो बच्चे टीवी देखते और कुछ सीखते हैं, एक गाना अगर हमने टीवी में देखा वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है और हम उसको भूलते नहीं, जिस तरह आपने गली गली सिमसिम का गाना बोला। या कोई भी उस टाइम तो नहीं था गली गली सिमसिम, कोई एड्स देखते थे बच्चे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बचपन के साबुन का एड, शैम्पू का एड,
1: सितारा का जलेबी वाला एड हमेशा याद रहता है
0: हाँ, निर्मा, बोलिन, इतने सारे। अब मैं आप बोलो, मैं भी आज उनके गाना आपके लिए सुना दूं, तो बच्चे भूलते नहीं। उस सोच को लेके ये कार्यक्रम शुरू हुआ अमेरिका में कि बच्चों को टीवी के कार्यक्रम, गाने, खेल, ऐसा माहौल बनाए जिसमें बच्चे खुश हो और उसी से बच्चे और अच्छे से सीखेंगे। तो 50 साल पहले एक तरह से ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। अब हम आए हैं इस स्तर पे कि आज ऐसे हमें माहौल बनाना है बच्चों के लिए जिसमें बच्चे खुश हो और उसी से बच्चे और भी आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, और उनका जो पूरा परवरिश की बात हम करते हैं कि हर तरह से जो उनका चरित्र है वो बने, है ना। तो उसी पे हमारी जो संस्था है एसएसपी वर्कशॉप, उस पे हम फोकस करते हैं। तो जो ये जो पूरा कार्यक्रम है, और ये देश 150 देशों में फैला हुआ है, कि हम इस तरह से बच्चों को, जो आपने भी कहा शुरू में कि किस तरह से बच्चों को वो अच्छे अच्छे वैल्यूज, अच्छे जो हम कहते हैं, जिस जो हमें दिशा दिखाए, जो हमें सही रास्ते पे ले जाए, वो वैल्यूज हम किस तरह से बच्चों को सिखाए। तो यही है सेसमी का संसार।
1: ये था सेसमी का संसार। सोनाली जी, आपने जितने खूबसूरत शब्दों में सेसमी के संसार को हम सबके सामने रखा, मैं तो खो ही गया उसमें और मुझे समय का पता भी नहीं चला। लेकिन हम दोबारा आपसे जुड़ना चाहेंगे और हम दोबारा आपसे कई सारे सवालों के साथ रूबरू होना चाहेंगे। बहुत कुछ है जानने को दोस्तों, सोनाली जी के पास शेयर करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। एक और एपिसोड में यशस्वी भारत के हम मिलेंगे आपके साथ, सोनाली खान जी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए आर्ज शांतनु को, रखिए ध्यान अपना, अपने परिवार वालों का, और हाँ, देश का भी। जय हिंद, जय भारत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए 90.4 FM रेडियो मधुबन।
2: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
3: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माय सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे which will not be according to the way I want them to be. Aaj sara din, awareness and checking. Kaun zyada powerful hai? Baatein, situations or me? Kiska prabhav किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। This is my checking for today.
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो। स्वागत है आपका हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कलाएं के 5वें अध्याय में। आज हम जानेंगे वह अद्भुत कला जिसे कहते हैं गीत माधुरी। यह वो माधुरी है जिसमें श्री कृष्ण के गीतों की मधुरता ने संपूर्ण वृंदावन को भक्ति और प्रेम से भर दिया। कृष्ण के गीत केवल संगीत नहीं थे, वे आत्मा को स्पर्श करने वाले दिव्य संदेश थे। उनकी वाणी में प्रेम था, करुणा थी और भक्ति का अमृत था। जब वे गाते थे तो गोपियां, ग्वाल बाल, पशु पक्षी, यहाँ तक कि वृक्ष और नदियां भी उस मधुरता में डूब जाते थे। यही है गीत माधुरी। यह गीत केवल सुर और शब्द नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन बन जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत माधुरी का।

श्रोताओं, श्री कृष्ण केवल बांसुरी वादक नहीं थे, वे अद्भुत गायक भी थे। अनेक गीतों में प्रेम, करुणा और भक्ति की गहराई थी। जब वे गाते थे तो वृंदावन की गोपियां मंत्रमुग्ध हो जाती, गाय उनके स्वर पर झूम उठती और संपूर्ण प्रकृति उस मधुरता में डूब जाती। यही है गीत माधुरी, वह कला जिसमें गीत केवल सुर और शब्द नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य साधन बन जाता है। कृष्ण के गीत हमें सिखाते हैं कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का अमृत है जो हर हृदय की अलौकिक करता है। तो दोस्तों, सुनते हैं गीत माधुरी का दूसरा और प्यारा सुर।

तो श्रोताओं, भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण गाते थे तो हर जीव को लगता था कि यह गीत केवल उसके लिए है। गोपियां मन से मुक्त हो जाती और राधा तो उनके गीतों में इतनी डूब जाती थी कि समय और संसार का बहाने भूल जाती। कृष्ण के गीतों ने वृंदावन को केंद्र बना दिया। ये लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर का स्वर आत्मा को व्यक्तिगत रूप से छूता है। उनके गीत केवल ध्वनि नहीं थे बल्कि प्रेम और भक्ति का अमृत थे जो हर हृदय को अलोकित कर देते थे। यही है गीत माधुरी, वह कला जिसमें संगीत आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य साधन बन जाता है। कृष्ण का हर गीत हमें ये अनुभव करता है कि ईश्वर का प्रेम सर्वव्यापी है और हर जीव उनके आलिंगन में शांति और आनंद पाता है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो। तो सुनते हैं एक सुंदर प्यारा गीत।

तो श्रोताओं, गीत माधुरी हमें ये सिखाती है कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। जब हम प्रेम और भक्ति से गाते हैं तो वह गीत सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। कृष्णा का गीत हमें यह संदेश देता है कि सच्चा संगीत वही है जो हृदय से निकलकर आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके गीतों में प्रेम की गहराई, करुणा की मधुरता और भक्ति का अमृत था। यही कारण है कि वृंदावन की हर ध्वनि, हर जीव और संपूर्ण प्रकृति उनके स्वर में डूबकर दिव्य आनंद का अनुभव करती थी। यही है गीत माधुरी का सार, जहाँ संगीत केवल कला नहीं बल्कि भक्ति का मार्ग बनकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत।

भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

तो सोचो श्रीमद् भागवत में कहा गया है गायंती देवाय कीर्तन तव। इस श्लोक का भावार्थ है कि देवता भी श्री कृष्ण के कीर्तन का गान करते थे। यह हमें बताता है कि ईश्वर का गीत केवल ध्वनि नहीं है बल्कि भक्ति और प्रेम का दिव्य संदेश है। कृष्ण का कीर्तन हमें यह अनुभव करता है कि जब गीत भक्ति से गाया जाता है तो वह केवल मन को आनंदित नहीं करता बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। यही कारण है कि उनके गीतों में देवता भी रमन करते हैं और संपूर्ण सृष्टि उस मधुरता में डूब जाती है। यही है गीत माधुरी का सार, जहाँ संगीत केवल कला नहीं बल्कि भक्ति का अमृत बनकर हर हृदय को आलोकित करता है। तो दोस्तों सुनते हैं इसी के साथ गीत माधुरी का पांचवा और अंतिम सुंदर गीत।

0: चल मार्ग है। जब गीत प्रेम और भक्ति से गाया जाता है तो वह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य साधन बन जाता है। तो दोस्तों, अब हमारी श्रृंखला का अगला अध्याय होगा नृत्य माधुरी, यानी श्री कृष्ण के नृत्य की मधुरता। वह नृत्य जिसमें आनंद है, भक्ति है और जीवन को उत्सव बना देने वाली शक्ति है। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे कृष्ण का नृत्य केवल कला नहीं बल्कि उत्सव है जो हर हृदय को दिव्य आनंद से भर देता है। तो दोस्तों, सुनने ना भूले रेडियो बुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज, ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता। पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन

0: लिया जाएगा. इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी. लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ. सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी. ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें. आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू. आप सच बोलेंगे. देयर इज नो रीजन. कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। इस पूरी श्रृंखला में जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, रोज की ये मुलाकात है, ऐसा लगता है कि हम और आप, हमारी जो जीवन है वो एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन बहुत से दर्शक जो नए जुड़ रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। जिंदगी अगर हम देखें तो कई बार बहुत सी ऐसी ऑब्स्टिकल्स लेकर आती है, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस लेकर आती है जो हमें लगता है कि ऑब्स्टिकल्स हैं और हम उन्हें पार नहीं कर पाते। कई बार वो आसानी से हो जाती है, हमारा अपना मेंटल मेकअप ऐसा होता है, लेकिन कई बार वो बहुत हावी हो जाती है। तो ये जो आज से शुरू कर रहे हैं एक ऐसी बातचीत का सिलसिला जिसमें बहुत से हम सिचुएशंस को देखेंगे, जिंदगी के उन पड़ावों को देखेंगे जहां हम कहीं रुकने लग जाते हैं या उन्हें पार करते करते हम बहुत थक जाते हैं। तो क्या कोई आसान तरीका है? क्या मेरे सोच में, मेरे थॉट प्रोसेस में कुछ ऐसा बदलाव आ सकता है कि वो सिचुएशंस मुझ पर हावी ना हो? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जिस तरह से अब लोग जुड़ते गए हैं अवेकनिंग के साथ, और आप भी बहुत से लोगों के साथ मिलते गए हो, हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस?
1: लोगों का एक्सपीरियंस हैज बीन वंडरफुल, बिकॉज जहाँ जहाँ भी आप जितने भी लोगों से मिलते, तो वो नए नए अब अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज और कहीं ब्रह्मा कुमारीज परिवार का अब हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि परिवार वो ही होता है जहाँ हमारी सोच एक दूसरे के साथ मैच करती है, और इतने सारे भाई बहने, लाखों की संख्या में कहें, जो रोज हमसे मिलते रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम द्वारा, वो सोच में परिवर्तन, क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन जोड़, जो आज तक परिवर्तन की बात सिर्फ सोच में थी, वो प्रैक्टिकल में आने लगे, क्योंकि परमात्मा की शक्ति भी मिलती गई। ज्ञान तो है, सभी के पास है, चाहते भी हैं परिवर्तन करना, लेकिन सिर्फ जो हिच आ रहा था वो कहाँ, कि मुझे मालूम है लेकिन होता नहीं है। लेकिन जहाँ परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा, तो वो वाला भी जो स्टेप था वो क्रॉस हो गया, एंड देन लाइफ बिकम्स वेरी ब्यूटिफुल, बिकॉज यू आर एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू इन टर्म्स ऑफ फीलिंग। यू नो, बाहर तो जो करना चाहते हैं वो हो जाता है, लेकिन अंदर जो फील करना चाहते हैं वो कई बार कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। लेकिन क्योंकि जिन भी भाई बहनों ने अपने ऊपर वो मेहनत की है, सिर्फ प्रोग्राम देखने से ये नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रोग्राम को एक स्टडी के रूप से लिया है, एंड आई हैव मेट मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो प्रोग्राम के साथ जैसे एक नोटबुक लेकर बैठते हैं और उसको नोट्स बनाते हैं, फिर उसको स्टडी करते हैं, और फिर तुरंत उसको नेक्स्ट डे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपके अपने पर्सनल कॉम्प्लेक्सेस हैं, आप उसको अप्लाई करते हो। एंड ज्ञान इतना ब्यूटीफुल है, क्योंकि जो परमात्मा ने डायरेक्ट नॉलेज दी, तो नॉलेज तो बहुत सिंप्लीफाई हो गई, लेकिन जब तक हम उसको यूज नहीं करते तो हमें उसका बेनिफिट नहीं पता चलता। तो जिन्होंने उसको यूज करना शुरू किया, तो उनको वो बेनिफिट मल्टीफोल्ड मिला है। एक है कि आप देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, नेचुरल है, परमात्मा की दी हुई बातें हैं, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, समझ भी आ जाते हैं, लेकिन वंडर तब क्रिएट होता जब उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं। सो अगेन आई वुड से टेक इट बैक टू योर लाइफ टुमारो। यू नो, नॉट दैट आप आधा घंटा टीवी देखते हैं, आप देखते देखते कहते हैं या इट्स वेरी गुड, इट सीम्स गुड, कई बातें लगती हैं नो बट इट्स नॉट पॉसिबल, कई बातें लगती हैं येस इट्स पॉसिबल, बट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल जिसको वन ट्राई इट आउट टुमारो, एंड ट्राई करने के बाद डिसाइड करें कि पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। सिर्फ सुनने से नहीं डिसाइड करें, क्योंकि जहां इतने लोग वो पॉसिबल कर पाए हैं लाखों की संख्या में, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। इट्स जस्ट दैट मेरा वो एक स्टेप बचा है, एंड दैट इज गोइंग टुमारो एंड ट्राइंग दिस आउट। जब हम कहते हैं नॉट पॉसिबल या वेरी डिफिकल्ट, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने मन को कह दिया लेट इट बी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये इनके लिए ठीक है, ये लोग जो बात कर रहे हैं, लेकिन इनको क्या पता मेरे ऑफिस में क्या होता है, या इनको क्या पता मेरे घर में कैसे लोग हैं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उससे फिर हम अपनी ही प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगा देते हैं। सो व्हाटएवर वी शेयर इट्स फॉर एवरीवन, टेक इट बैक विद यू टुमारो, अपने ऑफिस में इसको लेकर जाएं, अपने घर पर लेकर जाएं, देन द मैजिक स्टार्ट्स। सो देन आई हैव बीन मीटिंग सो मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जिनके लिए फिर ये मैजिक हुआ है। उन वो फील करते हैं, ये उनका अनुभव है कि उनकी पूरी सोच में परिवर्तन आया, क्योंकि परिवर्तन यही हुआ कि औरों को देखने की बजाय अपने को देख, बस वो एक ही तो स्टेप चाहिए था सिर्फ, लेकिन वो अंडरस्टैंड जब हो गया तो अपने को देखना शुरू किया, अपने को देखना शुरू किया तो अपने पर काम करना शुरू किया, और वो रियलाइज हुआ ये तो इजी है।
0: और सबसे बड़ी बात वो आहा मोमेंट ये थी कि ओ अच्छा मैं अपने आप को देख सकता हूँ, यू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आपने आज जिस बात से हमने शुरू किया है कि बहुत से लोग हैं जब प्रोग्राम देख रहे होते हैं अच्छा जरूर लगता है, लेकिन यही बात है कि मेरे लिए नहीं है। तो ये इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंस आपको हम यही कहना चाहेंगे, जो नए लोग जुड़े हैं, जो बहुत वक्त से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें भी कि ये जो आने वाली जो श्रृंखला हमारी रहेगी जिस पर हम बातचीत करेंगे, आप ही की समस्याओं को लेने वाले हैं, आप ही की वो सिचुएशंस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते हुए, या अगर ज्ञान नहीं भी जान पा रहे हैं आप, नहीं

0: ही नहीं होते हैं, और मतलब हमने अपने आपको बड़े मुश्किल से एक सिचुएशन के लिए तैयार किया होता है, वो तीसरी सिचुएशन इतनी बड़ी खड़ी हो चुकी होती है कि
1: ट्रू
0: हम फिर घबराने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो प्रिपरेशन है, क्या मेरी प्रिपरेशन उतनी है या कैसे तैयारी करनी है?
1: वी कैन नॉट डिनाई कि चैलेंजेस आर गेटिंग बिगर डे बाय डे. कहीं ना कहीं हमने बहुत मेहनत करके अपने अंदर शक्ति लाई होती है वो जो प्रेजेंट परिस्थिति है उसको क्रॉस करने के लिए, और अभी वो शक्ति उतनी भरी नहीं होती कि मेरे सामने एक उससे कई गुना
0: बड़ी
1: बड़ी
0: सिचुएशन आ
1: परिस्थिति
0: जाती
1: खड़ी हो जाती है. लेट्स टेक अ लिटिल थिंग के व्हाट आर द सिचुएशंस वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि फोकस बहुत ज्यादा हमारा सिचुएशन पर होता है और सारा दिन माइंड में वो सिचुएशन की लिस्ट जैसे कि चलती ही जाती है. सिचुएशन जो हो चुकी हैं, परिस्थितियां जो वर्तमान समय मेरे जीवन में हैं, और कुछ परिस्थितियां जो मैं ऐसे ही क्रिएट करती हूँ जो मुझे लगता है हो जाएंगे,
0: हाँ होने
1: यू नो
0: वाली है
1: ये
0: आलू।
1: शायद मेरे साथ हो ना जाए, या जैसे जॉब इनसिक्योरिटी है, तो अभी जॉब है तो जॉब इज वेरी नाइसली देयर एवरी डे, बट द थॉट, सो आई एम ऑलरेडी क्रिएटिंग द सिचुएशन इवन दो द सिचुएशन इज नॉट देयर. तो नोइंग हाउ टू फेस द सिचुएशन, लेकिन वॉट आर द सिचुएशन वी आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज हमारे जीवन के दो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं. एक है मेरी पर्सनल और फैमिली लाइफ, और दूसरी है मेरी वर्क लाइफ,
0: प्रोफेशनल
1: चाहे वो प्रोफेशन है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे एक बच्चे के लिए उसकी वो स्टूडेंट लाइफ है, इट्स दैट लाइफ. तो अगर हम अपनी वर्क लाइफ को देखें, नाउ यू आंसर, आई विल क्वेश्चन यू, अगर हम अपनी वर्क लाइफ कर्म उस क्षेत्र को देखें जहाँ हम रोज कार्य करने जाते हैं, व्हाट आर द सिचुएशंस फॉर यू?
0: द टॉप चैलेंजेस और द
1: या
0: सिचुएशंस।
1: सिचुएशंस चैलेंज, उसको चैलेंज बोले, प्रॉब्लम बोले, सिचुएशन बोले, व्हाट एवर, बिकॉज सिचुएशन तो वही है, अब आप उसको किस रूप से देखने वाले हो वो डिपेंड करता है.
0: सी, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते, मतलब लाइक यू आर आस्किंग मी,
1: नो, इन जनरल
0: जो हाँ
1: फॉर
0: मतलब
1: एनीबडी
0: जनरली,
1: वर्क लाइफ,
0: हाँ
1: या
0: जो अगर एक मीडिया पर्सन के रूप में भी, तो ये कि आई एम ए फ्रीलांसर। सो रिसेशन का ये दौर जहाँ ऑलरेडी जिनकी फिक्स जॉब्स हैं
1: ट्रू,
0: उनको प्रॉब्लम आने वाली है, तो आई हैव दिस कंटिन्यूअस थिंग दैट इट्स ओके राइट नाउ, आई हैव वर्क, बट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, बिकॉज हाउ रिसेशन इज गोइंग टू हिट, रिसेशन कैसे हिट करेगा मीडिया को हम नहीं जानते
1: हमें
0: हैं
1: नहीं पता.
0: अपने
1: एंड इट्स
0: पर।
1: नॉट नेसेसरी मीडिया, इट्स फॉर एवरीबडी.
0: हाँ
1: लाइक इफ यू लुक एट इट इवन ग्लोबली, शायद ही कोई ऐसा देश है अभी जो इससे हिट नहीं हुआ है, शायद ही कोई ऐसा लेवल है सोसाइटी में जो इससे हिट नहीं हुआ है. चाहे आप, यू आर टॉकिंग अबाउट द टॉप लेवल ऑफ सोसाइटी, और यू आर टॉकिंग एब्सोल्युटली द सिंपल लेबर, इवन अ लेबर गोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क टूडे इज स्टक, यू नो. तो आप एक पूरे स्पेक्ट्रम को कवर कर रहे हैं जिसमें जॉब, रिसेशन, फॉर आर्थिक परिस्थिति.
0: बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात बहुत से लोगों के साथ ये है कि मैंने अपना कंफर्ट जोन उसके साथ कर लिया।
1: दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो गई, जॉब इनसिक्योरिटी
0: अच्छा,
1: हो
0: और
1: गई,
0: फिर मेरा जॉब जहाँ है वो बहुत कुछ मेरे बॉस पर डिपेंड कर रहा
1: तो माई बॉस,
0: है।
1: माई कोलीग्स, दीज आर ऑल द चैलेंजेस. देन ट्रांसफरेबल जॉब, चेंज ऑफ योर होल फील्ड, कई बार आपको एक जगह से उठाकर एकदम दूसरे क्षेत्र में डाल देते हैं. सो दीज आर चैलेंजेस एट वर्क, चैलेंजेस एट होम.
0: ओह, यू आस्किंग मी
1: नो, एवरीवन.
0: पर्सनल, बेसिकली बहुत ज्यादा सिचुएशंस। अगर घर पे देखें तो बच्चों को क्या हम सही परवरिश
1: दैट्स
0: दे
1: अ
0: पा
1: वेरी
0: रहे हैं,
1: बिग
0: कि
1: थिंग
0: मेजर।
1: इन मेनी प्रोग्राम्स. वेर एवर आई आस्क्ड पीपल व्हाट्स योर टॉप कंसर्न, कहते हैं पेरेंटिंग. ऐसे पेरेंटिंग जो कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हुआ करता था, आज सबसे बड़ी
0: क्वेश्चन मार्क,
1: चिंता का विषय
0: क्वेश्चन
1: बन
0: मार्क
1: चुका
0: लगा दिया हमने
1: है.
0: ऊपर,
1: यस,
0: क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, इतनी सारी बातें हो रही होती हैं, पीयर प्रेशर बच्चे के ऊपर भी है, हमारे ऊपर भी है, बच्चे के करियर को लेकर फाइनेंशियल जो चीजें आएंगी वो एक बहुत प्रेशर लेके रखते हैं पेरेंट्स का, आजकल का जनरल जो ये है। मेरे लिए भी अगर मुझसे पूछो तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे सामने। देन रिलेशनशिप्स, इफ यू आर ए सिंगल
1: रिलेशनशिप्स,
0: पेरेंट, इफ यू आर, यू नो, इवन इफ बोथ द पेरेंट्स आर देयर, कोई पेरेंट बाहर गया हुआ है विदेश में, मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, और वो सिंगल पेरेंटिंग में
1: डिवोर्स
0: जो,
1: केस भी बहुत बढ़ गए.
0: हाँ मैक्सिमम ये चीजें जो होती जा रही हैं,
1: डिवोर्स है, सेपरेशन है, डेथ है,
0: और उसका पेन।
1: तो वो तो फिर मेरा रिस्पॉन्स है. लेकिन सिचुएशन जब मेरे सामने आके खड़ी होती है, एन अनटाइमली डेथ, अ डेथ ऑफ अ चाइल्ड किसी पेरेंट के लिए, या डेथ ऑफ एनी फैमिली मेंबर, एक डेथ तो एक डेथ है ही, विच कम्स एज अ वेरी बिग सेटबैक, जिसमें हमें लगता है कि ये परिस्थिति, मतलब मेजोरिटी पीपल आज कहते हैं, स्पेशली इफ इट इज डेथ ऑफ अ चाइल्ड और अ स्पाउस, अब मेरे जीवन जीने का तो कोई पर्पस ही नहीं रह गया, यू नो. सो दैट सिचुएशन इज

0: नॉट अ सिचुएशन बट इट्स फॉर मेनी पीपल एंड ऑफ एवरीथिंग.
1: यस,
0: क्योंकि हम समझते कि वहां तो एंड हुआ ही हुआ उनके लिए, लेकिन ये मेरे लिए भी दी एंड है. इसके बाद मेरे जीवन जीने का कोई पर्पस नहीं है, मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है. यू नो द वे पीपल से टू देमसेल्व्स, हाउ कैन आई बी हैप्पी, यू नो आई एम और आई एम नॉट बी हैप्पी, तो इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज मैं खुश हो ही कैसे सकता हूँ, मुझे खुश रहने. सो सिचुएशन, सो डेथ, डिवोर्स, रिलेशनशिप क्राइसिस, पेरेंटिंग, कई बार चेंज ऑफ सिटी, आपको आप बहुत समय से यू नो एक जगह पर सेट हैं, एक कंट्री में सेट हैं, या आप एक सिटी में सेट हैं, एंड सडनली
1: यू हैव टू गो,
0: पीपल आर नॉट एबल टू टेक.
1: और वो एकदम से क्या होता है, सिचुएशन आती है तब तो आप हेड ऑन फेस करते हैं, लेकिन जो उसके बाद का डिप्रेशन सीप इन करता है, ये मेजर प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है.
0: तो सिचुएशन उस टाइम नहीं है ना सिर्फ, वो एक सिचुएशन अब
1: लंबा, हाँ
0: लंबा प्रोसेस है. तो अब अगर हम इन सारी परिस्थितियों को देखें, वर्क पे हमने देखा फाइनेंशियल, जॉब, बॉस, रिलेशनशिप्स, घर पर हमने देखा अगेन रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग, डेथ, डिवोर्स, शिफ्टिंग, व्हाटएवर. इन सभी परिस्थितियों में अब आप ध्यान से आंसर करना, आपके आंसर पर सब कुछ डिपेंडेंट है. इन सभी परिस्थितियों में कौन सी एक चीज कॉमन है?
1: मैं
0: तो कॉमन है. क्या हो रहा है इस हर परिस्थिति में जो कॉमन है, हर परिस्थिति में है वो?
1: चेंज.
0: सी दैट्स ऑल परिवर्तन. एंड लाइक यू सेड, वी आर नॉट रेडी फॉर चेंज, क्योंकि हमारा हर परिस्थिति एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक चेंज है. यू नो द मिनट आई जस्ट लुक एट इट लाइक दैट, चेंज, चाहे चेंज इन रिलेशनशिप, चेंज चाहे फॉर मी इट कुड बी कि यू हैव चेंज्ड एज अ पर्सन. मैं आपको जो जानती थी इतने इतने साल, यू नो मेनी पीपल विल से अब तो आप वैसे रहे, तो चेंज change, या आप मेरे साथ इतने साल थे, आज सडनली आप मेरे साथ नहीं हैं, चेंज. मेरा एक जीवन जीने की एक शैली थी, एक लाइफस्टाइल था, सडनली मुझे वो क्रैश हो गया, चेंज. सडनली मुझे एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा, चेंज. सो एवरी स्टेप जो चीज मुझे हिट कर रही है वो है चेंज. एंड समवेयर मोस्ट ऑफ अस आर नॉट रेडी फॉर चेंज बिकॉज वी आर somehow, क्योंकि हमने अपने आप को उस दायरे के अंदर, चाहे वो मुश्किल वाला भी दायरा था, चाहे वो दर्द वाला भी दायरा था,
1: कभी हम एडजस्ट,
0: लेकिन हम एडजस्ट कर चुके थे, यू नो हम एडजस्ट कर चुके थे, और हमें उसके साथ जीने की एक आदत पड़ गई थी. इट वॉज माई हैबिट, इट वॉज हैबिचुअल, वेदर इट वॉज प्लेजेंट और नो वी डोंट नो, बट इट वॉज हैबिचुअल. लेकिन जहां वो चेंज आया तो इट हैज हिट मी. अब जैसे ही चेंज आएगा, Let's look at yourself. You're standing that side.
1: लेकिन change के लिए एक और चीज, जो अगर आप change की बात करते हैं तो बहुत लोग ये कहेंगे कि change for good or change for bad. You know, like is this change for good or is this change for bad?
0: Change is change. Now, how good or bad, I will make it now.
1: Yeah, that's very important.
0: जो यहाँ से change आया, see change तो situation से आ रहा है ना. Change बाहर है, या तो किसी व्यक्ति के अंदर या आपकी position. Change बाहर से आ रहा है. Good or bad किस पे depend करता?
1: मुझ पे.
0: एट एवरी स्टेप जहां आपके सामने कुछ हिट करता है, इफ यू कैन जस्ट टेक आउट वन मिनट एंड जस्ट स्टॉप एंड सी, इस समय क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है. हमेशा कुछ एक बातें होती हैं जो मेरे कंट्रोल में है, कुछ एक चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है. डेथ, डिवोर्स, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, एनीथिंग माई कंट्रोल
1: नहीं.
0: वॉट इज इन माई कंट्रोल, चेक. फाइनेंशियल क्राइसिस, माई कंट्रोल. जॉब चला गया आज, माय कंट्रोल नो. तो मेजोरिटी 95% से ज्यादा परिस्थितियां जो आपको मिलने वाली हैं, जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कंफर्टेबल ही हो जाते हैं ना, उसको आप कंट्रोल कर लेते हैं,
1: उसको हमें पता भी नहीं चलता कि वो चेंज हुआ है.
0: एक ट्रैफिक जैम में भी अटकना एक परिस्थिति आज, कहना आप कहते हैं इतनी मुश्किल, इतने हाईवेज बने बने, जब तक बने तब तक वी आर स्टिल अगेन स्टक. सो अगेन यू आर स्टक इन दैट, बट इन योर कंट्रोल, not in your control. What is in my control in every case? Kya control mein hai aur kya control mein nahi hai?
1: Even my thought process, see, I would have said,
0: yes.
1: Lekin wo bhi to control mein nahi hota.
0: हाँ.
1: क्योंकि वो जब हमें टेक ओवर कर जाता है, जैसे स्पेशली अगर किसी का जॉब छूटा, आई नो somebody जिनको सडनली शी वॉज टोल्ड कि आपको 6 महीने पहले उन्हें टॉप का लीडर बनाया गया, मतलब कंट्री हेड, और विद इन 6 मंथ्स उन्हें बोला गया कि नहीं, यू नॉट डूइंग योर वर्क, आपको छोड़ना पड़ेगा। उसका सब कुछ उनका उस पर डिपेंड कर रहा था। वो डिप्रेशन सीप इन ऐसे करता है कि
0: बहन, तो एग्जैक्टली वही हुआ ना, ये सब कुछ आपका क्रैश कर गया. सपोज मेरे मेरे आसपास सब कुछ क्रैश कर गया. लेट मी लुक एट द वर्स्ट सिचुएशन दैट कैन हिट मी, एंड वो ये है कि एक पल में मेरा सब कुछ जो मैं समझती हूँ मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार भी, लेट्स से एक मिनट में सब कुछ खत्म हो गया. अगेन नॉट इन माई कंट्रोल, बट वॉट इज इन माई कंट्रोल इवन नाउ.
1: कि मैं उसको कैसे लेती हूँ सिचुएशन में।
0: बिकॉज फाइनली, लेकिन हम क्यों नहीं उस तरफ देख पाते कि वॉट इज इन माई कंट्रोल, क्योंकि हमारा सारा अटेंशन उन बातों के ऊपर है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. आज फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, सब लोग लेकिन आपस में बैठ के क्या डिस्कस कर रहे हैं? सारा जो एनर्जी लग रही है वो किस पर है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड. प्रॉब्लम ही ऐसे, सिचुएशन ही ऐसे. टॉक अबाउट सोल्यूशन. अच्छा ठीक है, फाइनेंशियल लॉस हो गया, हो गया, लेकिन हम डिप्रेशन में चले गए. कौन सा लॉस ज्यादा बड़ा?
1: हमारा
0: ये किसने क्रिएट किया था?
1: हमने खुद।
0: ठीक है, दुनिया में जिन लोगों ने जो किया सो किया, जिसकी वजह से मेरा सारा धन चला गया, लेट्स से वर्स्ट केस कंडीशन, लेकिन ये जो लॉस किया ये किसने क्रिएट किया? तो एक लॉस तो हुआ हुआ, ठीक है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो ये लॉस हुआ कि आई गो इनटू डिप्रेशन, कल को इफ आई गो इनटू डिप्रेशन, सपोज इट गेट्स वर्स एंड मुझे हाइपरटेंशन या हार्ट की प्रॉब्लम या कुछ, अब ये लॉस किसने किया? मैंने किया. अगर मैं अपने दर्द से बाहर नहीं निकल के आ पाती और मैं घर के लोगों के साथ उस बात को लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन या झगड़े और वो सब करते रहो और हम आपस में दूर हो जाएं, ये लॉस किसने क्रिएट किया? अब ये सब लॉस के सामने वो आपका फाइनेंशियल लॉस कितना बड़ा बैठता है?
1: और इनफैक्ट नो, यू नो व्हाट हैपेंस कि जब मेरे साथ कुछ ऐसा लॉस होता है तो मैं ही चाहती हूँ कि एवरीवन शुड अंडरस्टैंड कि मेरा गुस्सा, मेरी फ्रस्ट्रेशन जस्टिफाइड है। मेरे को जो हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड टू मी।
0: फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ. इफ आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग मी? एंड मे बी यू आर इन योर ओन पेन. यू सी, सो फॉर मी टू एक्सपेक्ट कि आप मुझे समझो, मैं खुद को ही नहीं समझ पा रही हूँ. तो इसलिए हर एक परिस्थिति में, फिर भी येस द सिचुएशन इज वेरी बिग, क्वेश्चन इज कि अभी भी मेरे कंट्रोल में क्या है? मैं सारी अपनी अटेंशन उस पर फोकस कर दूँ? इट्स लाइक मेरी एक चीज तो चली गई लेकिन तीन चीजें तो बची है ना. लेकिन क्योंकि मैं वो तीन चीजों का ध्यान न रख
1: कि
0: कर,
1: वो तो है ही,
0: हाँ,
1: उसको
0: फॉर
1: तो सोचा ही
0: ग्रांटेड
1: नहीं।
0: उनको लगती हूँ,
1: हाँ
0: आज मेरा पैसा चला गया लेकिन मेरी मन की स्थिति अभी भी ठीक है, मेरा तन अभी भी ठीक है, मेरा परिवार अभी भी ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया तो ये तो गया गया, साथ में कितना और नुकसान हुआ. क्यों नुकसान हुआ? सिर्फ क्योंकि आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन देयर. सिर्फ बिकॉज आई वॉज मोर, क्यों हुआ, क्यों हुआ, नॉट इवन लुकिंग एट द सोल्यूशन, ओनली लुकिंग एंड चर्निंग ओवर द प्रॉब्लम. सोल्यूशन हर परिस्थिति में है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली आपके सामने, कोई चैलेंज ही नहीं आने वाला जिसमें सोल्यूशन नहीं है. यस, इट जस्ट डिपेंड्स मुझे कितना टाइम लग जाता है उस सोल्यूशन तक पहुंचने में. और सोल्यूशन भी कब दिखाई देगा? सोल्यूशन भी कब दिखाई देगा? जब माइंड थोड़ा सा
1: हाँ, नहीं तो
0: साइलेंट,
1: नजर, यस नजर
0: नहीं
1: नहीं
0: तो मैं
1: आता।
0: अपने दर्द में कौन सा सोल्यूशन दिखाई
1: ओहो,
0: देगा? दर्द
1: यस
0: में तो सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखाई देगी, और जितना दर्द बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम इतनी भी होगी ना,
1: बहुत
0: तो वो
1: बड़ी हो
0: प्रॉब्लम
1: जाएगी।
0: बहुत बड़ी हो जाएगी. और प्रॉब्लम जितनी बड़ी होती जाएगी उतना हम सोल्यूशन से
1: दूर होते
0: दूर होते
1: जाएंगे।
0: जाएंगे. परमात्मा का जो ज्ञान हमें मिलता है राजयोग के द्वारा, उसका पूरा पर्पस ही ये है कि जैसे ही आप अटेंशन आपके कंट्रोल में जो है, एंड दैट्स ओनली वन थिंग, माई स्टेट ऑफ बींग, उस पर जैसे ही जाता है तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को छोटा देखना शुरू करते हैं, क्योंकि आप प्रॉब्लम से बड़े हो जाते हैं. लेकिन अगर मैं कमजोर हो जाऊं तो मेरे सामने, आफ्टर ऑल इट्स अ फाइट बिटवीन टू ना, प्रॉब्लम एंड मी, हम दोनों का आपस का संघर्ष है, ज्यादा शक्तिशाली कौन? लेकिन क्योंकि मैं इतनी कमजोर हो जाती हूँ, इतनी दर्द में चली जाती हूँ, तो वो प्रॉब्लम मेरे लिए इतनी बड़ी हो जाती है कि मैं तो उसको देख के ही बैठ जाती हूँ.
1: इनफैक्ट यहां तो मुझे भी लगने लग गया कि हमें प्रॉब्लम कहना ही नहीं चाहिए। द वे यू सेड इट्स ओनली अ
0: एब्सोल्युटली,
1: चेंज।
0: इट्स द ओनली अ चेंज, इट्स अ सिचुएशन, इट्स अ चैलेंज. उसको चैलेंज आप बोलो, बहुत बड़ी बात आ गई आपके सामने, आप उसको चैलेंज करके बोलो. प्रॉब्लम करके बोलते ही तो वो प्रॉब्लम ही एक लगने लगती है
1: एक
0: कि
1: मुसीबत छोड़ना हजारों
0: हजार,
1: मुसीबत।
0: यू नो हमारी वोकैबुलरी भी ऐसे आ गई है. तो चेंज आएगा ही. देर इज ओनली वन थिंग, आई हैड रेड दिस समवेयर, वेरी ब्यूटिफुल, देर इज ओनली वन थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट एंड दैट इज चेंज. सो इट्स सो ब्यूटिफुल. जब मुझे ये बात समझ में आ गई है कि एक चीज है जो कभी रुकने वाली नहीं है और वो है परिवर्तन. अब उसको मैं संघर्ष करूं उसके साथ, इट्स नो यूज. जस्ट बिकॉज आई थॉट जैसे चल रहा था वैसे बहुत अच्छा था, ऐसे ही क्यों नहीं चलता रहता ये, व्हाई डज दिस हैव टू चेंज. तो वो मेरे बोलने से या मेरे सोचने से रुकने वाला नहीं है. बट जैसे ही चेंज सामने आएगा, नाउ व्हाट डज इट डिमांड फ्रॉम यू, क्या चाहिए आपको?
1: मैं भी तो चेंज होनी चाहिए.
0: रिस्पॉन्स. एवरी चेंज, दिस चेंज कम्स फ्रॉम यू.
1: अच्छा, एक चीज मैंने और भी पढ़ी थी, जैसे आपने कहा कि दिस वन थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इन लाइफ दैट इज चेंज, एंड उसके आगे ही था चेंज इज ऑलवेज फॉर गुड. यू नो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है लोगों के लिए. सो इस पर हम एक्चुअली पूरी बातचीत करना चाहेंगे.
0: चेंज व्हेन विल इट बी फॉर गुड? जब उसको आप प्रॉब्लम ना देखकर आप उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हो. कि इस, क्योंकि वही तो परमात्मा हमें रोज बताते हैं कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत बहुत अच्छा. अब इम्पोर्टेंट मेरे लिए सिर्फ ये है कि मुझे इस सेंटेंस को, क्योंकि परमात्मा के महावाक्य है, किसी मनुष्य आत्मा के नहीं, तो परमात्मा अगर ये स्टेटमेंट हमें दे रहे हैं, दैट मीन्स इट्स द ट्रूथ, दैट इज द फेथ. नाउ इफ आई रिजेक्ट द स्टेटमेंट, ऐसे कैसे हो सकता है कि जो भी हो रहा है मेरे साथ वो अच्छा, देन इट्स ओवर फॉर मी. मैं उसको उस दृष्टिकोण से लूंगी ही नहीं. लेकिन जहाँ ये फेथ है कि परमात्मा ने ये कहा है, और ये सेंटेंस ऐसा है जो मुझे लगता है हर एक को पता है. यू गो एनीवेयर, इट्स रिटन एवरीवेयर कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग फॉर द गुड. लेकिन इसको बिलीव कौन कर रहा?
1: कोई नहीं कर पा रहा है.
0: इसमें फेथ कितना है कि हाँ जो हो रहा है वो अच्छा. तो लेकिन परमात्मा के महावाक्य है, अगर मैं उस समय, जिस समय मेरे सामने वो चैलेंज आता, मैं अगर वो महावाक्य को अपनी स्मृति में ले आऊं और उसके बेसिस पे अब रिस्पॉन्स क्रिएट करूं, तो वो सिचुएशन मुझे प्रॉब्लम ना लगकर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी कि अब इसमें मुझे क्या करना है. वी अग्री, एब्सोल्युटली अग्री कि जो भी सिचुएशन आज आ रही है ये छोटी नहीं है, ये बड़ी है, कल को और बड़ी भी आ सकती है. लेकिन डज दैट मीन कि आई विल कंटिन्यू टू लिव माय लाइफ इन पेन, और इज देयर अनदर चॉइस?
1: दैट इज व्हाट इज फियर आल्सो. Continuous डर. सिस्टर शिवानी, आज की जो बातचीत हमने की है, सिचुएशंस हमारे सामने वो हैं जो हर व्यक्ति के जीवन की हैं, और कहीं ना कहीं एक ये परिवर्तन कि ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम, ये मुसीबत, ये सरदर्द ना होकर एक चेंज, एक परिवर्तन है. आगे हम जरूर अपने आने वाली श्रृंखला में जरूर देखेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी कैसे है, कैसे इस चैलेंज में हमें देखना है कि ये शुभ के लिए कैसे है, क्योंकि परमात्मा का महावाक्य है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल खरा और सच्चा है. सिस्टर शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: बिल्कुल, आज जहाँ शुरुआत हमने की थी, सिस्टर शिवानी ने यही हमसे रिक्वेस्ट की थी, आग्रह किया था कि हम इस जो पूरी बात हो रही है ये सिर्फ बात के लिए नहीं है, हमारे आपके जीवन का एक हिस्सा है, उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास ज़रूर करें. आज ही से, कल का भी क्यों इंतज़ार करें, आज ही से जो सिचुएशन अभी मुझे तंग कर रही है या जो सिचुएशन कल मेरे सामने आ सकती है, मेरी कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, मेरा कोई ऐसा इंटरव्यू हो सकता है मेरे बॉस के साथ जहाँ ये तय होना हो कि मैं किस तरफ जाऊँगा, या पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी बात हो सकती है जो डिसीजन लेना हो, अगर हम उसे एक चेंज के रूप में, एक परिवर्तन के रूप में एक्सेप्ट कर ले. गुड और बैड हम बाद में देखेंगे, आने वाले एपिसोड्स जो हैं उसमें हम ज़रूर इस पर चर्चा करेंगे कि उसमें गुडनेस क्या है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन रही हो, और उसको हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, उसके लिए हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये बातें भी जानेंगे. लेकिन आज के लिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इसे अपने जीवन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें. इम्प्लीमेंट करके जो आप अनुभव करते हैं वो हमारे साथ शेयर करें. उसके अलावा अगर आप के पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है, आप देश विदेश में फैले ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पर जा सकते हैं और अपने सवालों के जवाब तलाश सकते हैं. अगर आप नज़दीक के सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन पर संपर्क करें या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर है 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई है कि जीवन में कोई भी परेशानी है या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी मुसीबत जिसे हम अभी तक मानते आ रहे हैं, वो एक चैलेंज है, एक परिवर्तन है. इस थॉट को अपने साथ रखें. आने वाली कड़ियों में और बहुत सी बातें करेंगे. फिलहाल आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: मित्रांशिवाय आयुष्य पूर्ण हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं।
3: तेरे जैसा यार कहां, ऐसा यार ना।
2: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
4: लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा।
2: मनात पीठ वाजल्या की शरीर आपोआप फिरकत। त्याच सोबत
5: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध।
2: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा।
3: पहला नशा, पहला खुमार।
2: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
6: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोर में सबको बांधता पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। सोच की दुनिया में एक अस्पष्ट सा चित्र, जिसके कई कई चेहरे होते हैं। सोच की दुनिया के कुछ जरूरी शब्द, लेकिन धुंधलाए, बेतरतीब, कि अचानक विचार की एक रोशनी उभरती है और सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। विचार एक प्रकाश, एक शक्ति है, जो मस्तिष्क में ठहरे तो हमारा संस्कार बन जाती है। इसीलिए विचारधाराएं युगों का निर्माण करती रही हैं, विचारधाराएं इतिहास लिखती रही हैं। ऐसी ही एक विचारधारा थी महात्मा गांधी की, जिसका अनुसरण करने वालों में अनेक लेखक, राजनीतिज्ञ और सामाजिक विचारक शामिल हैं। उन्हीं में से एक नाम है धर्मपाल जी का, जिनका जन्म 19 फरवरी सन 1922 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ था और शिक्षा डीएवी कॉलेज लाहौर में संपन्न हुई। बचपन में 8 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली बार गांधी जी को देखा और वो बहुत प्रभावित हुए। सन 1940 में 18 वर्ष की आयु में धर्मपाल जी ने खादी और चरखे को आत्मसात कर लिया और आजीवन उसका निर्वाह किया। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और इस आंदोलन के दौरान अनेक आंदोलनकारियों से उनका परिचय भी हुआ। गांधीवाद की विचारधारा को प्रायोगिक रूप देते हुए उन्होंने सन 1944 में मीराबेन के साथ काम करना शुरू किया। उनके साथ मिलकर रुड़की और हरिद्वार के बीच सामुदायिक गांव बापू ग्राम की स्थापना की। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत विभाजन के समय आए शरणार्थियों के पुनर्वसन कार्य में भी वे भाग लेते रहे। इसके बाद की सामाजिक स्थिति को देखकर उनके मन में जो मंथन जागा, उसने उन्हें अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने लंदन और भारत के अभिलेखागारों से असंख्य दस्तावेज एकत्र किए और उनका वैज्ञानिक अनुशीलन किया। ये अनुशीलन 18वीं और 19वीं शताब्दी के भारत का यथार्थ चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उन्होंने जीवन के 50-60 वर्ष इस अध्ययन में लगा दिए, क्योंकि वे उसमें अपने इतिहास और अपने समाज को देखने का प्रयास कर रहे थे। वे कहते थे कि परिस्थिति को बदलने के लिए हमें अध्ययन करना ही होगा। भारत का भारतीयत्व क्या है, किसमें है और किस प्रकार बना है, ये जानना और समझना होगा।

चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था, क्या इस पतन को ही हमारा वह अतुल उत्थान था। इसी प्रश्न से उलझे धर्मपाल जी ने भारतीय समाज और जीवन शैली के इतिहास को समझने का प्रयास किया और इसका आधार उन्होंने बनाया 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंग्रेजी दस्तावेजों में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में एकत्रित की गई जानकारी को। धर्मपाल जी ने अपने अध्ययन में ये पाया कि नमक कर के खिलाफ शुरू के आंदोलनों में सबसे पहला जिक्र सूरत के 1840 के आंदोलन में मिलता है। इसी तरह तमिलनाडु के नागौर और नागपत्तम इलाके के लोगों के आंदोलन का प्रमाण भी मिलता है, जब सन 1800 में भूमि के मामले में अपने साथ हुए अन्याय का ग्रामीणों ने सामूहिक विरोध किया। अन्याय के विरुद्ध असहयोग की इस भारतीय परंपरा पर धर्मपाल जी ने विस्तृत अध्ययन किया। गांधी जी ने असहयोग और सविनय कानून भंग जैसे शस्त्रों का उपयोग पहले दक्षिण अफ्रीका में और फिर भारत में किया। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये गांधी जी की अपनी खोज थी, ये उनकी सृजनशील प्रतिभा तथा उच्च आध्यात्मिकता का परिणाम था। लेकिन गांधी जी ने भी कहा था कि अपने नियम खराब हों या अच्छे, उनका पालन करना ही चाहिए। ऐसी परंपरा पुराने समय में नहीं थी। दरअसल शांतिपूर्ण प्रतिकार की परंपरा भारत में जीवन के सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती रही है। धर्मपाल जी ने भी इसी बिंदु को लेकर व्यापक शोध किया और 18वीं शताब्दी में बनारस, भागलपुर, मुर्शिदाबाद और सरन जैसे स्थानों पर हुए प्रतिकारों के ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किए। धर्मपाल जी की कोशिश थी कि हम भारतवासी समझें कि हमारी सनातन परंपरा क्या रही है, वो कैसे टूटी और हम कैसे परतंत्र हुए। उनके शोध का उद्देश्य था कि आजादी के बाद भारतीय समाज में फिर से वो साहस और विश्वास जागृत हों।

धर्मपाल जी ने भारतीय समाज के समग्र स्वरूप पर शोध करते हुए विकास को भी समझने की कोशिश की। भारत में विज्ञान और तंत्र ज्ञान पर प्राचीन आधारों को लेकर उसका महत्व प्रतिपादित किया। शिक्षा के बुनियादी सवालों को लेकर वे भारत के प्रत्येक गांव में पाठशालाएं होने की बात को प्रमाणित करते हैं। वे ये भी कहते हैं कि अधिकांश बालिकाओं को उनके घरों में ही शिक्षित किया जाता था, क्योंकि विदेशी शासन के पूर्व राज्य की आय का एक बड़ा हिस्सा लोक कल्याण के कार्यों में खर्च होता था और शिक्षा उसका एक अंग था। धर्मपाल जी सामाजिकता को लेकर महाभारत के एक प्रसंग का अक्सर जिक्र किया करते थे कि एक किसान ने दूसरे किसान को अपना खेत बेचा। दूसरा किसान जब उसकी जुताई करने लगा तो उसे स्वर्ण मुद्रा से भरा एक घड़ा मिला। घड़े को लेकर वो पहले किसान के पास गया और बोला, भाई मैंने तुम्हें खेत के पैसे दिए हैं, इस घड़े के नहीं, इसलिए इस पर मेरा अधिकार नहीं हो सकता। पहले किसान ने कहा कि जो चीज मैंने बेच दी उस पर मेरा हक कैसे हो सकता है। अब समस्या के समाधान के लिए वो दोनों महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने दोनों की बात सुनी और कहा कि जब आप दोनों ही इस पर अपना अधिकार नहीं मानते तो मैं इसे सरकारी खजाने में रखना उचित नहीं समझता। और अंततः सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ कि उस धनराशि से किसी निर्धन कन्या का विवाह कर दिया जाए। धर्मपाल जी इस प्रसंग को एक सुंदर और अच्छे समाज के साथ भारतीय चरित्र की निर्मलता का सुंदर उदाहरण मानते थे और चाहते थे कि हमारे समय में भी भारतीय समाज का चरित्र ऐसा ही उज्ज्वल हो। ऐसे महान विचारक और लेखक को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने और इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।

चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माय कंट्रोल। सो दैट इटसेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

त्योहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, ओम शांति। इन दिनों हम बात कर रहे हैं तनाव की, स्ट्रेस की, और ये एस्पेक्ट पूरी तरह से समझ में आ गया है कि स्ट्रेस पूरी तरह से दूर किया जा सकता है, हम एक तनाव मुक्त जिंदगी को जी सकते हैं। कुछ थोड़ी थोड़ी बातें याद रखने की ज़रूरी हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हमने अपने साथ जोड़ी थी पिछली कड़ी में, आपको याद होगा कि किस तरह से साइलेंस कैन बी अ रियल हेल्प, यानी कि अगर हम साइलेंट नहीं भी हो पाते तो फिर धीरे बोलें और कम बोलें और मधुर बोलें। तो कहीं ना कहीं ये जो धीरे बोलना है, कम बोलना, मधुर बोलना, हमारे अंदर वो परिवर्तन लाना शुरू कर देगा। और उसके आगे हमने बात की थी लेट गो, अटैचमेंट को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। हम लेट गो कह तो देते हैं लेकिन करना कैसे है वो हमने पिछली कड़ी में जाना था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जो इससे जुड़े हुए होंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति,
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, साइलेंस, साइलेंस इज पावर। वी हैव ऑल बीन थिंक लिसनिंग अबाउट इट, हियरिंग इट, और जहाँ तक एक्सपेरिमेंट करने की बात है कि थोड़ी देर या थोड़े दिन ऐसा करके देखें कि कम बोलें, धीरे बोलें, मधुर बोलें, और उसके साथ लेट गो, इस पे भी हम दोबारा एक बार बाद में आएंगे। लेकिन फिलहाल हम आगे चलते हैं थोड़ा और ये जानते हैं कि व्हाट नेक्स्ट।
1: जो तीसरा टिप हमें जो सारा दिन अपने अंदर याद रखना है, दैट इज लेट बी,
0: जो है जैसा है
1: लेट इट बी। अगर आप सारा दिन एक इंटरनल चेकिंग एक दिन करके देखें, हम सारा दिन औरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। इनफैक्ट अपनी लाइफ में उतना इंटरफेयर नहीं करते हैं लेकिन औरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं। हर समय जो एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन होती है वो औरों के बारे में होती है।
0: वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं,
1: वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ऐसे क्यों चल रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं,
0: द बिगर वंस, पता है वो ऐसे करते हैं, पता है वो ऐसे करते हैं, डेफिनेटली यस।
1: सो वी आर ऑलवेज ट्राइंग कि हम औरों की लाइफ को फिक्स करते रहे, क्योंकि हमने अपने ऊपर जिम्मेवारी ली है औरों के जीवन को फिक्स करने के लिए, एंड इन द प्रोसेस मेरे पास अपनी अपने आप को देखने के लिए टाइम नहीं है। तो इट इज़ फ्यूटाइल जो हम कर रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, एनर्जी ड्रेनेज हो रही है वो अलग। तो जिसको हम कहते हैं कि हम सारा दिन दूसरे की स्क्रिप्ट को लिखने की कोशिश करते रहते हैं, आई एम राइटिंग योर स्क्रिप्ट, एंड बिकॉज आई एम राइटिंग योर स्क्रिप्ट एंड आई एम राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ सो मेनी अदर पीपल, आई जस्ट डोंट फाइंड टाइम टू राइट माई ओन स्क्रिप्ट, यू नो, बिकॉज मेरा फोकस है औरों की स्क्रिप्ट, इनके जीवन कैसी चलनी चाहिए, इनको क्या करना चाहिए फॉर अ गुड लाइफ, वी आर वेरी गुड एट ऑल दैट। तो हम अपनी स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं तो हम औरों के जीवन में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। और उसका रीज़न क्या है, दो बिलीफ सिस्टम, एक कि हम औरों को कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरा कि दूसरे लोग मेरी खुशी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या होता है कि आपको चेंज करने से मुझे खुशी बढ़ जाएगी, तो मैं एक्चुअली आपको आपके लिए नहीं चेंज कर रही होती हूँ,
0: अपने लिए कर रही
1: हूँ। आई एम चेंजिंग यू बिकॉज व्हेन यू बिकम लाइक व्हाट आई वांट यू टू बी, आई विल बी हैप्पी। तो ये जो दो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल्स बिलीव्स हमने पकड़ लिए, एक कि मैं आपको कंट्रोल कर सकती हूँ और दूसरा कि मेरी मनोस्थिति आप पर डिपेंडेंट है, ये मुझे सारा दिन औरों का स्क्रिप्ट लिखने पर मजबूर करता है।
0: दैट्स रियली वंडरफुल। यहाँ पे एक जो हम बहुत दावे के साथ बात कहते आए हैं कि माँ बाप तो है वो तो चेंज करेंगे ही, बच्चों की भलाई के लिए करते हैं, यहाँ वो बिल्कुल आई थिंक इट फॉल्स डाउन, क्योंकि हम बच्चे को जैसा हम चाहते हैं बनाना इसलिए चाहते हैं, हमें लगता है कि वो सही है, वो सही तरीका है। ओह गॉड, दिस इज सच अ बिलीफ व्हिच वी
1: हैड। बिकॉज सबसे ज्यादा जो स्क्रिप्ट इंटरफेरेंस होता है वो एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में, जबकि इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। तो जहाँ हमें समझ में आ गया कि आई कैन नॉट कंट्रोल इवन अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, हम बाकी सब रिलेशनशिप्स में फिर भी कुछ हद तक इस बात को समझ लेते हैं, लेकिन एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में एक पेरेंट हमेशा ये फील करता है कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, और वो भी एक फील करते कि ये तो छोटे हैं, तो ये तो कुछ भी राइट नहीं डिसाइड कर पाएंगे अपने लिए, तो इनके लिए सारा कुछ
0: मुझे ही करना है। एंड राइट नाउ, यस डेफिनेटली, डीप विद इन, अगर पेरेंट, हर पेरेंट जाके देखे, और जब वो बच्चे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, बदलने की कोशिश कर रहा है, समवेयर अपनी ही खुशी के लिए कर रहा है, आई एक्चुअली एक्सेप्ट इट नाउ, यू नो,
1: वो अपने, क्योंकि मैं आपको कुछ बनाना चाहती हूँ, तो क्या बनाना चाहते हो आपको, जो मुझे अच्छा लगता है, तो
0: जो मेरी नजर में सही है।
1: तो एक पेरेंट को भी ये समझना होगा कि हमें बच्चे को कंट्रोल नहीं करना है, एक आत्मा है, सी आत्मा का आत्मा के साथ एक कार्मिक कनेक्शन है। तो एक पेरेंट और बच्चे का जो कार्मिक कनेक्शन बनता है कि एक आत्मा है जिसकी जिम्मेवारी मुझे मिली है टू प्रोटेक्ट इट एंड ब्रिंग इट अप इन दिस वर्ल्ड, दैट्स ऑल। उसको अपना प्यार स्नेह देकर उसको बड़ा करना है मुझे। मेरी जिम्मेवारी कितनी है? उसकी फिजिकल नीड्स को पूरा करना, दुनिया की सारी बातों से उसको वाकिफ कर देना, लेकिन उसके बाद उसकी यात्रा उसकी अपनी होनी चाहिए। आई गाइड हिम, आई कोच हिम, आई मेंटर हिम, बट आई डोंट कंट्रोल हिम। गाइडेंस आपको जब चाहिए, आई एम देयर फॉर यू। आपको सही और गलत नहीं कहीं क्लियर हो रहा, आई एम देयर फॉर यू। लेकिन आपकी यात्रा वो आपकी अपनी जर्नी होनी चाहिए। सो वी हैव टू लेट देम फाइंड देयर वे। यू नो, हम क्या समझते हैं कि जो गलतियां मैंने की थी
0: वो मैं नहीं होने दूंगा, वो मैं अपने बच्चे के साथ नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी।
1: तो उससे क्या होता है, हम रास्ते में जाकर खड़े हो जाते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल, हम रिजिड हो जाते हैं।
1: अब वो रिजिडिटी उस बच्चे के लिए, इट्स लाइक मैं इस रोड पर जा रही हूँ, भले आपको पता है ये रोड रॉन्ग है, लेकिन आप मेरी रोड पर, मेरे रास्ते के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं कि नहीं, मुड़ो यहाँ से वापस, इस रास्ते पर जाओ। बट आई एम लाइक वांटिंग टू गो ऑन दिस रोड। तो तब एक जो रिलेशनशिप में एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आता है कि ये नहीं समझ पाते मेरे को, मैं नहीं समझ पाता इनको, और हमने कह दिया उसको जेनरेशन गैप। एक्चुअली वो एक बहुत सटल कंट्रोलिंग चल रहा है कि मैं इनका सही जानता हूँ। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, गिव देम एवरीथिंग फिजिकली, यू हैव टू गिव एवरीथिंग टू देम टिल दे ग्रो अप, एंड उसके बाद लेट देम बी ऑन देयर ओन। उनकी जर्नी उनकी अपनी है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेट देम बी वॉट दे वॉन्ट टू बी as a person, let them be what they want to be. Don't try and make them what you want them to be,
0: because you think it's right.
1: Mera ye bachcha hai bahut kam bolta hai, I don't like it, so nahi tumhe zyada bolna chahiye, tum itne shy kyon ho, baaki bachchon ko dekho, so I am not letting them be what they want to be
0: and what they are by nature. Maybe, you know, they have this
1: personality ke against bahut zyada conflict ho jata hai, kyunki hum unki bar bar unki personality ke andar, you know, ye changes lane ki koshish karte hain, kyunki hame lagta hai ki zyada bolna chahiye, hame lagta hai, aur fir hame lagta hai ki hum uske liye bol rahe hain, wo uske future ke liye, lekin koi cheez jo hai waisi hai, aap usko bahut zyada इस तरह से फोर्सफुली नहीं चेंज कर सकते हो। सो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा ये कंट्रोलिंग की प्रॉब्लम आती है। और हमें ये, जैसे हमने पहले भी बात की, आत्मा और आत्मा के इंटरेक्शन में, चाहे वो रोल कोई भी हो, कंट्रोल अगर करेंगे तो हम दूर चले जाएंगे। अगर हम सचमुच में अपना कोई प्रभाव हम चाहते हैं कि उस आत्मा पर पड़े, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ओनली फर्स्ट आई हैव टू बी दैट, बस आई हैव टू बी दैट एंड नॉट कंट्रोल। जैसे कंट्रोल किया तो एक बैरियर बीच में खड़ा हो जाएगा, और अगर कंट्रोल नहीं किया तो वो बैरियर हट जाएगा। जैसे ही वो बैरियर हटा, तो मैं जो हूँ और मैं जो एनर्जी आपको ट्रांसमिट करना चाहती हूँ, दैट्स फ्लोइंग। अब उसका जो इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ता है और आप उसको फिर जैसे लेते, दैट्स योर जर्नी आफ्टर दैट, बट माई जर्नी बिगिंस। लेकिन अगर आपने बीच में एक दीवार लगा दी, I can't do anything. You'll move away from me. So I have to take care of that. Or pure intention. Intention नहीं होनी चाहिए influence करने के. क्योंकि अगर intention है कि अच्छा ठीक है मैं influence कर दूँ, control नहीं करूँ.
0: मैं ऐसे करूँगा. मैं ऐसे.
1: It's like control होने की. अच्छा ठीक है. Influence किया नहीं जा सकता. Influence हो जाएगा.
0: हो जाते
1: हैं. आप किसी को influence नहीं कर सकते. दूसरे influence हो जाते हैं. तो वो प्रभाव उन पर ऑटोमेटिकली।
0: लेकिन यहाँ जो अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आते हैं सिस्टर शिवानी, बिकॉज एवरी टाइम यू नो हमारे जितने दर्शक हैं वो यही कहते हैं कि बहुत अच्छी लगती हैं ये बातें, बहुत समझ में आती हैं, क्लैरिटी से आ जाती है, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिकल सिचुएशंस आती हैं समझ में नहीं आता कि हम कैसे करें। अब एक अगर हम डॉटर, मदर डॉटर का लेते हैं कि वो टीनेजर है, वो रात की पार्टी में जाना चाहती है, वो शॉर्ट स्कर्ट पहनना चाहती है, वो कुछ ऐसी चीज़ करना चाहती है, वो करना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू बी लाइक दिस और शी वॉन्ट्स टू डू इट, वी कांट अलाउ इट।
1: एब्सोल्युटली। तो वी ऑलरेडी सॉ बिफोर कि हमें बैठकर बात करनी पड़ेगी उस बारे में, और हमें डूज एंड डोंट्स अपने जो है वो मिलकर बनाने पड़ेंगे। अगर हम कहते हैं नहीं आपको ये नहीं पहनना, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए आपको लेट नाइट नहीं जाना, देन इट्स अ कंट्रोल। और मैं, आई एज अ चाइल्ड वुड फील, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, I want to lead my life the way I want to. एज अ पेरेंट विल थिंक ये तो अभी बहुत छोटी है, ये ऐसे नहीं कर सकती है. तो हम एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. एंड इवन दो हम अच्छे के लिए कह रहे हैं लेकिन दूसरे को वो बात अच्छी नहीं लग रही होती. तो सबसे पहले तो मुझे एक है एनर्जी. तो मेरे अंदर एनर्जी आती है जो थॉट क्रिएट होती है ये गलत कर रही है, दैट इज रेजिस्टेंस, और वो दूर चली जाएगी. अगर मैं ये एक्सेप्ट कर लूँ कि इसकी एज के हिसाब से ये राइट बोल रही है, इसकी एज में शायद जब मैं थी तो मैंने भी बहुत सारी ऐसी बातें बोली, चाहे उस समय के हिसाब से बोली,
0: लेकिन वो रास्ता गलत है ये तो मुझे मालूम है.
1: जैसे ही मैंने बोल दिया कि आप गलत हो,
0: नहीं आप गलत नहीं हो, आप तो चले ठीक है,
1: मतलब वही जो आप कपड़े पहन रहे हो वो गलत है, जिस आप पार्टी में जाना चाहते हो वो गलत है, मैंने आपको बोला ना, जैसे सोचा भी कि आप गलत हो. एक्सेप्टेंस यही तो आती है कि I understand absolutely fine that you love to wear that skirt. I understand कि आपको वो पार्टी में जाना भी बहुत अच्छा लग रहा है. And I can share with her कि as a daughter, I had the same conflict with my mother. कि उनको भी मेरी बात नहीं समझ में आ रही थी. I understand and absolutely agree कि you are right. You know, and I have to feel that. Mostly हम ऊपर से बोलते हैं.
0: हाँ, yes, somewhere we don't want to accept.
1: Mostly हम ऊपर से बोल देते हैं. मुझे अंदर से समझना होगा कि उस बच्चे के लिए वो बात कितनी right है उस time. कितनी right है, क्योंकि आप देखो जब हम बच्चे थे तब भी हम यही समझते थे कि हमारे parents को क्यों नहीं पता चलता कि उस party में जाने में कुछ wrong नहीं है. तो we always felt कि वो हमेशा क्यों हमें गलत समझते आए. तो आज जब हमें चांस मिला है चेंज होने का, तो आई विल हैव टू अंडरस्टैंड कि उसके शो में जब मैं थी तो मुझे वो बात राइट लगती थी, जैसे ही मेरी सीट इस तरफ हो गई तो मुझे वो बात रॉन्ग लगने लगी,
0: क्योंकि मुझे दिखने लग गया पूरा कि ओवरऑल सिनेरियो क्या है.
1: सबसे पहले जैसे ही वो राइट आपने कहा और एक्सेप्टेंस कहा, एनर्जी फ्लो करेगी. अब अगर आप शेयर करेंगे उसके साथ जो आपकी एप्रिहेंशंस है उस चीज को लेकर, शी विल बी मोर रिसेप्टिव. नॉट नेसेसरी कि वो इनिशियली पहली बार में आपको बोल देगी हाँ जी तो ठीक है आई विल नॉट गो टू द पार्टी, ठीक है आई विल नॉट, वो नहीं होगा. लेकिन हमें उसको एक्सेप्ट करते हुए अपनी एप्रिहेंशन को अगर शेयर करते जाएंगे, भले इफ शी वॉन्ट्स टू एक्सपेरिमेंट इट वंस, लेट हर डू इट अंडर सम गाइडेंस, स्लोली द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड.
0: एंड मे बी यू नो इफ इवन इफ शी रिजेक्ट्स योर प्रपोजल, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ऑल्सो. यू नो वट हैपन्स इज दैट अगर हम बहुत अच्छे बन के उनकी उसकी पूरी तरह से बातें समझ के एम्पथाइज करके उसको तब समझाने की कोशिश करते हैं और उसके बावजूद बच्चा रिजेक्ट कर देता है, वी कांट टेक इट.
1: हाँ, क्योंकि हमने सोचा कि मैंने एक्सेप्ट करके किया था तो इनको पहली बार में मान लेना चाहिए था. इट विल नॉट हैपन लाइक दैट. एक्सेप्ट करना मतलब एक रिलेशनशिप के अंदर एनर्जी को फ्लो करते रहना. अगर रेजिस्टेंस आ गया वो छुप कर सकते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. मतलब आज बहुत सारी एवेन्यूज ओपन है विद द वे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चे आज कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता है, एंड दैट्स अनहेल्दी. इससे ज़्यादा ये अच्छा है कि मैं आपको बता कर करूँ, इवन इफ यू नॉट रेडी फॉर इट. लेकिन जहाँ मुझे बार बार आपसे रेजिस्टेंस मिलेगा, आप नहीं बताएंगे, तो हाउ डिफिकल्ट फॉर मी इज इट टुडे टू लीव द हाउस वेयरिंग अ सलवार कमीज and just change somewhere else. आपको क्या पता चलेगा? Nothing. And majority children are doing that. How difficult is it कि बोलो कि मैं स्कूल जा रही हूँ और चले कोई मूवी जा. Children are doing that.
0: I think it's happening every day.
1: कितनी बार आप मूवी में चले जाओ, आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ, बच्चे हैं वहाँ पे. क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे?
0: यूनिफॉर्म्स में है तो साफ दिखता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं. Definitely.
1: तो जहाँ रेजिस्टेंस मिला हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया. अब जब हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया तब तो बहुत कुछ और हो सकता है जो पेरेंट को पता भी नहीं चलेगा. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस, एनर्जी ब्लॉकेज थी. अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया होता तो वो उनको ये पता होता कि हम जो भी कर रहे हैं वी कैन टेल आवर पेरेंट्स. हर पेरेंट आजकल ये पूछता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे हमारे को हर बात बता दें. दे वॉन्ट दैट. लेकिन उसके लिए फिर हर बात सुनना की पोटेंशियल तो होनी चाहिए ना. जैसे ही वो अपनी बात शेयर करेगा बोलोगे यू रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो बच्चा बोलेगा ठीक है देन आई एम नॉट टेलिंग यू. सो अगर मुझे ये पता होगा कि आप मेरी, मैं आई कैन कम एंड टेल यू सबसे अजीब चीज एंड यू विल स्टिल एक्सेप्ट इट, तो मैं आपके साथ हर बात आकर शेयर करूंगी. लेकिन अगर मुझे पता है कि हर छोटी छोटी बात पर आप बोलोगे ये गलत है, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कैसी है दुनिया आउटसाइड, तो मुझे पता है दुनिया कैसी है आउटसाइड. आई विल फाइंड माय वे एंड आई विल डू इट माय वे. तो ये जो बैरियर होता है ये बहुत ज्यादा हमने ही क्रिएट किया होता है, क्योंकि बचपन से एक्चुअली एक बच्चे को आदत होती है अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करने की। तो हमने बचपन में उनकी बातें सुनते गए अगर वो संस्कार इतना स्ट्रांग होता है कि वो बड़े होकर भी शेयर करेंगे, लेकिन वो शेयर करना कब बंद करते हैं, आई हैव टू आस्क माई सेल्फ।
0: यस, वेरी ट्रू।
1: क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं अब बच्चे मेरे से बात नहीं करते हैं, वो हर वाली जो पहले वाली करते हैं, अब बच्चे छुपाते हैं कुछ बातें। आई हैव टू आस्क माई सेल्फ। बहुत इजी है बोलना कि दे आर रॉन्ग, अब वो छुपाते हैं बातें। क्यों जरूरत पड़ी छुपाने की? क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला। बहुत सारे परिवारों में है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि उसका फाउंडेशन यही था, एक्सेप्टेंस। फिर जब वो शेयर करते हैं तो फिर वो एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन शेयर करना ही बंद हो जाएगा तो फिर तो बहुत ज्यादा दूरी आ जाएगी।
0: वंडरफुल। तो लेट बी, एक्चुअली अगर हम,
1: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपना डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसको एक कंट्रोलर के तरह नहीं, एक गाइड की तरह। एक गाइड गाइड करता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको साक्षी होना ही पड़ता है। तो औरों की स्क्रिप्ट लिखना बंद करके अपनी स्क्रिप्ट लिखें, और बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें। और अगर कोई हमें बुलाता है इंटरफेयर करने के लिए, यू नो पीपल अपने साथ शेयर करते हैं अपनी सारी बात, तो शेयर करें विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट। तो उससे क्या होगा, हम उनको जो वो पूछ रहे हैं वो तो बता देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगेन कंट्रोल नहीं करेंगे, नहीं फिर आप मैंने जो बताया आप उस अनुसार करें, नहीं। लेट पीपल बी द वे दे वॉन्ट टू बी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट बी शुड ऑलवेज बी इन माई माइंड कि जहाँ भी मैं किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, स्टॉप, लेट देम बी, दे विल फाइंड देयर वे। यू नो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि हर आत्मा अपनी रास्ता ढूंढ लेती है, हर आत्मा। हम ही सोचते हैं कि नहीं हम जल्दी से उसको उस रास्ते पर ले जाए, वो पॉसिबल नहीं होता। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्सेप्ट एवरीथिंग। जहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है, अगेन इट्स वेरी वेल कनेक्टेड, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस आता है तो जिसके भी प्रति या जिस सिचुएशन के प्रति मेरे अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो मैं एक्चुअली उसको और शक्तिशाली बना देती हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, वो और जिद्दी होते जाते हैं।
0: वो बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनके अंदर वो आदत और कड़क होती जाती है, तो वो रेजिस्टेंस। और फिर यहाँ रेजिस्टेंस, हम बहुत बार बाहर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कहने के लिए, लेकिन अंदर रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस सामने वाले को या सिचुएशन को और भी एम्पावर करता जाता है। तो वी नीड टू रिमूव दैट एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज, क्योंकि हर चीज़ जो हो रही है वो परफेक्ट।
0: फॉर दैट टाइम, फॉर दैट मिनट, फॉर दैट, यू नो, पूरा पर्सपेक्टिव में वो सही है।
1: तो उस क्षण में उसको एक्सेप्ट करें, अगले क्षण में फिर उसको जिस तरह से चेंज करना है वो कर सकते हैं। तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग। एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पास ऑन। हमें जो कुछ मिलता है उसको हम पकड़ कर रख लेते हैं। हमें जो कुछ मिला है वो मिला है पास ऑन करने के लिए। जिन लोगों को भी हम सारा दिन में मिलते हैं, शेयर विद देम एवरीथिंग, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, अपनी क्वालिटीज, हर चीज शेयर करें।
0: क्वालिटीज वो जो हम सचमुच में समझ चुके हैं अपनी, जो कि हर दूसरी आत्मा में भी है।
1: अब तो क्वालिटीज तो बहुत सेकेंडरी बात हो जाती है, इवन नॉलेज एंड स्किल्स शेयर करने में हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चलते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जो हमारे पास है अगर हम उसको पास ऑन नहीं करेंगे तो हमारे पास नया कहाँ से आएगा। हम बस उतने को ही लेकर पकड़ कर रख लेते हैं। जैसे एक नदी को हम देखते हैं जो ऊपर से बहती हुई जाकर नीचे सागर में जाकर मिल जाती है। यू जस्ट हैव टू सी द जर्नी ऑफ द रिवर, क्योंकि माय लाइफ इज लाइक दैट जर्नी।
0: लेट इट फ्लो, एक्चुअली यू नो एवरीथिंग हैज टू फ्लो,
1: एवरीथिंग हैज टू फ्लो। अब वो रिवर क्या करता है, जब वो नीचे फ्लो कर रहा है, एक तो वो अपनी यात्रा अपने आप कर रहा है, इट फाइंड्स इट्स वे। बीच में कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढता जाता है। वो जो नदी है, जो वो पानी की लहर जो फ्लो कर रही है, वो कितने सारे क्रीचर्स के लिए घर भी बन जाती है, कितने सारे उसके अंदर रहते हैं। लेकिन उस रिवर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है वो क्या,
0: जीवन।
1: किसको?
0: जीवन दायिनी, मनुष्य को देना।
1: एब्सोल्युटली, सिर्फ मनुष्य को नहीं, उसकी यात्रा में जो कुछ आता है
0: उसको जीवन देते।
1: एक फूल, एक पत्ता, एक टहली, एक जानवर, एक पशु, एक पक्षी एंड ह्यूमन बींग, उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी यात्रा में एवरीथिंग, एवरी लिविंग बीइंग जो आता है, इट नरिशेस दैट लिविंग बीइंग। दैट्स द जर्नी ऑफ द रिवर.
0: वाओ ब्यूटीफुल, दैट्स नाइस.
1: दैट्स माय जर्नी. मैं भी तो उसी तरह हूँ. आई एम फाइंडिंग माय वे. इट्स ओके. देयर आर ऑब्स्टिकल्स. आई एम फाइंडिंग माय वे. आई हैव गिवन शेल्टर टू अ फ्यू क्रीचर्स. दैट्स ऑल्सो ओके. बट व्हाट इज माय मेन पर्पस इन लाइफ? बिकॉज व्हाट्स माय पर्पस इन लाइफ, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है. मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? और वो समझते हैं कि कोई और उनको बता पाएगा कि व्हाट्स माय पर्पस इन लाइफ. पर्पस इन लाइफ इज कि यू आर फ्लोइंग. स्टैग्नेंट वाटर नहीं बन जाओ जो एक जगह रुक जाता है. फ्लो करो, और आपके फ्लो होने में, आपके कॉन्टैक्ट में जो भी आता है
0: उन्हें नरिश.
1: और नरिश करना अर्थात जो मेरे पास है वो सबको, क्योंकि जैसे ही उनके साथ शेयर किया उनको भी एम्पावरमेंट मिल जाते हैं. इमेजिन गोइंग टुमारो मॉर्निंग टू वर्क विद दिस फीलिंग, देन वर्क इज नो लॉन्गर वर्क. एक है मुझे काम करने जाना है, पैसे कमाना है, घर आना,
0: और वहाँ सफोकेट होना है, वहाँ पता नहीं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा.
1: एक है मुझे कल जाना है अपने जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए, और वो ये है कि कल सारा दिन में जितने लोग मुझे मिलेंगे उनको नरिश करना,
0: and give them happiness, you know? Yeah.
1: ये मेरी responsibility है. Imagine how the day will pass. And then I'm sharing and giving without expecting. At the end of the day, mujhe kaisa lagega? Do I have to think, is satisfaction kya hoti hai? Contentment kya hoti hai?
0: Stress management kya hoti hai? I think stress has gone somewhere up, you know. It's like in this whole conversation, I think, mujhe lagta hai ki humare darshak bhi zarur is baat ko anubhav kar pa rahe honge ki is puri baatcheet mein stress kahin dikha hi nahi. कहीं था ही
1: स्ट्रेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बात करनी थी. स्ट्रेस दिस इज मोर द सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गो टू वर्क वेरी अनविलिंगली. आई हैव टू गो टू वर्क.
0: वर्क इज अ स्ट्रेस. इतनी बार ये कहा जाता है कि माय वर्क एरिया इज अ स्ट्रेस एरिया. द मोस्ट स्ट्रेसिंग पार्ट ऑफ माय लाइफ इज माय वर्क.
1: तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हर एक के जीवन का लक्ष्य ये है, एनर्जी एक्सचेंज विद एवरीबॉडी आई मीट. अब मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए. अब उसमें कई लोग बोलते हैं मैं तो देता हूँ अच्छी वाली लेकिन औरों से मुझे नेगेटिव मिलता है. स्टॉप. माय रोल इज ओनली टू
0: वंडरफुल. यू नो वी कैन ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी वांट कि हमें मिलना चाहिए. वी कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस. ये उदाहरण एग्जांपल को अगर हम याद कर लें, आई एम लाइक अ रिवर.
1: आप फ्लो करते करते कितनी चीजों को पास ऑन करते जाएंगे और वो अपने आप नरिश होते
0: जाएंगे.
1: रुका हुआ पानी कैसे हो जाता है?
0: कई बार अपने साथ लोगों को, कईयों को ले चलते हैं,
1: वो आपकी यात्रा का हिस्सा है. लेकिन हर एक को नरिश करे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और इसको अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारे जीवन बहुत सुंदर हो जाती है, क्योंकि हर एक को नरिश करते करते वो नरिशमेंट तो
0: हमसे होके.
1: आई फील ब्यूटीफुल.
0: एंड यू नो दैट रिवर इज हेल्दी रिवर व्हेन इट इज नरिशिंग एंड इट्स नॉट डाइंग, इट्स फ्लोइंग.
1: हीलिंग हो जाएगी उससे. कितनी हीलिंग. और थोड़ी देर के बाद साइलेंस में जब हम बैठते तो अपनी इस अंदर की आवाज को जरूर सुने. कई बार हमें कुछ कर्म करने से पहले ऐसे लगता है कि आई थिंक समथिंग इज टेलिंग मी दिस इज रॉन्ग, लेकिन मैं कर देती हूँ. क्योंकि अगर मैं उस आवाज़ को सुनती हूँ तो वो मुझे उस टेम्प्ररी चीज़ों से जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो कोई डिपेंडेंसी है, चाहे वो कोई अटैचमेंट है, चाहे वो कोई एडिक्शन है, वो मुझे उससे दूर लेकर जा रही है. मुझे अंदर पता होता है कि लेकिन उस आवाज़ को सुनना मतलब इस टेम्प्ररी जो हैप्पीनेस की जो हमने चीज़ें ढूंढी हुई हैं इनसे दूर जाना. तो मैं इसको आवाज़ को अनसुना कर देती हूँ और उस तरफ चले जाते हूँ. ये जो बार बार अपनी अंदर की जो ये आवाज़ आती है, क्योंकि विजडम इज ऑल इनसाइड, तो ये जब अंदर की आवाज़ आती है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं तो ये भी एक दिन
0: बात करना बंद कर देते हैं.
1: तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि साइलेंस में बैठकर वो ही लाइब्रेरी वाला सीन वापस क्रिएट करके, एक्सटर्नल नॉइज को ख़त्म करके, जो भी अपने पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, जैसे हम दूसरों को पूछने जाते हैं वैसे अपने आप के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दो. तुरंत आंसर नहीं एक्सपेक्ट करो, बट दैट शुड बी इन साइलेंस. साइलेंस में जाके क्वेश्चन वहाँ छोड़ दो, आंसर विल बी देयर बिकॉज द आंसर इज ऑलरेडी हियर. तो इसको हम कहते हैं लिसनिंग इनसाइड. कीप लिसनिंग टू द ट्यूटर इनसाइड इन ट्यूशन. अब हमें समझना चाहिए कि मेरी आंतरिक जो अंदर का विवेक है उसने वो आंसर दिया है वो मुझे. That's good for me. Then I should follow that. So बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग, पास ऑन टू एवरीवन एज दे कम एंड लिसन इनसाइड. सिंपल सिंपल थिंग्स. सुनने में इमीडिएटली लग रहा होगा नहीं सिंपल नहीं, बहुत डिफिकल्ट, वेरी सिंपल सिंपल.
0: और हर बार की तरह स्टार्ट डूइंग देम, हर बार की तरह वो एक्सपेरिमेंटेशन करके अपने अनुभव के आधार पर फिर हम इसको देखें कि कहाँ तक हम वहाँ पहुँच पाते हैं. बट यस, अपना अनुभव मुझे फिर यही कह रहा है कि ये बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्ट्रेस से हम जिंदगी को भरा हुआ है वो कहीं उड़ जाएगा. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवारी. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 9999344555, 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफर यूं ही चलता रहेगा. एक स्ट्रेस फ्री जिंदगी आपकी हो, इसी दुआ के साथ आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

बोल बाबा।

उनकी कमाल रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जब मजाक के वो भी हो बेकरार, दोनों तरफ हो आग बरार।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडिओ पुणेरी आवाज।
1: ओ रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो।
3: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज, वेलकम सिस्टर,
4: ओम शांति,
3: एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
4: थैंक यू।
3: बीइंग डिवाइन की एक बड़ी अच्छी पॉइंट लगी लास्ट टाइम मुझे कि किस तरह हम भी खुश रहें और अगले को कैसे महसूस कराएं, उसको भी खुशी दें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो छोटा बड़ा, ही इज माई ड्राइवर, ही इज माई कुक, ये हमारा बॉस है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे से उम्र में बड़ा है, ये उम्र से छोटा है, ये सारी बातें इतने जन्मों जन्म से यहाँ भरी हुई है मेरे अंदर, वो थोड़ा कहीं ना कहीं वो आ जाता है।
4: वो आ जाता है क्योंकि बहुत समय से वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका है। वो सच भी है कि कोई हमसे बड़ा है, कोई हमसे छोटा है, सच है। कोई हमसे उम्र में बड़ा है छोटा है, वो भी सच है। कोई औहदे में बड़ा है छोटा है, कोई रिश्ते में बड़ा है छोटा है, वो सच है। इट्स नॉट दैट इट्स नॉट ट्रू, इट्स ट्रू, बट व्हेन दैट बिकम्स माय कॉन्शियसनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन दैट बिकम्स माय आइडेंटिटी, देन अ लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज।
3: दैट्स अ लवली पॉइंट। मतलब व्हेन दैट बिकम्स माय आइडेंटिटी, मतलब एज एन एक्टर अगर मैं कोई डाकू का रोल कर रहा हूँ और घर पे आके भी डाकू बनता रहूं, तेरी आइडेंटिटी ही मैं तो डाकू हूँ जी, डाकू हूँ जी। आई मीन इट्स सो ब्यूटीफुल,
4: दैट बिकम्स माय आइडेंटिटी ना। आप मालिक हैं, एक आपके यहाँ कोई ड्राइवर है, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज द ट्रूथ, नोबडी कैन डिनाई दैट दिस इज द ट्रूथ। लेकिन जब आप उसके बारे में सोचते हैं या उसके साथ व्यवहार में आते हैं, अगर ये रोल्स जो हम प्ले कर रहे हैं, ये हमारी कॉन्शियसनेस, ये हमारी आइडेंटिटी बन जाए, तो वो हमारी सोच, बोल और व्यवहार पे फर्क डाल देगी।
3: सही बात।
4: एक होता है कि हम रोल प्ले कर रहे हैं कि ये ड्राइवर का रोल प्ले कर रहा है, मैं मालिक का रोल प्ले कर रहा हूं। फिर आप कहीं जाएंगे, कोई और आपसे पोजिशन में बड़ा होगा, आप किसी से छोटे होंगे, वो भी हो सकता है। तो हर जगह हम अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा रोल हमारी आइडेंटिटी या कॉन्शियसनेस बन जाती है, तो हमारी सोच और व्यवहार में बहुत फर्क आ जाता है। एंड दैट्स व्हाई दैट ट्रू आइडेंटिटी द कॉन्शियसनेस में रहे कि हु एम आई, बहुत सारी चेन पे उसका फर्क पड़ जाएगा। अगर हम सारा दिन में अपने इस इनर प्रोसेस को देखें, तब हमें समझ में आएगा कि ट्रू आइडेंटिटी पता होना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। एवरी थॉट वी क्रिएट, सारा दिन में अब देखो, जैसे ही आप एक थॉट क्रिएट करते हैं, जस्ट क्रिएट एनी थॉट जस्ट नाउ, जैसे ही आप एक थॉट क्रिएट करेंगे, इमीडिएटली जो सेकेंड चीज फॉलो होगी, व्हाट विल दैट बी?
3: जैसे अगर मैं बोलूं यहां बहुत गर्मी है,
4: हाँ ठीक है, तो दिस इज अ थॉट। तो जैसे ही थॉट क्रिएट की, सेकेंड चीज क्या फॉलो होगी?
3: व्यवहार में पानी दो, कहीं से पंखा लाओ,
4: व्यवहार में आएगा। लेकिन बीच में एक स्टेज मिस हुई है।
3: क्या?
4: पहले एक थॉट क्रिएट होती है, जैसी थॉट क्रिएट होती है वैसा आप फील करते हैं।
3: ओके,
4: सपोज आप किसी से मिलते हैं, आप एक थॉट क्रिएट करते हैं, वंडरफुल पर्सन। जैसे ही थॉट क्रिएट की, वंडरफुल पर्सन, यू फील नाइस मीटिंग दैट पर्सन।
3: उल्टा नहीं होता
4: क्या?
3: पहले मैंने फील किया कि गर्मी है, वंडरफुल है।
4: इसी सीन में अलग अलग लोग अलग अलग थॉट क्रिएट करेंगे। किसी और को यहीं पे ठंडक लग रही होती है, डिपेंडिंग ऑन रेफरेंस टू व्हाट दे आर यूज्ड टू।
3: और वो वंडरफुल पर्सन नॉट वंडरफुल लगे किसी को।
4: किसी को, यस एब्सोल्युटली। इट विल फर्स्ट, द माइंड विल फर्स्ट क्रिएट अ थॉट। आपके सामने कोई खाने की चीज आई, आप एक थॉट क्रिएट करते हैं पहले उसके बारे में, फिर अच्छा फील होता है, वाह आज आइसक्रीम है, यू फील नाइस।
3: पुराना टेस्ट याद आता है फिर।
4: हाँ वो रीजन हम देखेंगे क्यों वो हो रहा है, लेकिन थॉट जो क्रिएट करेंगे वो फील होगा फिर। इसीलिए कई बार हम अपने आप को थॉट लेवल पे नहीं चेक कर पाते, हम फीलिंग लेवल पर चेक करते हैं, हाउ एम आई फीलिंग टुडे। सो समटाइम्स वी से आई एम फीलिंग वेरी लो टुडे, है ना। जैसे हमें ये लगे आई एम फीलिंग वेरी लो टुडे, आई नीड टू ओनली पॉज एंड थिंक, क्या क्या सोच रहे थे आज सारा दिन, जो सोच रहे थे वो फीलिंग में ट्रांसलेट हो चुका है।
3: ओके,
4: आई एम फीलिंग वेरी नाइस टुडे, क्या सोच रहे थे आज। द सेकेंड स्टेज है फीलिंग, दिस इज आवर इनर वर्क। देखिए ना, इनर वर्क पे हमें अब अटेंशन चाहिए ताकि सब कुछ हमारा जो परफॉर्मेंस है वो परफेक्ट चले। जैसी थॉट वैसी फीलिंग। अब जैसी फीलिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हमारा एटीट्यूड बन जाता है। किसी के प्रति हमने बार बार वही थॉट क्रिएट की, वैसा ही फील किया उनके बारे में, तो हमारा एक जनरल एटीट्यूड उनके बारे में क्या हो जाएगा, ये है ही ऐसे, या ये है ही ऐसे, बहुत अच्छे, दिस इज माई एटीट्यूड नाउ। सो थॉट फीलिंग एटीट्यूड, ये इनर प्रोसेस है, ये अंदर हो रहा है, बाहर नहीं दिख रहा किसी को। डिपेंडिंग ऑन ये तीन स्टेजेस जो अंदर हुई, थॉट फीलिंग एटीट्यूड, फिर आप व्यवहार में आएंगे।
3: थॉट फीलिंग एटीट्यूड
4: अंदर बन गया, ये बाहर नहीं दिखता, इसको हम कहेंगे संकल्प। संकल्प फिर उससे कैसे हमने महसूस किया और क्या हमारी वृत्ति बनी, एटीट्यूड हमारा बना, उस एटीट्यूड से हमारा नजरिया दृष्टि भी बनती है, पर्सपेक्टिव। फिर हम व्यवहार में आते हैं, व्यवहार में बहुत बाद में आ रहे हैं, तीन चार चीजें अंदर हो चुकी हैं सारी, थॉट फीलिंग एटीट्यूड पर्सपेक्टिव सब यहां हो गया। फिर व्यवहार में आए, टाइम बीता बीच में, पहली चार स्टेजेस के बारे में हम कई बार अवेयर ही नहीं होते, हम सिर्फ कौन सी स्टेज को देख रहे होते हैं, मैंने कैसा व्यवहार किया। अब अगर मुझे अपने व्यवहार को चेंज करना है तो मुझे ये इनिशियल स्टेजेस पर चेंज करना पड़ेगा, व्यवहार में चेंज नहीं आ सकता, नहीं तो
3: समझो मुझे अभी गुस्सा है।
4: हाँ?
3: तो मैं सोचूं कि क्या सोच, मैं मुझे ये देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि मैंने क्या थॉट किया।
4: yes.
3: उसके बाद क्या उसके थॉट के रिएक्शन हुए, फील हुआ पूरी बॉडी में, फीलिंग है, उसके बाद फिर मेरे बुक से निकला।
4: एब्सोल्युटली, काफी लंबी स्टेज है ना,
3: इतना फास्ट होता है,
4: फास्ट हो गया,
3: स्पीड ऑफ सेकंड में हो जाता है।
4: थॉट क्रिएट बिना तो बिहेवियर में नहीं आएगा, नहीं आ सकता है। बहुत सारी थॉट्स क्रिएट हो जाती हैं, बिहेवियर में भी नहीं आती, लेकिन जो भी बिहेवियर में आ रहा है वो स्टार्टिंग फ्रॉम अ थॉट, बीज है वो हमारा। थॉट फीलिंग एटीट्यूड एक्शन, ये पूरी हमारी अंदर की फैक्ट्री है कि कैसे ये मैकेनिज्म वर्क करता है। हु एम आई और वो आई के अंदर सारा दिन क्या हो रहा है, अगर हमें ये मैकेनिज्म नहीं पता होगा तो हम अपनी फैक्ट्री का पूरी तरह से ध्यान नहीं रख पाएंगे, और हम इस फैक्ट्री से निकलता हुआ जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेंगे। अगर कोई मालिक कहे कि मेरी फैक्ट्री से ये निकल रहा है, सामने वाला कहे तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करूं मुझे तो पता नहीं है, तो अपने आप निकलता जा रहा है। आज हमारे बोल अपने आप निकल रहे हैं, हमारे एक्शंस अपने आप हो रहे हैं, कई किसी का हाथ अपने आप उठ रहा है, किसी मुंह से अपने आप निकल रहा है, ये जो अपने आप प्रोडक्ट्स बाहर निकल रहे हैं, दिस इज बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट इनर प्रोसेस दैट इज गोइंग इनसाइड। सो नाउ लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप, थॉट फीलिंग एटीट्यूड पर्सपेक्टिव नजरिया एक्शन। एक्शन मीन्स वर्ड और बिहेवियर, एनीथिंग एक्शन। अब कोई भी चीज अगर एक्शन में आ गई, फिर कोई एक्शन हमने बार बार रिपीट किया तो वो हमारी बन गई आदत,
3: संस्कार,
4: हैबिट, आदत बन गई। तो आदत भी कहां से बनी, स्टार्टिंग फ्रॉम
3: थॉट।
4: थॉट अगर थॉट में नहीं आती तो आदत में नहीं आएगी। आदत को बदलना है, कहां बदलना पड़ेगा, चेंज इट एट द लेवल ऑफ थॉट। अब वी हैव सो मेनी हैबिट्स, सारी हमारी आदतों का जो पैकेज है उसको हम कहेंगे इनकी पर्सनालिटी, ये व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व इज अ पैकेट ऑफ ऑल माय हैबिट्स, दिस इज द सम टोटल, हु एम आई, दिस इज माय पर्सनालिटी। कहां से बनी पर्सनालिटी, थॉट। अब ये पर्सनालिटी हर स्टेप पे कर्म में जा रही है, तो नेक्स्ट स्टेज क्या बनेगी, थॉट फीलिंग एटीट्यूड एक्शन, रिपीटेड हैबिट, हैबिट मीन्स कर्म, हैबिट, ऑल माई हैबिट्स पुट टूगेदर पर्सनैलिटी. अब ये पर्सनैलिटी सारा दिन में इतना कुछ कर रही है, नेक्स्ट स्टेज क्या बन रही होगी?
3: मेरा फ्यूचर.
4: मेरा फ्यूचर विच मीन्स माई डेस्टिनी. मेरा फ्यूचर, क्योंकि मेरा कर्म, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा फ्यूचर. मेरा फ्यूचर मतलब मेरा भविष्य.
3: तो थॉट से लेके सीधा
4: डेस्टिनी तक,
3: जिसले सारे का मैं पता नहीं सा, सीधा नीचे से लेके ऊपर.
4: अगर शुरू का नोट ठीक नहीं रहा,
3: हाँ, तो पूरा एंड तक साफ बराबर नहीं आएगा.
4: अब अगर डेस्टिनी में कुछ चेंज करना चाहते हैं, पर्सनालिटी में कुछ चेंज करना चाहते
3: हैं, तो आपको अपना प्रॉपर सार को ठीक करो, तो ऊपर का सार भी,
4: बीज,
3: हाँ, रे भी ठीक आएगा, ग भी आएगा, म भी,
4: ऑटोमेटिकली सारा कुछ ठीक आ जाएगा. आज हम अपनी डेस्टिनी को ठीक करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वो भी हम बाहर कर रहे हैं कि डेस्टिनी मेरी कैसे बदल जाए. मैं क्या पहनूं, घर में क्या टांगूं, क्या लटकाऊं, क्या ऐसा करूं जिससे मेरी डेस्टिनी बदल जाए, मेरी पर्सनालिटी चेंज हो जाए, मेरी

0: पहले 5 और 6 दिन हमारा जो बिजनेस है वो बिल्कुल डिक्लाइन हो जाता है। कहते लेकिन हमें कोई चिंता नहीं होती क्योंकि हमें पता होता है कि 6-7 तारीख तक
1: डबल हो जाएगा,
0: सारे वापस आ जाएंगे। दिस इज हाउ मच पावर वी हैव ऑन चेंजिंग आर हैबिट। अगर हम उसको बाहर के लेवल पर करेंगे, सिर्फ कि आज से मुझे ये नहीं करना है, उसके पीछे की कॉन्शियसनेस क्या थी, थॉट क्या थी, अंडरस्टैंडिंग क्या थी, एटीट्यूड क्या बनाया, उसको नहीं चेंज किया, सिर्फ हैबिट पर एक्सटर्नली वर्क किया, पुरानी आदतों पर वापस चले जाएंगे। तो डेस्टिनी, पर्सनैलिटी, हैबिट, व्यक्तित्व, बात करने का तरीका, एक्शन, कर्म, ये सब को बाहर नहीं चेंज करना, इनसाइड। अब इनर स्टेज पे अगर एक भी स्टेज पे अगर गलती हो गई तो डेस्टिनी पर असर पड़ जाएगा। इफ आई कीप दिस फॉर्मूला इन फ्रंट ऑफ मी, माई थॉट लीड्स टू माई
1: डेस्टिनी।
0: कितने ध्यान से सोचेंगे, मेरी सोच मेरा भविष्य बना रही है।
1: घंटों घंटों डेली लोग सारे गाम जब गाना सीखते लेके बैठे रहते एक ही सुर, ताकि वो एंड का सा करेक्ट आए ऊपर तक, ऊपर से नीचे नहीं आते।
0: अभी हमने क्या सोचा था, हम एक्चुअली ऊपर से नीचे जा रहे हैं जीवन में। हम क्या कहते हैं, भाग्य अच्छा होगा, मतलब भाग्य अच्छा होगा, मेरे साथ सब अच्छा होगा, तब मुझे अच्छा फील होगा, आई फील गुड अबाउट माई लाइफ। तो हमने सोचा अगर भाग्य अच्छा तो सोच अच्छी। तो प्रोसेस प्लांट में वी वर ट्राइंग टू गो बैकवर्ड्स। ट्रूथ इज, सोच अच्छी तो भाग्य अच्छा,
1: सोच अच्छी तो फिर कर्म अच्छे, फिर कर्म अच्छे तो भाग्य अच्छा।
0: तो वी हैव टू गो इन द राइट ऑर्डर। तो नाउ इट्स इम्पोर्टेंट कि हमारी हर सोच कितनी प्योर और डिवाइन हो, ताकि हमारा भाग्य वैसा बने। अब जैसे आपने कहा, हमारी सोच भी किस आधार से बनती है,
1: करेक्ट,
0: राइट? क्योंकि सोच भी एक एनर्जी है जो हमने क्रिएट की। एवरी थॉट वी क्रिएट इज एनर्जी। तो वो एनर्जी का भी सोर्स क्या है, तो वो सोच के 3 फैक्टर्स है, जिसको हम कहेंगे 3 क्राइटेरिया, किस बेसिस पर हमारी वो सोच क्रिएट होगी। क्योंकि कई बार हम अपनी थॉट्स को चेंज करना चाहते हैं। लॉट ऑफ पीपल वी डूइंग पॉजिटिव थिंकिंग कोर्सेस। दुनिया में भी लोग किसी भी बात के लिए कहते हैं पॉजिटिव सोचो ना, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव कैसे सोचो, बात ही ऐसी थी, मुझे चिंता तो होनी थी, बात ही ऐसी थी, डर तो लगना ही था, पॉजिटिव कैसे सोच सकते हैं इसमें। इसका मतलब थॉट लेवल पर भी चेंज ऐसे नहीं आ सकता जब तक थॉट से भी हम थोड़ा सा पीछे नहीं जाएंगे। कि थॉट क्रिएट करने का भी क्राइटेरिया कौन, 3। फर्स्ट, इन्फॉर्मेशन। जो आपने कहा कि पेरेंट्स कुछ कह रहे थे, छोटे बच्चे ने सेम बात कहने शुरू कर दी, तो उसने थॉट कहाँ क्रिएट की, कि बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन जो उसको पेरेंट्स से बच्चे को मिली।
1: इन्फॉर्मेशन भी मिली, उनका एटीट्यूड भी देखा।
0: इन्फॉर्मेशन, एटीट्यूड भी तो एक इन्फॉर्मेशन है ना। इन्फॉर्मेशन सिर्फ वो नहीं होता जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। इन्फॉर्मेशन मीन्स हर चीज जो हम अंदर लेते हैं, ये हर चीज जो हम अंदर ले रहे हैं अपनी इन सारी कर्म इंद्रियों के द्वारा। इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी वाइब्रेशन जो हम अंदर ले रहे हैं, वो हमारी सोच का हिस्सा बनेंगी। अगर मुझे आपसे अभी नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही हो, आप मेरे बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, आई एम कंज्यूमिंग दैट नेगेटिव वाइब्रेशन एंड आई विल क्रिएट अ नेगेटिव थॉट। तो इन्फॉर्मेशन जो हम अंदर लेते हैं वो बहुत बड़ा सोर्स है हमारी सोच का। तो जो हम कुछ दिन पहले देख रहे थे कि हम मीडिया से क्या लेते हैं, हम पढ़ते क्या हैं, हम देखते क्या हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते क्या हैं, दिस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
1: सेलफोन हैं, लोग हैं, अखबार है,
0: एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन। तो जैसी मेरी इन्फॉर्मेशन वैसे मेरी सोच। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम जब आते हैं, फर्स्ट चीज जो हमें समझ में आती है कि सुबह सुबह हम अपने अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन भरते हैं।
1: अच्छा,
0: सुबह सुबह, क्योंकि जो हम अंदर भरेंगे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, उसी से हमारी थॉट्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। तो कहां हम पहले अखबार पढ़ते थे, या आजकल लोग न्यूज चैनल भी ऑन कर देते हैं, तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी क्या है, उसमें अगर वायलेंस है, टेरर है, पेन है,

0: डिवेस्टेशन है, अटैक्स है, नेचुरल कलामिटीज है, एक्सीडेंट है, पॉलिटिकल केओस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, न्यूज वही दिखा रही है ज्यादा। और हमने अंदर भर लिया सुबह सुबह, सुबह सुबह उठे थे ब्लॉटिंग पेपर एकदम क्लीन था, ग्रहण करने की शक्ति हाईएस्ट थी, इन्फॉर्मेशन कौन सी अंदर भरती।
1: सो सैड सिस्टर, मैं लोगों को देखता हूँ सुबह उठ के न्यूज़पेपर एंड सिगरेट टुगेदर, एक तो यहाँ मन को भी भर रहे हैं, लंग्स को भी भर रहे हैं, बाहर के वातावरण को भी खराब कर रहे हैं।
0: आजकल तो साथ में न्यूज चैनल पे टीवी पे भी चलता है।
1: हाँ, वो भी साथ साथ, ऊपर साथ में कप ऑफ चाय भी चल रही है, नहा भी बाद में रहे।
0: क्यों? इम्पैक्ट ऑफ टीवी चैनल विल बी मोर देन द न्यूज पेपर ऑल्सो।
1: उसमें सब कुछ है, साउंड है,
0: सेंस ऑर्गन्स को कितना वो कैप्चर कर रही है।
1: साउंड भी है, विजुअल्स भी है, इम्पैक्ट्स हैं।
0: इम्पैक्ट, आप उस सीन को फील करते हैं ना। सेम थिंग अगर कहीं कुछ हुआ है, आप उसको अगर अखबार में पढ़ते हैं कि यहाँ पे फ्लड्स आए, यहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ, ये भी एक न्यूज है, बट इसको अगर हम अखबार में पढ़ेंगे तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा, और उसी को अगर हम
1: विजुअली देखेंगे और साउंड भी,
0: एंड पूरा जो इमोशंस का हमें मिलता है ना वाइब्रेशन, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, न्यूज़पेपर से वो नहीं मिलेगा। न्यूज़पेपर से सिर्फ क्या मिलेगा, सो मेनी पीपल अफेक्टेड, सो मेनी पीपल लॉस्ट लाइफ, सो मेनी पीपल एक्सीडेंट, सो मेनी पीपल इंजर्ड। लेकिन टीवी पर जब उसको देखेंगे, वो इंजरी एक्चुअली दिखेगी, वो डेड बॉडीज दिखेगी, रोते ना, वी फील कि ये नॉर्मल है, मतलब टीवी है, देखेंगे, अर्ली मॉर्निंग भरा है अपने आप को, एंड जैसी इंफॉर्मेशन वैसी थॉट्स, ये हमारा भोजन है सुबह का, इसके बेसिस पे सारा दिन की ऊर्जा निर्माणित होगी। तो सुबह सुबह कौन सा भोजन अंदर डालेंगे, दुनिया में क्या हो रहा है हमें पता लगना है, हमें जानना भी है, हम देखना चाहते हैं तो देखना भी है। सुबह सुबह, सुबह सुबह कुछ अच्छा नहीं भरेंगे तो फिर पॉजिटिव थिंकिंग जो हम कह रहे हैं वो होगी कैसे फिर? देन वी कांट जस्ट से टू ईच अदर थिंक पॉजिटिव, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वेयर इज द पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन रॉ मटेरियल दैट्स गॉन इन? सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हम क्या देख रहे हैं, कितना देखते हैं उसको, कितना सुनते हैं। कई बार इतना स्टैटिस्टिक्स है इस पर कि किसी और शहर में, किसी और देश में हुआ सीन, कुछ हुआ Which was a big trauma, लेकिन उसका असर सामने व्यूअर के ऊपर उतने दर्द का हो सकता है। जैसे मूवी देखते हैं तो लोग रोते हैं ना, लोग रो सकते हैं ना उस सीन को देखते हुए, उस इंफॉर्मेशन का इम्पैक्ट उतना होता है कि वो सीन देखने वाले के अंदर वो सेम इमोशन क्रिएट कर देती है।
1: सही बात है।
0: तो यहाँ इमोशन क्रिएट हो गया, पहले
1: लिविंग दैट,
0: but you started creating that,
1: you live that moment,
0: so it's you don't just live that moment,
1: you create,
0: you have created that emotion, we have created that emotion here, now that scene is not there, it's here, wo ab meri soch ka, phir meri feeling ka, फिर धीरे धीरे मेरे एटीट्यूड का, मेरे कर्म का, मेरा भाग्य का हिस्सा बन सकती है, क्योंकि वी हैव नॉट लर्न्ड के डिटैच होकर कैसे उसको देखना है। हम मूवी के सीन के अनुसार रोते हैं, हंसते हैं, डरते हैं, सब कुछ सीन के अनुसार हम करते हैं, मतलब हमारा इमोशन सीन के इमोशन के साथ जुड़ गया। कितना इम्पैक्ट है ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द कॉन्शियसनेस इनसाइड, वी नीड टू बी सो केयरफुल। एक इंटरव्यू था, पैनल डिस्कशन था, तो उसमें कुछ टीवी सीरियल्स जो बनाते थे वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर भी थे, तो जो एंकर थे उन्होंने कहा कि आप जो दिखा रहे हो वो समाज में होने लग गया है ज्यादा, यू नो, लाइक सपोज डिवोर्स और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स और एनीथिंग, कि जो हिंदी सीरियल में आप टीवी पे दिखा रहे हो वो समाज में होने लग गया है। तो उन्होंने वहां से कहा, हम वो दिखाते हैं
1: जो समाज में हो रहा है।
0: सो नाउ इट वॉज विच वे इज ट्रू, कि जो समाज में हो रहा है वो दिखा रहे हैं, या जो वो दिखा रहे हैं वो समाज में हो रहा है। तो फाइनल जब डिस्कशन पूरा हुआ तो उसका जो रिजल्ट निकला वो ये कि समाज में कुछ कुछ जगह, कुछ कुछ परसेंटेज में वो होता है, उसको हम उठाते हैं और हम एक सीरियल या एक मूवी बनाते हैं, उसको करोड़ों लोग जब देखते हैं तो वो कई लाखों के जीवन में होने लग जाता है। पहले वो कुछ लोगों के जीवन में हो रहा होता है।
1: मैं एक जगह पढ़ रहा था सिस्टर कि एक नेगेटिव और वायलेंट थॉट एक आदमी क्रिएट करता है तो जो वीकर ब्रेन कहे, उसने तो किताब में तो वीकर ब्रेन लिखा, दूसरा बंदा उसको तुरंत कैच करता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर मॉब वायलेंस और जो सड़कों पे जो होता है वायलेंट लोग हो गए, लाठी ये वो, ही रोड लाइक दिस। अभी मेरे समझ में ही बात,
0: इन्फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई प्ले सो मच इंपॉर्टेंट रोल।
1: यहाँ तो ना टीवी, ना कैमरा, ना न्यूज़पेपर, ना कुछ, एक आदमी की स्ट्रांग थॉट और दूसरे का वीक,
0: दैट्स व्हाई वी सेड इवन वाइब्रेशंस भी तो इन्फॉर्मेशन है ना, वाइब्रेशन भी इन्फॉर्मेशन है।
1: उनको भी रोकना पड़ता है,
0: इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है उसको भी रोकने के लिए। अब आपने कहा वो इन्फ्लुएंस किसको करेगा, वीकर माइंड को। तो वीकर माइंड को मुझे अब क्या बनाना है, स्ट्रॉन्गर माइंड बनाना है। स्ट्रॉन्गर माइंड इसलिए बनाना है ताकि दूसरे की वाइब्रेशन मुझ पर प्रभाव ना डाले। अब स्ट्रॉन्गर माइंड बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन फिर सारा दिन कौन सी डालनी है, फिर बेटर, प्योरर, पावरफुल, पॉजिटिव, स्ट्रॉन्गर इन्फॉर्मेशन जो मुझे पावरफुल बनाए वो इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में फर्स्ट चेंज लाने के लिए थॉट पे हमें चेंज लाना है। फर्स्ट चेंज हम करते हैं कि सुबह कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अंदर नहीं भरनी है। दिन में भी बहुत ध्यान रखना है कि अंदर क्या जा रहा है, लेकिन सुबह सुबह नेगेटिव कुछ नहीं भरना। लेकिन नेगेटिव तो बंद किया, जैसे बहुत सारे भाई बहन कहते हैं अच्छा हमने न्यूज़पेपर बंद कर दिया, हमने टीवी चैनल सुबह नहीं देखते, हमें
1: नेगेटिव सोचना है।
0: नेगेटिव सोचने को हमें चेंज करना है, लेकिन नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बंद किया तो कोई प्योर इन्फॉर्मेशन डाला। आप घर पे बैठे हैं, आपने टीवी देखना बंद किया सुबह, अखबार पढ़ना भी बंद किया, लेकिन उसकी जगह डाला कुछ और
1: नहीं,
0: दैट हैज टू बी डन। इफ आई वॉन्ट अ प्योर थॉट आई विल हैव टू फिल माई सेल्फ विद प्योर इन्फॉर्मेशन। तो अगर हमें ये छोटा सा परिवर्तन भी लाना है तो हमें दिन की शुरुआत को, जिसके लिए हम कहते हैं ज्ञान, डिवाइन नॉलेज, डिवाइन संस्कार चाहिए ना, तो डिवाइन नॉलेज हम अपने अंदर भरे। तो इन्फॉर्मेशन विल इन्फ्लुएंस थॉट्स। सेकेंड चीज जो इन्फ्लुएंस करती है वो है पास्ट एक्सपीरियंसेस। पास्ट में हमारे साथ कुछ हुआ वो रिकॉर्ड हो गया यहाँ पर। जब सेकेंड टाइम स्टिमुलस सामने आएगा तो उस स्टिमुलस के सामने जो मेरी पास्ट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड है उसके आधार से थॉट क्रिएट हो जाएगी।
1: मेमोरी बैंक में भरा पड़ा है।
0: इसीलिए मेमोरी बैंक भी बहुत ध्यान से क्या उसमें स्टोर हो रहा है। नहीं तो क्या होगा, जो पास्ट की इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड है हर बार जब स्टिमुलस आएगा सेम क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट होती जाएगी एंड वी विल मेक द पास्ट इंटू आर प्रेजेंट एंड देन इंटू आर फ्यूचर। बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पास्ट में किसी के साथ कुछ बात हुई, हमने हर्ट क्रिएट की, नेक्स्ट टाइम हम उनको मिलने से पहले ही एक थॉट क्रिएट कर लेंगे, इस बार पता नहीं क्या होगा जब उनसे मिलेंगे, पास्ट एक्सपीरियंस। तो इन्फॉर्मेशन हुई, पास्ट एक्सपीरियंस हुआ, एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, माई बिलीफ सिस्टम। हम क्या बिलीव करते हैं, क्या हम मानते हैं। जैसे हमने कई बार देखा है एंगर इज नेचुरल, टेंशन तो होती है, ये हमारा बिलीफ सिस्टम था। तो अगर मेरे को लगता है कि गुस्सा तो नेचुरल है, ये मेरा बिलीफ है, तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो मेरी सोच कौन सी क्रिएट होगी,
1: नेचुरल जो है।
0: तो बिहेवियर में क्या आएगा, और वही मेरी डेस्टिनी बन जाएगी। अब अगर हमने अपनी बिलीफ को चेंज किया कि नहीं गुस्सा तो अननेसेसरी है, तकलीफ देता है बहुत सबको, पेशेंस
1: सबको, क्या
0: मुझे यस। अब मैंने अपने बिलीफ को चेंज करना है, हैबिट को नहीं चेंज कर सकते। पहले हम क्या करते थे, हैबिट को चेंज करते थे। हमें दुनिया में सिखाया जाता था 1 से 10 गिनो गुस्सा टल जाएगा, पानी पी लो बीच में गुस्सा टल जाएगा। कहाँ टलता था, पूरा गुस्सा आ गया करके फिर 1 से 10 याद आता था, फिर पानी याद आता था, बिकॉज वी वर ट्राइंग टू डू इट एट द लेवल ऑफ हैबिट। बिलीफ सिस्टम को चेंज करना था कि नहीं, पेशेंस इज नेचुरल, पीस अच्छी लगती है हर एक को, संस्कार हर एक की अलग अलग है। अंडरस्टैंडिंग को चेंज किया, परिस्थिति आई, सोच बदली, कर्म बदला, भाग्य बदल गया। अब बिलीफ में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बिलीफ है वो है हु एम आई। मैं कौन हूँ, वो आंसर उस बिलीफ का हमारी सोच बनेगी, हमारी फीलिंग, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार, हमारा भाग्य। इसीलिए हुए माई का आंसर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हुए माई फिल इन द ब्लैंक में कोई रॉन्ग आंसर लिख दिया जो सच नहीं है, तो उसका असर भाग्य तक जाएगा। एंड दैट्स व्हाई वी नाउ नीड टू फाइंड आउट द ट्रू आइडेंटिटी दैट हु एम आई।
1: लवली सिस्टर, दैट्स वंडरफुल। अगले एपिसोड में हु एम आई को कंटिन्यू करते हैं।
0: थैंक यू।
1: ओम शांति। ओम शांति।
2: एवरी थॉट is followed by a feeling. Feelings over a period of time develop our attitude. Attitude comes out into action. Any action done repeatedly becomes a habit. All our habits put together is our personality. Our personality creates our destiny. If we try to bring a change in our habits, personality or destiny on an outer level, then there are chances that we revert to our old self. Change needs to be created in the consciousness, thoughts and attitude, and then brought into habit. The quality of thoughts is based on three input factors: information, past experiences, and belief system. Everything we read and hear through media and people influences the quality of our thoughts. Let us avoid reading and watching negative news early morning. Past experiences, if stored unresolved in the memory, will push us into creating the same quality thoughts always. We will think and behave with people based on unpleasant past experiences with them, which will create a negative present and future.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जेट से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हो रेडियो पुनरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। स्वागत है आपका हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कलाएं के 5वें अध्याय में। आज हम जानेंगे वह अद्भुत कला जिसे कहते हैं गीत माधुरी। यह वो माधुरी है जिसमें श्री कृष्ण के गीतों की मधुरता ने संपूर्ण वृंदावन को भक्ति और प्रेम से भर दिया। कृष्ण के गीत केवल संगीत नहीं थे, वे आत्मा को स्पर्श करने वाले दिव्य संदेश थे। उनकी वाणी में प्रेम था, करुणा थी और भक्ति का अमृत था। जब वे गाते थे तो गोपियाँ, ग्वाल बाल, पशु पक्षी, यहाँ तक कि वृक्ष और नदियाँ भी उस मधुरता में डूब जाते थे। यही है गीत माधुरी, जहाँ गीत केवल सुर और शब्द नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन बन जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत माधुरी का गीत।

श्रोता हो, श्री कृष्ण केवल बांसुरी वादक नहीं थे, वे अद्भुत गायक भी थे। अनेक गीतों में प्रेम, करुणा और भक्ति की गहराई थी। जब वे गाते थे तो वृंदावन की गोपियां मंत्रमुग्ध हो जाती, गाय उनके स्वर पर झूम उठती और संपूर्ण प्रकृति उस मधुरता में डूब जाती। यही है गीत माधुरी, वह कला जिसमें गीत केवल सुर और शब्द नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य साधन बन जाता है। कृष्ण के गीत हमें सिखाते हैं कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का अमृत है जो हर हृदय की अलौकिक करता है। तो दोस्तों, सुनते हैं गीत माधुरी का दूसरा और प्यारा सुर।

श्रोताओं, भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण गाते थे तो हर जीव को लगता था कि यह गीत केवल उसके लिए है। गोपियां मन से मुक्त हो जाती और राधा तो उनके गीतों में इतनी डूब जाती थी कि समय और संसार का बहाने भूल जाती। कृष्ण के गीतों ने वृंदावन को केंद्र बना दिया। ये लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर का स्वर आत्मा को व्यक्तिगत रूप से छूता है। उनके गीत केवल ध्वनि नहीं थे बल्कि प्रेम और भक्ति का अमृत थे जो हर हृदय को अलोकित कर देते थे। यही है गीत माधुरी, वह कला जिसमें संगीत आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य साधन बन जाता है। कृष्ण का हर गीत हमें ये अनुभव करता है कि ईश्वर का प्रेम सर्वव्यापी है और हर जीव उनके आलिंगन में शांति और आनंद पाता है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो। तो सुनते हैं एक सुंदर प्यारा गीत।

श्रोताओं, गीत माधुरी हमें ये सिखाती है कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। जब हम प्रेम और भक्ति से गाते हैं तो वह गीत सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। कृष्णा का गीत हमें यह संदेश देता है कि सच्चा संगीत वही है जो हृदय से निकलकर आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके गीतों में प्रेम की गहराई, करुणा की मधुरता और भक्ति का अमृत था। यही कारण है कि वृंदावन की हर ध्वनि, हर जीव और संपूर्ण प्रकृति उनके स्वर में डूबकर दिव्य आनंद का अनुभव करती थी। यही है गीत माधुरी का सार, जहाँ संगीत केवल कला नहीं बल्कि भक्ति का मार्ग बनकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत। प्रभु

भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर संबंध जोड़े हैं कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

तो श्रोताओ, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, गायन्ति देवाय कीर्तन उत्सव। इस श्लोक का भावार्थ है कि देवता भी श्री कृष्ण के कीर्तन का गान करते थे। यह हमें बताता है कि ईश्वर का गीत केवल ध्वनि नहीं है, बल्कि भक्ति और प्रेम का दिव्य संदेश है। कृष्ण का कीर्तन हमें यह अनुभव करता है कि जब गीत भक्ति से गाया जाता है तो वह केवल मन को आनंदित नहीं करता, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। यही कारण है कि उनके गीतों में देवता भी रमन करते हैं और संपूर्ण सृष्टि उस मधुरता में डूब जाती है। यही है गीत माधुरी का सार, जहाँ संगीत केवल कला नहीं बल्कि भक्ति का अमृत बनकर हर हृदय को आलोकित करता है। तो दोस्तों, सुनते हैं इसी के साथ गीत माधुरी का 5वां और अंतिम सुंदर गीत।

0: श्रोताओ, यह थी पांचवी कला गीत माधुरी। यह कला हमें सिखाती है कि संगीत और गीत ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। जब गीत प्रेम और भक्ति से गाया जाता है तो वह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य साधन बन जाता है। तो दोस्तों, अब हमारी श्रृंखला का अगला अध्याय होगा नृत्य माधुरी, यानी श्री कृष्ण के नृत्य की मधुरता। वह नृत्य जिसमें आनंद है, भक्ति है और जीवन को उत्सव बना देने वाली शक्ति है। तो श्रोताओ, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे कृष्ण का नृत्य केवल कला नहीं बल्कि उत्सव है जो हर हृदय को दिव्य आनंद से भर देता है। तो दोस्तों, सुनने ना भूले रेडियो बुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: किसी का एक लाइन, नाउ इवन अगर कल बीत गया, इट डजंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छे होंगे। और आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर निखारी सर उपस्थित हैं। और आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं और काफ़ी लंबे समय तक आप जो है प्रैक्टिस करते रहे, और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर में आपने अच्छा काम किया है। और अभी आप बिल्कुल थोड़ा सा जो है रिटायरमेंट ले ली है, और फिर भी कोई लोग आपके पास आते हैं स्किन डिजीज़ को लेकर, तो आप ज़रूर उनको कंसल्टिंग करते हैं। तो निखारी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर निखारी सर, आपकी जर्नी जो है मेडिकल फील्ड की कैसे स्टार्ट हो गई?
1: एक्चुअली मैंने MBBS सेवाग्राम मेडिकल, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सेवाग्राम से
0: जी
1: किया है। उसके बाद में मैंने एनेस्थीसिया में हाउस जॉब किया, मैंने ENT में हाउस जॉब किया।
0: अच्छा,
1: फिर मैंने EFS सर्विस ज्वाइन की एज ए प्लेन MBBS। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वहां पे कोर्सेस चालू नहीं थे। मैं 71 बैच का हूँ, 1971 बैच का।
0: अरे वाह,
1: मेरी थर्ड बैच थी सेवाग्राम की। तो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में हमें बेसिक ट्रेनिंग, श्रमदान वगैरह वो सब दिया गया। फिर मेडिकल कॉलेज की स्टडी हुई। मैंने ESIS में पहले 3 साल सर्विस की और जॉब करने के बाद में, और फिर मैं थ्रू UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू Class 1 मेडिकल ऑफिसर इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज ज्वाइन की मैंने।
0: अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर निखारी सर, सबसे पहले तो जैसे आप स्किन स्पेशलिस्ट रहे हैं, तो ये चीज़ें कहाँ से आपने सीखा और कैसे इसमें ज़्यादा आपको स्पेशलाइजेशन किया?
1: जी, शुरू में मैं प्लेन MBBS करके ही 8-10 साल सर्विस की मैंने रेलवे में। फिर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन का चांस मिला, तो मैंने ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई से पोस्ट ग्रेजुएशन DVD किया, डिप्लोमा इन वेनेरल डिजीजेस एंड स्किन।
0: अरे वाह
1: जी। तो वहां उसके पहले मैं प्लास्टिक सर्जरी यूनिट में काम करता था।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए डर्मेटो सर्जरी एक्चुअली लाइक ऐसा है, तो स्किन से रिलेटेड था। तो डॉक्टर एससीजन है मेरे बॉस थे, जो प्लास्टिक सर्जन थे वहां पे।
0: अच्छा,
1: उनके अंडर में मैंने काफी प्लास्टिक सर्जरीज कि उन्होंने मुझे बेसिक सब चीजें सिखाई।
0: अरे
1: तो मुझे इच्छा हुई कि मैं डर्मेटोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, और मुझे चांस भी मिला। मैं ग्रैंड मेडिकल कॉलेज JJ हॉस्पिटल से मैंने 1994 मतलब आफ्टर 10 इयर्स ऑफ सर्विस मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया।
0: अरे,
1: और फिर उसके बाद में मेरी पोस्टिंग, मैं पास आउट जैसे हुआ तो मुझे मुंबई डिविजन में चाहिए था, तो मुझे कल्याण में पोस्ट किया गया।
0: अच्छा,
1: तो मैं कल्याण में रहा और रहता था मैं बलवार पार्क पर, वहां से अप डाउन करता था और कल्याण जाता था। और वहां पे करीब करीब 2008 तक के मैंने एज ए मेडिकल ऑफिसर करके काम करता रहा।
0: अच्छा,
1: मुझे 3 प्रमोशंस भी मिले।
0: अरे
1: इन सर्विस, हाँ मैं, और मुझे इच्छा हुई कि अभी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि मेरी 28 साल की रेलवे की सर्विस हो चुकी थी। 3 साल मेरा ESIS का भी अनुभव था, इसलिए मैंने एट द एज ऑफ 55 मैंने रेलवे छोड़ दी और मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट की। और
0: जी जी,
1: क्योंकि स्कीम के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ पे आते थे, मुझे काफी अनुभव भी था।
0: बिल्कुल,
1: मैंने कहा कि इसका लाभ अपन बाहर के लोगों को भी देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे केवल रेलवे एम्प्लॉइज और उनकी फैमिलीज को देख सकते थे। तो इसलिए मैंने स्कीम का जो है प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू शुरू में मुझे अड़चन इसलिए हुई, मैं फिर चैरिटेबल मैंने किया। मैं रेड क्रॉस उल्लासनगर, फिर उसके बाद में शहाड़ में सेंचुरी रेयन हॉस्पिटल है, फिर आयरन जनरल हॉस्पिटल, वहां पे भी स्किन स्पेशलिस्ट की जरूरत थी कल्याण में, तो वहां पे, और मुरवाड़ में और ऐसे चार पांच जगह मैं चैरिटेबल करता था, और रात को मैंने एक क्लिनिक खोल रखा था तो वहां पे कल्याण में, तो काफी मैंने वहां पे प्रैक्टिस की और
0: अच्छा।
1: करीब करीब 8 साल मैं कल्याण में रहा, और 2015 में मैं पूना शिफ्ट हो गया, तो 10 साल से मैं पूना में ही हूँ।
0: अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। और डॉक्टर निखारे जी, बहुत ही अच्छा लगा आपकी जर्नी के बारे में सुनकर। आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। और निखारे सर, म्यूज़िक में आपका इंटरेस्ट है तो कुछ कुछ जो है आपका सीनियर सिटीजन ग्रुप भी है पुणे में, तो उनके साथ आप जुड़े हुए हैं, तो एक आध गीत जो आपका पसंदीदा है दो लाइन सुनाइए हमें, अच्छा लगेगा।
1: एक दो मिनट मुझे दीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप जब तक तैयारी करें तब तक मैं हमारे श्रोता मित्रों से बात करता हूं। दोस्तों, आपके पास मन में कुछ सवाल आए होंगे स्किन डिजीज़ को लेकर, और एक्चुअली में स्किन डिजीज़ क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम लोग डॉक्टर निखारी सर से लेंगे। एक तो कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं हमारे कि भाई स्किन क्या करता है, किस तरह से वर्कआउट करता है, और स्किन को कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है, ये पहले हम समझ लेंगे। तो फिर जो बीमारियाँ होती हैं वो किस कारण होता है और उसका कारण समझेंगे तो निश्चित तौर पे हम बीमारियों से बचे भी रहेंगे। मोस्टली बारिश और गर्मी ये सारी चीज़ें जब आती हैं हमें काफ़ी तकलीफ होती है, तो उसमें प्रिकॉशन क्या क्या लेना इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर निखारे सर हमारे साथ हैं तो आप बिल्कुल सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि एक अनुभवी व्यक्ति जब बताएगा तो निश्चित तौर पर बहुत आसान होता है हर चीज़ को समझना। जी डॉक्टर निखारे सर।
1: जी हाँ, मैं अभी एक किशोर कुमार का गाना सुनाता हूँ, कहना है कहना है।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया, सुनाइए।

0: क्या बात है डॉक्टर निकारे सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया। और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को बड़ा आनंद आ रहा होगा कि डॉक्टर साहब भी गाना गाते हैं, सुनकर अच्छा
1: नहीं, गाने का शौक मुझे पहले से था,
0: अच्छा
1: पर
0: अच्छा
1: मैं कुछ शाय नेचर का हूँ, इसलिए मैंने कोरोना के पीरियड में मैंने बहुत से गाने मैंने
0: गाय
1: सीखे और सुने हैं पहले, और सीखे
0: हाँ
1: भी है, और हारमोनियम भी सीखा है मैंने थोड़ा
0: हाँ
1: बहुत। तो और मेरी हॉबी आप पूछेंगे तो मुझे स्केच करने का भी शौक है,
0: अरे वाह
1: और हाँ
0: तो आप आर्टिस्टिक भी हैं काफी तो आइए बात करते हैं हम लोग अब एज ए प्रोफेशनली आप डॉक्टर निकारे सर स्किन स्पेशलिस्ट रहे हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा है पिछले कुछ समय से, पूरे 3 से 4 दशक तक आपने इस सेवा को किया है और अभी भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्किन का काम, यानी जो हमारा चमड़ी है, जो हमारी ऊपर की लेयर है बॉडी का, उसका क्या काम है, उसके बारे में बताइए।
1: सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि स्किन जो डॉक्टर है उसकी लिमिटेशंस क्या है।
0: हाँ,
1: तो वो हेयर से लेके, मतलब सर के हेयर से
0: बाल से
1: लेके,
0: लेकर, हाँ
1: जी बालों से लेकर नखून तक के, पैरों के नखून तक के सब देखता है, जो
0: अच्छा
1: भी
0: अच्छा
1: स्किन का आवरण है। और तो हेयर्स भी आते हैं उसमें, स्किन भी आती है और नेल्स भी आते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, स्किन का काम जो है वो एक तो पहले तो शरीर के आवरण को, आवरण है स्किन, हर अवयव को यानी ऑर्गन्स को ये अपना ढका हुआ रहता है। यदि स्किन नहीं है तो आदमी की पहचान नहीं। और यदि अपन बॉडी वेट करें,
2: इज ए लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, करीब 15% अपने बॉडी का वेट जो रहता है वो स्किन का रहता है।
1: जी हाँ, स्किन जो है तीन सतह रहती है उसमें,
0: जी।
1: एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस फैट, ये तीन परत रहती है उसमें, बहुत सारी चीजें हैं। स्किन का काम शरीर को मेटाबॉलिज्म उसका ये मेंटेन करना, ठंडी गर्मी का एहसास न होने देना, और त्वचा के ऊपर नर्वस सिस्टम फैला हुआ है, संवेदना अपने को, मक्खी भी बैठी तो अपने को मालूम
0: मालूम पड़ जाता।
1: पड़ना चाहिए। तो
0: हाँ
1: ये है, और सब ऑर्गन्स को बचा के रखता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि हमारा स्किन जो है बॉडी को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ सेंसर का भी काम करता है। हर
1: जी
0: चीज
1: हाँ,
0: जो हमारे स्किन के ऊपर, मच्छर भी आ जाता है तो हमें पता चल जाता है। काफी
1: इवन इवन अपने शरीर के टॉक्सिन्स जो है बहुत सारे, जो एस्क्रीशन बोलते हैं, जो
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: पसीने की वजह से सब टॉक्सिन्स अपने शरीर से,
0: बाहर निकलते
1: पसीने
0: हैं।
1: से बाहर निकलते रहते हैं, ये भी काम स्किन
0: स्किन का ही
1: का
0: है।
1: होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जी
0: बहुत अच्छी बात आपने बताया है।
1: जी
0: तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा। स्किन को लेकर कौन कौन सी, हमारी जो स्किन पर कौन कौन सी बीमारियाँ होती है
1: जी
0: एक्चुअली। जी
1: जी हाँ, स्किन में एक्चुअल बहुत सारी बीमारियां होती हैं। स्किन दिखने में एकदम से ऊपर, कई लोग पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब ये मेरे को फुंसी आई है, मेरे को ये हुआ, आपको दिख रहा है, आप इसको आइडेंटिफाई करो, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि स्किन में करीब करीब 2000 बीमारियां हैं।
0: ओ
1: स्किन के अंदर जो ऑर्गन्स है उसमें
0: हाँ
1: कोई भी इफेक्ट आया तो इट रिफ्लेक्ट्स टू योर स्किन। स्किन इज ए
0: बिल्कुल,
1: मिरर ऑफ ऑल डिजीजेस,
0: अच्छा
1: स्किन इज ए मिरर ऑफ ऑल डिजीजेस,
0: हाँ
1: कोई भी चीज आती है तो वो स्किन के ऊपर उभर के आती है। जैसे एक आपको सिंपल सा उदाहरण, सबको मालूम है कि भाई लीवर में यदि सूजन आ जाती है, पीलिया हो जाता है, या कौला बोलते हैं जिसको अपन कावड़ी मराठी में, तो अपने नेल्स पीले पड़ जाते हैं, स्किन पीली पड़ जाती है। एनीमिया हुआ तो सफेद सा ये होने, गलो हीमोग्लोबिन कम होने से। तो स्किन ये तो ये कॉमन मैंने बताया, पर बहुत सारी स्किन स्किन के अंदर, मतलब ऑर्गन्स के अंदर यदि मेलिग्नेंसी भी हुई तो वो स्किन के ऊपर उभर के आती है। स्किन के बहुत सारी बीमारियां, एक एक्सटर्नल फैक्टर और एक इंटरनल फैक्टर। इंटरनल जो शरीर के अंदर से जो हेरिडिटरी बोलो या शरीर के अंदर इम्यूनिटी कम हो गई तो बीमारी ओवर के आती है। और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स से जो मतलब जैसे फंगस बाहर से आती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कभी कभी बाहर से आता है, वायरस कभी कभी बाहर से आते हैं, तो फंगस वायरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बाहर से अपनी शरीर की इम्यूनिटी कम हो गई तो इमीडिएट अपन जैसे बोलते हैं नागिन हो गई किसी को, वायरल इन्फेक्शन है। मीजल्स बच्चों को होते हैं, चिकन पॉक्स बच्चों को होते हैं, पहले स्मॉल पॉक्स भी होता था, अभी स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गए। फंगस जिसको अपन मराठी में बुरशी बोलते हैं, तो जैसे अचार में बुरशी लगती है वैसे शरीर में भी बुरशी लगती है नमी की वजह से। तो अपने शरीर में जो फोल्ड्स रहती है तो फोल्ड्स में नमी या मॉइस्चर की वजह से जल्दी से फंगस ग्रो होती है। तो बरसात के दिनों में अपन ने देखा कि जो बोलते दाद हो गया है, मेरे जांघों में दाद हो गया है या फोल्ड्स में बगल में दाद हो गया, कभी कभी चेहरे पर भी आता है, ये फंगस है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कोई भी स्टेफिलोकोकल स्ट्रेप्टोकोकल या बहुत सारी बैक्टीरिया जो है बाहर की वातावरण से आके, तो स्किन में टीबी भी होती है। आपको आश्चर्य होगा स्किन में बहुत सारी टीबिया भी टीबी होती है। कई मतलब अपन बोलते हैं ना टीबी, केवल बोलते हैं कि श्वास लेने की तकलीफ हुई तभी अपन फुफ्फुस या लंग्स की टीबी होती, वैसे स्किन में टीबी भी बहुत सारी प्रकार की होती है। तो डिटेल में इसमें बताऊंगा नहीं क्योंकि ये सब चीजें साइंटिफिक वर्ड्स है उसमें।
0: सही बात है।
1: बाहर के वातावरण और भी है, जैसे भौगोलिक दृष्टि से यदि गर्मी के दिनों में अलग बीमारियां होती है, ठंड में अलग ये होती है, त्वचा ड्राई हो जाती है तो उससे अलग हो जाती है। कई चीजें जो है विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, भाई जैसे पैलाग्रा हो गया, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो गई या B12 की डेफिशिएंसी हो गई, कई विटामिन सी की डेफिशिएंसी से बहुत सारी बीमारियां विटामिन की डेफिशिएंसी से।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि बीमारियों की जब बात चली रहे हैं तो कॉमन बीमारियां स्किन की कौन कौन सी होती हैं?
1: जी आजकल कॉमन बीमारियां जो है वो एक तो अपन सौंदर्य प्रसाधन की साधने जो है जैसे कॉस्मेटिक्स परफ्यूम्स है, या कोई भी सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं या सिंथेटिक ज्वेलरीज आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह, ये जो हैबिट्स है पाउडर लगाना या परफ्यूम स्प्रे करना ज्यादा एक्सेस में किया तो शरीर के ऊपर एलर्जी आ जाती है। कई लोग फिर बाद में कुछ देर तो बर्दाश्त हो जाती है, फिर उसके बाद में शरीर उसकी स्किन जवाब देना चालू कर जाती है तो उसमें एलर्जी आती है। तो लोग बोलते हैं कि देखो मेरे को ये क्या हो गया वो क्या हो गया, तो हम रिलेटिवली उनको हिस्ट्री पूछते हैं उस हिसाब से हम उनको ट्रीट करते हैं। तो ये कॉमन एलर्जिक कॉन्टेक्ट जो बोलते हैं एलर्जी की वजह से, कुछ
0: जी, जी, जी।
1: खाने पीने की किसी किसी को प्रोटीन की एलर्जी रहती है तो अर्टिकल रैश आ जाते हैं, रेडनेस आ जाता है जिसको मराठी में गांध्या बोलते हैं या चट्टे आ जाते हैं, वो हो जाता है। किसी किसी को विटामिन D3 की बीमारी की वजह से, विटामिन D3 की कमी की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज की रिएक्शन हो जाती है जो एक्सपोज पार्ट पे होती है, इसीलिए हम लोग सनस्क्रीनिंग लगाने के लिए बोलते हैं। कुछ चीजें जो है हेरिडिटरी वजह से होती है, कुछ बीमारियां स्किन की हेरिडिटरी की वजह से होती है, कुछ जीन्स की फैक्टर्स की वजह से होते हैं, तो उसमें सोरियासिस भी आता है, एक्जिमा आता है। तो अपन हम लोग हिस्ट्री पूछते हैं कि अभी घर में कोई बीमारी है क्या, आपके पेरेंट्स की स्किन कैसी है,
0: बिल्कुल
1: आपके फैमिली हिस्ट्री, इसलिए हम पूछते हैं। कई बार डायबिटीज से स्किन की बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां स्किन में ये हो जाती है। तो मेनली एलर्जी तो एक्सटर्नल फैक्टर कई बार डाइट की वजह से होती है और कई बार हेरिडिटरी की वजह से होती है, कई बार इम्यूनिटी कम होने की वजह से होती है।
0: चलिए डॉक्टर निखारी सर, बहुत अच्छी बात आपने बताया है और आशा करूंगा हमारे रेडियो पुनेरी आवाज़ सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपका ये आज का विषय जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया। और मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सबके लिए आप?
1: मैं ये कहना चाहूंगा कि कम से कम कॉस्मेटिक यूज करें और अब करना भी है तो रात के समय करें, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो है दिन में रहती है, सूरज की रोशनी सवेरे, और विंटर में ज्यादा हम लोग एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस केसेस देखते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का कम उपयोग करें और प्रिफरेबली कॉटन के कपड़े यूज करें और लूज कपड़े रात में लूज कपड़े रखें, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन वगैरह और ना हो। और स्किन में रिंकल्स तो आते ही रहेंगे, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो रिंकल्स तो आते रहेंगे, तो इसलिए आप मॉइस्चराइजर अपने शरीर को लगाए, ठीक है। तेल का इस्तेमाल जो है हेयर्स को कम करें, क्योंकि हेयर्स के जो रूट्स है वो दब जाते हैं और डैंड्रफ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऑयल जो है केवल मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है स्किन को, नरिशमेंट जो है इनसाइड से ही आता है, ब्लड सप्लाई से। तो हेयर्स को कम से कम, और अपने नखून जो है हमेशा काटते रहे, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो अपन स्किन के तरफ ध्यान नहीं देते। स्किन को संभालना बहुत जरूरी है, अल्ट्रावायलेट रेज से ये करने के लिए अपन सनस्क्रीन का उपयोग करें, ये संदेश मैं देना चाहूंगा।
0: अगर आपसे कोई कंसल्ट करना चाहे तो क्या करें सर?
1: मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ।
0: और आप यहाँ पूना में कहाँ रहते हैं वो
1: मैं,
0: भी बता
1: मैं बालेवाड़ी में रहता हूँ। बालेवाड़ी में हेल्थवे क्लिनिक है, हेल्थवे क्लिनिक, तो हेल्थवे क्लिनिक का नंबर मैं आपको शेयर कर देता हूँ।
0: जी जी,
1: तो वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
0: जी बताइए नंबर।
1: 7447355730। डॉक्टर निखारे, एक दो चीजें और भी बताना चाहूंगा।
0: जी जी,
1: आजकल जो टीनेजर्स है जो जैसे 13-14 के बाद में पिंपल्स लोगों को बहुत आते हैं, तो दे आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर फेस पिंपल्स। जी, ये हार्मोन्स से रिलेटेड रहते हैं, तो कई लोग पिंपल्स को लेकर आते हैं क्योंकि सब अच्छा ही अपने चेहरे को देखना चाहते हैं, तो पिंपल्स के भी प्रॉब्लम्स यंग एज में काफी कॉमन है। और पिगमेंटेशन के लिए भी कई मतलब लेडीज पिगमेंटेशंस को लेके आती है कि मेरा काला हो गया चेहरा, ये हो गया हाथ काले हो गए, इसको क्या करना चाहिए, तो हम उसको जांच करके सलाह देते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम्स रहे तो क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट को ही दिखाना बहुत जरूरी है, और उससे उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं।
0: चलिए डॉक्टर साहब, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया, आपने नंबर भी दिया। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में डॉक्टर निकारे सर को हमने सुना, उनका नंबर भी आपके पास है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप डॉक्टर साहब से संपर्क करें, एक अनुभवी व्यक्ति हैं, और हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब आपको। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज़।

कहे महाराष्ट्र तेरा, वो कहे गुजरात मेरा, एक का पंजाब घर है, एक का मद्रास डेरा। आग में जलता बिहार, जोश में बंगाल है, उस तरफ देखो के सरहद पर खड़ा भोचाल है।

मत करो टुकड़े वतन के, मत बनो फिर से गुलाम। एक दिल हम, एक लौ हम, एक हमारी सुबह शाम। रंग कितने ही हमारे, एक मगर तस्वीर है। जो हमें बांधे वो धागा है, नहीं जंजीर है।

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा

0: हाँ मोहिनी, आज हम और तुम दोनों मिलकर रसराज की रंग भरी सुराई में तूफान उठा दें। इससे इतना रस छलक पड़े कि उस जमाने की प्यास बुझ जाए जिसमें हम और तुम जी रहे हैं।
1: हाँ रचो जितने गीत रचना चाहते हो, जब तक रचते रहोगे मैं उन्हें सुर में गूंथ कर नाचती रहूंगी। देखें पहले शब्द थकते हैं या भाव।
2: कारी कारी कारी अंधियारी थी रात, एक दिन की बात, जब सघन गगन से घन न गरज उठी, सावन की घटा घूंघट में छुपा कर, चपल चपल बिजली की छटा, एक नार करके सिंगार, एक नार तीखी तलवार, या थी वो कटार करके सिंगार, चली उस पार जहां थे उसके किसन मुरार, चमक झुम झुम रमक झुम झुम चमक झुम झुम।

साना ना साना ना पावन चले झना ना झना ना झांझर बोले अमृत घोले दिल न डोले कामिनिया चले हौले हौले नया न झुके पग न रुके बेला मिलन की न टले अचरा ढले दीपक जले पिया मिलन।

शोर गिरे बरसात उठे घन घोर घटा करे शोर पपिया पी है कहां मेरा पी है कहां कहे गोरी के प्राणों का प्राण पपिया सन में लगन लगी मन में अगन जगी बंद किए दोना नैना उघारे प्यार पुकारे सो प्रीत किनारे चली है वो सांसों की डोर सहारे।

0: फिर गाइए ना।
1: दिल की उमंगे हैं जवान,
0: गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं।
1: पामा पाधा पागा सपा, दिल की उमंगे हैं जवान, गाइए।
2: दिल की उमंगे हैं जवान।

0: ना एक बार और।
1: दिल की उमंग है जवान, रंग में डूबा है समा।

0: नहीं
1: याद,
0: याद नहीं फरियाद।
2: कौन है वो कौन है गुलशन होती है, वो कौन है वो कौन है गुलशन होती है। दोस्त अगर आती है लेकिन दुश्मन होती है। बोलो बोलो
0: रात

रे भैया।

पतला पतला रेशमी कुर्ता चूड़ीदार पजामा, पतला पतला रेशमी कुर्ता चूड़ीदार पजामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा।

तो लगाओ इन पे टैक्स हर चुंगी, अरे आओ कमेटी वालों लगाओ इन पे टैक्स हर चुंगी, साड़ी पेटी कोट के ऊपर कब्जा कर गई लूंगी, अरे कब्जा कर गई लूंगी। तौबा तौबा आज की छोरी बन गई एक ड्रामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख

कमर है हलवे कद्दू जैसी आओ दुआएं मांगे। अरे कमर है हलवे कद्दू जैसी आओ दुआएं मांगे। ऐसी लगती जैसे लगी हो डबल रोटी को टांगे। अरे डबल रोटी को टांगे। ढूंढ के लाओ इसके लिए जो पहलवान होगा माँ। एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा।

क्यों ठीक है जवाब तो दे। अरे मैं हूँ तेरा आशिक ये सारी दुनिया पहचाने, पर अंदर वाली बात जो है वो मैं जानू तू जाने। सच है ना बोलती क्यों नहीं वो मैं जानू तू जाने। अरे दुनिया वाले क्या जाने ये तेरा मेरा ड्रामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा। लुट गए मामा।